एफएम बैंड 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शख्स समय 348 के ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि तदनुसार 23 मई 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती हमारी आज की प्रातः

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में

इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलेंकैम्प से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें बागवानी फसल में समेकित जल प्रबंधन की। जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। कृषि में जल मुख्यतः सिंचाई के लिए काम में लाया जाता है। फसलों के उत्पादन में जल एक मुख्य संसाधन है। किसान भाइयों, उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्षा आधारित क्षेत्रों के पानी की हवा को रोकना या कम करना होगा और इसे उचित स्थान पर संग्रह करना होगा, जिसे सूखा या वर्षा ना होने के समय सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सके। बागवानी फसलों का कार्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इनके समुचित रखरखाव के लिए सिंचाई जल की मांग का बढ़ना भी स्वाभाविक है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने में सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध हो सकती है। कारण यह है कि इस विधि की दक्षता लगभग 95% है। ग्रामीण भाइयों, वर्षा जल संग्रह कर फसलों के लिए उपयोग में लाना कोई नई पद्धति नहीं है। यह बहुत पुरानी विधि है और यह पाया भी गया है कि 50% से भी अधिक वर्षा का पानी बर्बाद हो जाता है और नदियों द्वारा बह जाता है। अगर इस बहाव को रोका जाए और तालाबों और जलाशयों में संग्रह किया जाए तो भदई और रवि फसलों को सफलतापूर्वक उपजाया जा सकता है। जी हाँ ग्रामीण भाइयों, वर्षा जल का खेतों में ही संग्रह मेड़ बनाकर, जहाँ वर्षा 300 से 400 मिलीमीटर तक होती है, हो सकता है। ढाल के विपरीत जुताई कर कुंड में ही जल जमा करना, जिससे जमीन में पानी रिसने का समय मिलता है। जहाँ वर्षा 400 मिलीमीटर से अधिक होती है वहाँ खेतों में पूरा पानी संग्रह करना मुश्किल है, इसलिए वर्षा ऋतु में तालाब बनाकर जल संग्रह करते हैं। किसान भाइयों, बांध बनाने के समय यह जानना जरूरी है कि बांध बनाने का प्रयोजन क्या है और इसके अनुसार हमें उसके स्थान और आकार का चुनाव करना होगा। अगर सिंचाई के लिए बनाना है तो पहले वहाँ का सिंचित क्षेत्र जानना पड़ेगा और उसी के अनुसार हमें बांध का आकार भी बनाना होगा। आर्थिक दृष्टि से बांध वहाँ होना चाहिए जहाँ सबसे ज्यादा पानी इकट्ठा हो सके और मिट्टी की भराई भी कम से कम हो, जहाँ जगह सकरा हो और पानी जमा करने का जगह गहरा हो। अगर बांध ऊंची जमीन पर है तो सिंचाई के लिए नाला या नहर का उपयोग होगा और पानी गुरुत्वाकर्षण से अपने आप नहर में बहेगा। बांध नीची जमीन पर होगा तो सिंचाई के लिए पंप और पाइप की आवश्यकता होगी। बांध उसी स्थान पर बनाना उचित है जहाँ मिट्टी आसानी से मिल जाए। मिट्टी क्षारीय और दलदली नहीं होना चाहिए। भारी मिट्टी वर्षा में फूलेगी और गर्मियों में सिकुड़ जाएगी, जिससे बांध में दरार हो जाएगा। मिट्टी की बांध की चौड़ाई मिट्टी से पानी के रिसाव के रास्ते पर निर्भर करता है। अगर बांध की चौड़ाई कम करना है किसान भाइयों, तो बांध के बीच में करीब 1 मीटर अपारगम में मिट्टी या पदार्थ देना होगा, जिससे पानी का रिसाव कम हो। जहाँ की जमीन बांध के लिए उपयुक्त नहीं है वहाँ वर्षा का पानी जमा करने के लिए तालाब ही बनाना उचित होगा। जल ग्रहण क्षेत्रों का आकार, ढाल, मिट्टी की संरचना और प्रकार, वार्षिक वर्षा इत्यादि, तालाब में मिट्टी को आने से रोकना, ये सारी बातें जरूरी हैं। किसान भाइयों, अगर जल संग्रह क्षेत्र में कहीं प्राकृतिक गड्ढा है तो वह स्थान तालाब के लिए सर्वोत्तम है। वहाँ मिट्टी की कोड़ाई भी कम होती है। जहाँ की मिट्टी में चूना, बड़ा दरार या नाली हो वहाँ ऐसा स्थान तालाब के लिए उपयोगी नहीं है। अगर तालाब कोड़ाई के समय पानी निकल जाए तो वैसे तालाब में पानी सालों भर रहता है। किसान भाइयों, तालाब का आकार पानी के उपयोग पर निर्भर करता है। तालाब सिंचाई के उद्देश्य से पानी पीने के लिए और जानवरों के लिए या सभी जगहों के लिए बनाया जा सकता है। किसान भाइयों, इसके साथ ही सूक्ष्म सिंचाई और उन्नत सिंचाई प्रणाली, जिसके द्वारा बागवानी फसलों के पौधों के जड़ क्षेत्र में विशेष रूप से निर्मित प्लास्टिक पाइपों द्वारा कम समय अंतराल पर पानी दिया जा सकता है। वर्षा से पहले सिंचाई की व्यवस्था कर लेना बहुत सही होता है, जिससे कि हम वर्षा जल का संरक्षण बेहतर विधि से कर सकें। किसान भाइयों, हम बातें कर रहे थे बागवानी फसलों में समेकित जल प्रबंधन की। इसी जानकारी के साथ हमें कार्यक्रम खेती की बातें से अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें, ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। सुनते श्री रामचरित मानस गान।
1: एपिसोड नंबर 156 156।

श्री राम की कोई भी सीख, कोई भी तर्क लक्ष्मण के उनके साथ वन जाने के संकल्प को नहीं टिका सका, तो श्री राम को समर्पित छोटे भाई की अनुनय विनय माननी पड़ी। तब उन्होंने लक्ष्मण से जाकर माता की अनुमति ले लेने को कहा। हर्षित हृदय से लक्ष्मण माता के पास पहुंचे और उन्हें विस्तार से सब कुछ कह सुनाया। घटना चक्र की गति से माता सुमित्रा इस प्रकार सहम गई जैसे जंगल में लगी आग से हिरनी भयभीत हो जाती है। कैकेयी की करनी पर उन्होंने अपना सिर पीट लिया। श्री राम तथा सीता के प्रति लक्ष्मण के प्रेम और आदर तथा समर्पण की भावना से वो भली भांति परिचित थी। बोली, हे पुत्र, जानकी तुम्हारी माता हैं और तुम पर अथोर स्नेह रखने वाले श्री राम तुम्हारे पिता के समान हैं। जहां उनका निवास हो वही अयोध्या है। यदि वे वनगमन करें तो तुम्हारे यहां होने का कोई अर्थ नहीं है। गुरु, पिता माता, भाई देवता तथा स्वामी की प्राणपण से सेवा करनी चाहिए। जो भी पूजनीय तथा प्रिय लोग हैं वे केवल राम के कारण पूज्य और प्रिय हैं। अतः श्री राम और सीता के साथ वन जाओ और जीवन को सार्थक करो। मैं बड़भागी हूं जिसके पुत्र का श्री राम चरणों में ऐसा अनुराग है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम वन को जा रहे हैं, अतः वन में तुम पूरी निष्ठा, मन, वचन और कर्म से उनकी सेवा करना।

मानव अपने अच्छे विचारों से महान बनता है, न कि पहनावे दिखावे से। जिनमें सादगी, सरलता, विनम्रता है, वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। सादा जीवन, उच्च विचार सूक्ति का तात्पर्य व्यक्तित्व से है, चरित्र से है। जिनका जीवन सरल सहज है, व्यवहार कुशलता से भरपूर हैं जो लोग, जिनकी वाणी मीठी है, स्वार्थ से परे परमार्थ करने वाले हैं, वो मनुष्य सचमुच मानवता के प्रतीक हैं। आज के दौर में लोग कृत्रिम हो गए हैं, दिखावे आडंबर में हमेशा उलझे रहते हैं। औरों से ज्यादा पाने की लालसा उन्हें हमेशा अशांत रखती है। जीवन भर और पाने की इच्छा में वो भागते रहते हैं और ऐसे लोगों का जीवन अशांत, तनावग्रस्त, अस्वस्थ रहता है। मानव इच्छाएं तो अनंत हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए जो इस बात को समझता है वह सीमित संसाधन में भी प्रसन्न रहता है। संत कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। अर्थात, हे प्रभु, मुझे बस इतना ही दीजिए जिसमें मेरा पूरा परिवार अच्छे से रह सके और भरण पोषण हो सके। ना मैं भूखा रहूं, ना ही मेरे दरवाजे से कोई अतिथि भूखा जाए, और इससे ज्यादा पाने की लालसा नहीं। जो सच में उच्च विचार वाले होते हैं वो सदैव शांत रहते हैं, सीधे सरल हृदय, आडंबर से दूर परहित करने वाले होते हैं। हमें उन आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए जिनका जीवन सादगी भरा हुआ था। गुरु नानक देव, बापूजी, लाल बहादुर शास्त्री जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गौतम बुद्ध, ईश्वर चंद्र सागर, मदर टेरेसा जैसे कई महान संत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार को आत्मसात किया और सदैव लोगों के काम आते रहे, परमार्थ करते रहे। ऐसे कई उदाहरण हमारे आसपास आज भी मिल जाते हैं जिन्होंने सदैव सादगी को ही अपनाया और अपना जीवन सीधे सरल तरीके से व्यतीत किया। धन दौलत से परे शांति प्रिय जीवन, जो लोग संतुष्ट होते हैं उनका जीवन ऐसा ही होता है और वो सदैव सुखी होते हैं। लेकिन जो लोग असंतुष्ट होते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि इच्छाओं की तो कभी भी कोई सीमा नहीं होती और पाने की इच्छा उन्हें दुखी रखती है। उन्हें ऐसा लगता है कि औरों के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और वह जिंदगी भर इसके पीछे भागते रहते हैं। मानव की उच्च विचार उसे सफलता सम्मान दिलाते हैं, और ऐसे लोग महान होते हैं जिनके विचार उच्च होते हैं, जिनका चरित्र अच्छा होता है, और ऐसे लोग ही आगे बढ़ते हैं और वो हमेशा शांत रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कोई उथल पुथल नहीं होती है, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती है, आडंबर नहीं होता है, वो सादगी पसंद होते हैं, इसलिए वो हमेशा खुश रहते हैं। तो आइए चिंतन के इन क्षणों में हम उन महापुरुषों के आदर्शों का सम्मान करते हुए उसे अपने जीवन में आत्मसात करें, सादा जीवन, उच्च विचार को अपनाएं और अपना जीवन सफल बनाएं।

अभी आप सुन रहे थे आराधना हरिओम शरण की आवाज़ में। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आप सुनेंगे भेंट वार्ता, परिवार में बढ़ती संवादहीनता, कारण एवं बचाव। भेंट वार्ता करें डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद बर्नवाल रांची से, और इनसे बातचीत करेंगे संजय कुमार।

0: मित्रों नमस्कार। मित्रों आज हम एक बहुत ही ज्वलंत समस्या आपके साथ लेकर आ रहे हैं, वो है परिवार में बढ़ती संवादहीनता। आखिर इसका कारण क्या है और इसका निदान हम कैसे करें? परिवार में संवादहीनता कायम हो गई है, लोग आपस में बातचीत नहीं करते हैं और अपना ज़्यादा समय मोबाइल, लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में निकालते हैं। इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जा रही है, परिवार में बिखराव हो जा रहा है, बच्चों के साथ अब अच्छा समय व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं और कभी कभी तो हिंसा का रूप भी धारण कर ले रहा है। आखिर ये हो क्यों रहा है और कैसे इसका निदान किया जाए, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आमंत्रित हैं डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद बर्नवाल, आप वर्तमान में कंसल्टेंट हैं SDA मिशन और RK मिशन और आई बैंक रांची में, और आप एक्स फूड कंसल्टेंट झारखंड भी रह चुके हैं और एक्स चेयरमैन फार्मेसी काउंसिल ऑफ झारखंड को भी आप सुशोभित कर चुके हैं। बर्नवाल सर आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: परिवार में संवादहीनता आजकल क्यों हो गई है सर?
1: अगर सही मायने में कहा जाए तो एक सिंगल कारण है, लोगों का आर्थिक लगाव या अधिक पैसे कमाने की धुन एक सिंगल कारण है जिसके कारण परिवार में बिखराव या टूटना हो रहा है। हम एग्जांपल लेते हैं पहले बचपन से। पहले बच्चे को देखभाल माँ बाप करता था, बाप कमाता था तो माँ अपना केयर करता था, लेकिन अब क्या होता है, दोनों कमा रहे हैं कि उनके एम्बिशन इतने बढ़ गए हैं, उनकी आवश्यकता इतनी बढ़ गई है कि वो एक ही कमाई से फुलफिल नहीं हो सकता है। इसका होता क्या है, बच्चे को मेड या दाई के साथ दे देता है जिसका पालन पोषण करता है। अगर वो परिवार लक्की हुआ तो उनके पेरेंट्स, माँ के या बाप के पेरेंट्स आकर संभाल देते हैं, लेकिन ऐसा मुश्किल से कुछ ही परिवार हो पाता है, अधिकांश परिवार में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद हम आते हैं लेट एज। लेट एज मतलब अर्निंग एज, लड़की जाके 15 से 40-45 साल के बीच में, तो उस समय सुबह निकलता है आदमी, काम करके आता है, थका रहता है तो बात करने का समय नहीं मिलता है, और थोड़ा समय भी मिलता है तो चाहता है कि सोशल मीडिया में, मोबाइल पे, लैपटॉप में व्यस्त रहें, और इसके कारण परिवार टूट रहा है। पति पत्नियों में आपस में संबंध बिगड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें अगर आप बात करोगे तो सॉल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन बात नहीं करोगे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर आप संवाद रेगुलर रूप से करते रहो तो ये संभावना बनती है वो जो दुराव हो रहा है वो दुराव नहीं होगा। उसके बाद आते हैं ओल्ड एज में। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे जो भी आए थोड़ा सा हमें समय दें। एक मुझे रिसेंटली याद पड़ रहा है एक कहानी क्या, सच्ची घटना ही है। बहू और बेटे जा रहे थे मार्केटिंग करने, तो माँ से पूछा कि माँ कुछ मंगाना है, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, तब कहा कि ठीक है बेटा हम लिख के दे रहे हैं। तो एक कागज पर लिखा उन्होंने और बहू और बेटे दोनों मार्केट चले गए। मार्केटिंग जब कर लिए तब बोले कि साहब माँ का कुछ डिमांड है, उसको हम देख लेते हैं, खरीद लें। तो कागज जब खोला गया तो उसमें एक लिखा हुआ था कि बेटा माँ को कुछ क्षण दे दो जिसमें हम बेटे को गोद ले सकें, उसको खाना खिला सकें, दो बात कर सकें। उसके बाद दोनों बहू बेटे वहाँ रोने लगे, भरचौरी आंसू निकल गया, और उन्होंने देखा कि माँ बाप को सामान नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, उनको सम्मान चाहिए, उनको उनके साथ बात करने के लिए संवाद करने की आवश्यकता है जिससे वो अपने समय को आसानी से पार कर सकें। एक और कहानी है, भी सच्ची घटना है। एक बुजुर्ग पिता थे, उनके रूम में AC TV सब लगा हुआ था, चलना

0: रिक्वेस्ट करके बेटा बहू को कहा कि मुझे नीचे बरांडा में मेरा चारपाई लगा दो, ना तैयार नहीं हुआ, लेकिन अंत में बहुत रिक्वेस्ट किया तो कहा चलो लगा देते हैं। तो चारपाई उनका बरांडा में लग दिया गया। उनके पोते थे करीब 5-6 साल 7 साल का, पोता साथ बात करने लगे, गेंद खेलने लगे। 2-4 दिन के बाद उनका बेटा आता है तो पोता कह रहा है कि दादाजी गेंद फेंकिए। बेटा कहता है कि क्या कह रहे हो, तो चल नहीं सकते हैं। नहीं नहीं दादाजी चल सकते हैं, देखिए देखिए फेंकते हैं वो। तब उनको महसूस हुआ कि इनको फैसिलिटी देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इनको चाहिए कि बच्चे के साथ संवाद वो करें, उनके साथ खेले कूदें जिससे वो फिट रह सके। तो संवादहीनता बहुत अधिक हो रहा है परिवार में, और अगर संवादहीनता से हम बच पाएं तो परिवार बहुत हद तक हमारा बच सकता है।
1: डॉक्टर साहब, संवादहीनता के कारण लोग अवसादित भी होते जा रहे हैं, कुछ कुछ लोग हिंसा का सहारा भी लेने लग जा रहे हैं, जो एक बड़ा ही विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकला जाए, एक अच्छा सुखद खुशनुमा माहौल, एक खुशनुमा पल अपने बच्चे अपने परिवार के साथ बिताया जाए।
0: हमारा एक दोस्त था जो उसने कुछ डिमांड किया जब मेडिकल में था, तो उसके भाई और पिताजी ने सारा इनकम दिखा दिया, अब तुम खर्च इसमें करो घर का और अपना पैसा निकाल लो। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ गार्जियन के साथ अब शेयर करते हो तो बहुत हद तक ये अवसाद समाधीनता जो है बच सकते हैं आप, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता है कि आप कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, कहाँ से कमा रहे हो। तो अगर आप इस पर बच्चे को ध्यान देते हैं कि हम जो कमा रहे हैं उसमें ऐसे ऐसे खर्च होता है, तो बहुत हद तक आप बच्चे को हिंसक होने से बच सकते हैं। मेरी मान्यता है कि आप बच्चे को हर एक्टिविटीज उनका सहयोग करें, और साथ में वैसे माँ बाप से जिनको एक्स्ट्रा इनकम है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं बच्चों के लिए, वो कृपया इस पर अंकुश रखें, ताकि बच्चे अपने फाइनेंशियल पोजिशन को कि पैसा कैसे कमाता है कैसे खर्च करता है वो अपना कंट्रोल कर सके, और उनके फ्यूचर भी अच्छा है। तो मेरा सभी गार्जियन से अनुरोध रहेगा कि बच्चे को उतना ही पैसा दें जितनी उसकी आवश्यकता है, उससे अधिक खर्च करें। दो बात होती है, एक होता है उनके दोस्तों में ईर्ष्या की भावना होती है, और अगर उनका बच्चा किसी से कुछ मिसबिहेव किया तो रिएक्शन में वो बच्चा भी रिएक्शन में मारपीट कर लेता है। बच्चे के साथ या इवन माँ बाप के साथ अगर शेयर किया जाए बहुत हद तक इससे हम बच सकते हैं।
1: आजकल लोग किसी से संवाद स्थापित भी करते हैं तो वो व्हाट्सएप के सहारे, एक कमरे से दूसरे कमरे से जाने से वो बचते हैं और मोबाइल का वो उपयोग करने लग जाते हैं। साथ बैठकर भोजन नहीं करते हैं तो बातचीत तो दूर की बात है। तो कैसे तारतम्य स्थापित किया जाए घर परिवार में?
0: इसका फिर एक ही उपाय है कि आप थोड़ा सा सोशल मीडिया या सो कॉल्ड मोबाइल, क्योंकि अभी भी बहुत लोग लैपटॉप वगैरह का उपयोग कम करता है, तो मोबाइल का उपयोग फिक्स टाइम में किया जाए, और जिस समय सभी लोग रहें उस समय एक नियम बना लिया जाए कि मोबाइल का उपयोग हम नहीं करेंगे, और ये मिलजुल कर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
1: और साथ बैठकर भोजन करें और आपस की समस्याएं सुनने की कोशिश करें कि क्या समस्याएं हैं और उसका निदान भी किया जाए।
0: क्योंकि और समय नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर निश्चित रखा जाए तो एक समय अगर एक ही कुर्सी टेबल पर बैठ के लोग खाना खाएं तो उसमें बहुत सारी बातें हो सकती है और समस्या का समाधान हो सकता है।
1: यदि संवादहीनता लगातार लंबे समय तक बनी रहे तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती है डॉक्टर साहब?
0: अभी के समय में सबसे बड़ा है डिप्रेशन या अवसाद। डिप्रेशन में बहुत सारी बातें होती है, अगर डिप्रेशन पेशेंट तो हेडेक होगा, बॉडी एक होगा, ज्वाइंट पेन होगा, मतलब सारे फिजिकल डिजीजेज जो आप कल्पना कर सकते हो अगर डिप्रेशन में गए हो तो सब कुछ हो सकता है, जिसका कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। आपको डिप्रेशन से निकलने के लिए एक ही उपाय है कि परिवार में संवादहीनता किसी नहीं रहे, सब लोग मिलजुल कर रहें और एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे समस्या समझाएं,
1: आपस में मिले बैठे बातचीत करें, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। यदि लगातार हम बात नहीं करते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, सिर्फ हाय हेलो करके ही रह जाते हैं और अपने कामों में हम व्यस्त रह जाते हैं, तो फिर इसे हम कहते हैं संवादहीनता। फिर आपस में प्यार मोहब्बत कैसे बढ़ेगा और कैसे हम मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे? तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मिलिए जुलिए हंसिए शेयर कीजिए।
0: मिलिए जुलिए हंसिए शेयर करिए, ये चाहेंगे, और साथ में एक अनुरोध और करेंगे कि आपका प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्क्रीन टाइम एंड प्रॉपर स्लीप, अगर तीनों चीज़ आप मेंटेन करते हैं तो आप बहुत हद तक सभी बीमारियों से ना अवसाद से बच सकते हैं, डिप्रेशन बच सकते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक पर्याप्त नींद भी बहुत ज़रूरी है और

और एक निश्चित समय हम अपने मोबाइल के लिए रखें और परिवार को वरीयता दें, तब आप खुशहाल रहेंगे और जब आप खुशहाल रहेंगे तो सारा परिवार खुशहाल रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद बर्णवाल, आप आज अब इस कार्यक्रम में आए। और मित्रों, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, लोगों से मिलिएगा, बातें कीजिएगा, कुछ शेयर कीजिएगा, तभी जिंदगी का आनंद है। नमस्कार, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद वर्णवाल से भेंट वार्ता, परिवार में बढ़ती संवादहीनता, कारण बचाओ। आइए अब चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। अब से

0: प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनान्तर्गतं अन्ताराष्ट्रीय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अन्तमीकृत्य स्वीकर्तुं आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्त राष्ट्रसंघे तथा यूरोपीय संघे च निर्दिष्टानां आतंकवादिनां आतंकिसंघटनानां च विरुद्धं अपि च संयुक्त राष्ट्रसंघस्य सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतंकि संघटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्रीनरेन्द्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकातानगरम् आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकातानगरे प्रवासावधौ श्रीरूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धाञ्जलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मेलनं विधास्यति।

श्वः श्रीरुबियो राष्ट्रीय राजधान्यां विदेश मन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिकादेशस्य दूतावासस्य स्वातन्त्र्यदिवसोपलक्ष्ये आयोजिते कार्यक्रमेऽपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्रीरुबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्यप्रदेशे पूर्वीय उत्तरप्रदेशे विदर्भे च तीव्रतर उष्णतरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारितास्ति। अद्य दिल्ली हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ राजस्थान बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थित्यां आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया सञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आंध्रप्रदेशे तेलंगानायां पश्चिम मध्यप्रदेशे पश्चिम उत्तरप्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्याम् अधिकतमं तापमानं 45 डिग्री सेल्सियस यावत् न्यूनतम तापमानं 27 डिग्री सेल्सियस यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडावार्तायाम् आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी।

0: राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरोन लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। यह रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis have called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and for the early finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued after talks between the two leaders in New Delhi yesterday, both sides urged strong and coordinated action against all UN and EU-designated terrorists and terrorist organizations, including those listed under the 1267 UN Security Council Sanctions Committee. As maritime nations with deep-rooted naval traditions, India and Cyprus also agreed to expand cooperation in the maritime domain. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata this morning on a four-day visit to India. This is his maiden visit to India. During his stay in Kolkata, Mr. Rubio is expected to pay respects at Mother Teresa's cemetery. He is also likely to visit the Victoria Memorial. Later, the U.S. Secretary of State will arrive in New Delhi and call on Prime Minister Narendra Modi. The Ministry of Petroleum and Natural Gas has said that India has adequate availability of petrol and diesel and supplies across the country remain stable. In a social media post, the ministry advised citizens to avoid panic buying and to purchase fuel only as per actual requirement. It said any temporary pressure at a few retail outlets is being addressed through continuous supply monitoring and coordinated distribution by oil marketing companies. Indian Army officer Major Abhilasha Barak, serving with the United Nations peacekeeping mission in Lebanon, has been selected for the prestigious 2025 United Nations Military Gender Advocate of the Year Award. Major Barak is currently serving with the Indian Battalion as commander of the female engagement team in the United Nations Interim Force in Lebanon. She is also the first woman combat helicopter pilot of the Indian Army. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12 board examinations by one more day until tomorrow. Earlier, the deadline was today. CBSE said the decision was taken after its website experienced unprecedented traffic over the past few days, along with several attempts

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए आपको बताते हैं प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन समय में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 7:15 पर आप सुनेंगे रागरम, 7:45 पर आप सुनेंगे रांची से कानून की बातें, समाचार प्रभात का समय होगा 8:00, 8:15 पर आप सुनेंगे दिल्ली से मॉर्निंग न्यूज, 8:30 पर हम चलेंगे रांची जहाँ से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, गीत गुंजन का समय होगा 8:45 पर, 9:00 का समय होगा जोहार पलामू का, 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 10:00 का समय होगा हिंदी में समाचार का, 10:05 पर आप सुनेंगे दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार, 10:10 पर आप सुनेंगे विविध भारती में गीतों भरी कहानियाँ, 11:00 रंग तरंग, 12:00 यादों की महफिल, 1:00 का समय होगा हिंदी में समाचार का जो दिल्ली से प्रसारित होंगे, 1:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार दिल्ली से, 1:10 पर आप सुनेंगे रांची से प्रादेशिक समाचार, 1:20 पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से, 2:00 का समय होगा दिल्ली और मुंबई से अंग्रेजी में समाचार का, 2:15 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दोपहर की सभा में, 2:30 पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में सदाबहार नगमे, प्रादेशिक समाचार का समय होगा 2:55 पर, 3:00 आप सुनेंगे विविध भारती में मन चाहे गीत, 3:30 पर आप सुनेंगे नाट्य तरंग, 4:00 का समय होगा रांची से प्रादेशिक समाचार का, 5:02 पर आप सुनेंगे विविध भारती में छाया गीत,

शाम 5:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। युवाओं का संबोधित कार्यक्रम युवाणी का समय होगा 5:35 पर। 6:00 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का। 6:02 पर सुनेंगे खेती बाड़ी। किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम किसान वाणी का समय होगा 6:30 पर। 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम में भेंट वार्ता। वास्तु का हमारे जीवन में महत्व, भेंट वार्ता का रहेंगे श्री विजयानंद सरस्वती और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। 7:45 पर आप सुनेंगे विज्ञान जगत। 8:00 का समय होगा चित्रपट संगीत का। 8:30 पर आप सुनेंगे इंद्रधनुष में विविध क्षेत्रीय फिल्म संगीत। 8:45 पर सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली से। अंग्रेजी में समाचार का समय होगा दिल्ली से 9:00। 9:15 पर आप सुनेंगे दिल्ली से उर्दू में समाचार। 9:30 पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती। 10:00 का समय होगा रजनीगंधा का। 11:00 आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। 11:05 पर आप सुनेंगे दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार और हम अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि के 11:10 पर। ये थी हमारी आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज

सुनेंगे, कानून की बातें भेंट वार्ता होगी, पत्नी बच्चे और माता पिता के भरण पोषण के अधिकार। भेंट वार्ताकार हैं श्री निर्मल कुमार भारती और इनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार।

0: मित्रों, जब कोई व्यक्ति आपराधिक मामलों में पीड़ित हो जाता है या उसके साथ कोई घटना घटित हो जाती है, कोई भी आपराधिक घटना, जैसे वो एसिड अटैक का शिकार हो जाता है या उसे आर्थिक या मानसिक क्षति होती है या वो हत्या और बलात्कार का शिकार हो जाता है, तो ऐसे में जो पीड़ित व्यक्ति है उसके भी अपने अधिकार है, वो भी अपने अधिकारों को संरक्षण कर सकता है, उसके भी अपने संवैधानिक अधिकार है। उस अधिकारों को कैसे प्राप्त करे, कैसे कानूनी रूप से उसका संरक्षण प्राप्त हो, इसी विषय पर हम बात करेंगे। आज का हमारा विषय है आपराधिक मामले में पीड़ित व्यक्ति के अधिकार। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं झालसा के एडवोकेट और मीडिएटर श्री कौशल कुमार जी। कौशल जी, स्वागत है। कौशल जी, आपराधिक मामले में जो व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, जैसे मैंने बताया, तो पीड़ित होने के बाद उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहती है और जिस व्यक्ति को आर्थिक नुकसान हो जाता है वो भी पीड़ित हो जाता है, तो कौन कौन से ऐसे अधिकार है जिसके लिए वो अपना संरक्षण कर सकता है?
1: कानून में पहले पीड़ितों के लिए अधिकार नाम मात्र था, इसमें रिसर्च किया गया और अमेंडमेंट्स के द्वारा CRPC जो हमारा पुराना है उसमें एक केंद्र सरकार के द्वारा एक अमेंडमेंट किया गया जो अभी वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 के अंतर्गत धारा 396 में पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार को पीड़ितों के अधिकार एवं संरक्षण के लिए एक कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जिसमें कभी भी न्यायालय द्वारा प्रतिकार जो पीड़ित होते हैं के लिए सिफारिश की जाती है तो उसको जिला सेवा पदाधिकार और राज्य विधिक सेवा पदाधिकार के द्वारा उस पीड़ित व्यक्ति को कानून के तहत कुछ अधिकार दिए गए और उनको मुआवजा पाने का भी हक है। अगर हम बात करें तो BNS में महिलाओं, बच्चों, संगठित अपराध और आतंकवाद से

0: संबंधित अपराधों में करे प्रावधान किए गए हैं, जिसमें पीड़ितों की गरिमा और सुरक्षा को मजबूत करने की ओर अग्रसित है। संहिता में न्याय एवं अधिकार सब्सटेंसिव लॉ प्रदान करती है, जिससे पीड़ित को अविलंब न्याय मिल सके। अब अगर हम लोग आपराधिक मामलों में बहुत सरल भाषा में अगर हम लोग बात करें तो BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 में पीड़ितों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे वो BNS की धारा BNSS की धारा 173 के अंतर्गत उसको तुरंत FIR दर्ज करने का अधिकार है, और उस दिए गए FIR की प्रतिलिपि पीड़ित पक्ष को निशुल्क देने का प्रावधान है। अगर मान लीजिए कि कहीं किसी कारणवश पुलिस उस FIR को दर्ज नहीं कर पा रही है तो प्राइवेट कंप्लेन बिफोर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ भी अपने वाद को अपने विरुद्ध हुए आपराधिक मामलों के लिए वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। उसी तरह अगर हम बात करें तो जांच में निष्पक्षता, पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले इसके लिए एक निष्पक्ष और समयबद्ध जांच को सुनिश्चित करने का भी प्रावधान है। पहले पीड़ित को न्यायालय में भागीदारी का प्रोविजन नहीं था, जिसको अमेंडमेंट करके पीड़ित पक्ष अपने शिकायत में भागीदार हो, अपने सुनवाई में कैसे न्यायालय उसको अग्रसित कर रही है, पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, किस ओर अग्रसित हो रही है, उसको जानकारी रखने का भी अधिकार दिया गया। साथ ही अपने वकील को, पहले वकील नहीं रख सकते थे पीड़ित पक्ष, सरकारी अधिवक्ता ही पीड़ित का पक्ष रखते थे, तो अब सरकारी वकीलों को असिस्ट करने के लिए भी पीड़ित विक्टिम अपने वकील के माध्यम से अपनी बात न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं। उसी तरह पीड़ित को पहले डर होता था कि मेरे गवाहों को धमकाया जाएगा, गवाह न्यायालय तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसके लिए भी पीड़ित को यह अधिकार दिया गया और पीड़ित के सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई, ताकि वो न्यायिक प्रक्रिया में सरल तरीका से अपनी बात को रख सके और न्यायिक प्रक्रिया में अपना सहयोग कर सके। साथ ही मान लीजिए कि जिस व्यक्ति आपराधिक व्यक्ति के विरुद्ध उन्होंने FIR किया है या शिकायत वाद दर्ज किया है और वो किसी कारणवश एक्विटल हो जाता है, तो उसके लिए पीड़ित को डायरेक्ट BNSS की धारा 413 के अंतर्गत उसे न्यायालय में अपील करने का अधिकार भी दिया गया है। साथ ही पीड़ित के लिए मान लीजिए कि वो गरीब है, वो अपना वकील नहीं रख सकता है, तो उसको सुलभ न्याय पाने के लिए अपने विरुद्ध जो वो पीड़ित है उसके लिए भी उसको न्यायालय के द्वारा जिला विधिक प्राधिकार DLSA और झालसा में एक आवेदन दे करके एक पैनल एडवोकेट मांग सकता है, और हमारे डालसा और झालसा में अच्छे हर तरह के एडवोकेट्स का एक पैनल है जो उनकी बातों को निशुल्क रूप से सहायता दे सकता है जी। उसी तरह सुरक्षा का अधिकार है, और सबसे बड़ी बात है उसको उसमें पीड़ित को के पक्ष में गोपनीयता का भी अधिकार उसको दिया गया है। मान लिया जाए कि किसी महिला के द्वारा एसिड हुआ हो, बलात्कार हुआ हो, तो उसके परिचय को उजागर करने से कानून रोकता है। उसी तरह और अगर बात करें तो पहले न्यायालय में वो सुनवाई प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाता था, उसमें भी कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट जो आया है, संहिता जो आई है, उसमें की धारा 338 और 339 के अंतर्गत उसको न्याय पाने का भी अधिकार है। इस तरह इसके कई अधिकार इनको दिए गए हैं। अब इसको अगर हम लोग विस्तृत रूप से अगर चर्चा करें तो संहिता की धारा 396 में विक्टिम को, वैसे विक्टिम जिसको सहायता दी जानी है, जैसे बलात्कार बोल लीजिए, पोस्को एक्ट के तहत पीड़ित व्यक्तियों को तुरंत 357 सी के अंतर्गत ट्रीटमेंट चिकित्सा निशुल्क देने का अधिकार दिया गया है। इसमें चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या किसी भी तरह का अस्पताल हो। अब इसको हम और थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप से आपके माध्यम से बतलाना चाहेंगे कि मान लीजिए कि पीड़िता ने FIR तो दर्ज कर दी, लेकिन आपराधिक मामले में अपराधी नहीं पकड़ा गया और उसका ट्रायल विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं हो पाया, पीड़ित तो है, तो ये एक क्वेश्चन उठता है कि अब उसको कहाँ न्याय मिलेगा। जो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा एक जो स्कीम बनाई है जिसको डालसा और झालसा के माध्यम से दिया जाता है, तो जहाँ ट्रायल नहीं हो पाता है वैसे पीड़ितों लोगों के लिए एक आवेदन डालसा में दें और डालसा में जो एक प्रावधान है उसके तहत उनको तुरंत सुविधाएं दी जाएगी। जो एक सरकार के द्वारा जो पीड़िता को देने के लिए मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है उसको 15 दिनों के अंतर्गत जांच करके उसको अविलंब इस पे सहायता उनको आर्थिक रूप से दी जाती है।
1: जी, यदि उसके अधिकारों की जानकारी नहीं है, वो पीड़ित हो गया है, इस तरह की तमाम घटनाओं का वो शिकार हो जाता है, चाहे वो हत्या हो, बलात्कार हो या अन्य भी आपराधिक मामलों में वो पीड़ित हो जाता है, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को कौशल की जानकारी नहीं होती है, इसके अभाव में वो फिर इस तरह के मामलों को सहता रहता है और लाचार और विवश अपने आप को मान लेता है, तो वो कहाँ संपर्क करे, कैसे संपर्क करे? और ये सारी प्रक्रिया निशुल्क है, वो हम उन्हें ये भी कहेंगे कि आप आइए, तो वो कहाँ संपर्क करे?
0: देखिए, इसके लिए प्रत्येक जिला में
1: जी
0: थाना है, उपायुक्त महोदय हैं और SP हैं जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य हैं, उनके यहाँ एक आवेदन दे सकते हैं और वो आवेदन संबंधित जिला के DLSA को अग्रसित कर दी जाती है या प्रत्येक जिला में DLSA कार्यरत है और हर राज्य में झालसा भी कार्यरत है, वहाँ पे एक आवेदन देकर के अपनी बात रख सकते हैं जिस पर निष्पक्ष जांच कर तुरंत पीड़िता को अग्रिम सुविधाएं और मुआवजा की राशि अग्रसित की जाती है।
1: और खास कर यदि पीड़ित महिला है तो उसके लिए भी अलग से अधिकार है, सारी कार्रवाई निःशुल्क रहेगी उसके लिए।
0: हाँ, अगर वो अपने तरफ से अगर कोई कानूनी कार्रवाई में उसको सहायता चाहिए तो वो आवेदन डालसा को दे और डालसा उसको अपने पैनल से, अच्छे एडवोकेट का एक पैनल है डालसा के पास,
1: निशुल्क
0: उसको ये सुविधा दी जाएगी।
1: जी कौशल जी, जो पीड़ित है वो असहाय और लाचार नहीं माने अपने आप को, भयभीत नहीं हो और वो इस प्रक्रिया का वो लाभ ले, तभी उसे सुलभ न्याय मिल पाएगा, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को?
0: माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर अपने निर्णयों के द्वारा पीड़ितों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जैसे अगर आप देखें तो दिल्ली डोमेस्टिक वायलेंस मूवमेंट फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बलात्कार पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता और मुआवजा के आवश्यक तत्व को बतलाया है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी एसिड अटैक पीड़ितों के लिए मुआवजा और पुनर्वास को अनिवार्य किया गया है। इस तरह के कई मामले हैं जिसमें कानून पीड़ितों के साथ है और पीड़ित के पक्ष में है कि हर पीड़ित को न्याय मिल सके।
1: जी, कानून हर लोगों के साथ है और कानून किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता है, और यदि आप इस तरह के पीड़ित व्यक्ति हैं तो आप अपने अधिकारों का उपयोग कीजिए और आपको सुलभ और त्वरित न्याय प्रणाली के अंतर्गत आपको न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कौशल कुमार जी, एडवोकेट एंड मेडिएटर झालसा, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपराधिक मामलों में पीड़ित व्यक्ति के कौन कौन से अधिकार हैं इस विषय पर आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, अगले सप्ताह एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।

0: आपराधिक मामलों के पीड़ितों के अधिकार। अभी आप ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट वार्ताकार थे श्री कौशल कुमार, अधिवक्ता मेडिएटर झालसा, भेंटकर्ता थे संजीव कुमार लाल। अब आज का कानून की बात प्रक्षम यही समाप्त होता है। प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की थी। आकाशवाणी का यह रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर पर 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे। पहले हिंदी में समाचार, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार, और फिर 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बस थोड़ा सा इंतजार।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
5: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग

0: में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
2: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जांजीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्यों, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
5: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडर और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
6: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाईं और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद ने कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे NewsOn AIR ऐप और NewsOn AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOn AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे 100% त्रुटि रहित। नव भारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, है प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्ते की हेडलाइन है आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के

0: To boost biodiversity and climate resilience, the Andhra Pradesh Forest Department has launched preparations to produce 25 million seed balls in June during the monsoon season, writes the statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani ka ye Ranchi kendra hai. Aaye sunte hain pradeshik samachar.
3: Akashvani Ranchi se prastut hai pradeshik samachar. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में देशभर के 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री संजय सेठ होंगे शामिल। राज्यभर के सभी मतदान केंद्रों पर आज ऑन मैप्ड मतदाताओं की सूची की जाएगी प्रकाशित। ऑन मैप्ड मतदाता अपने बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में करा सकते हैं मैपिंग। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने अपराध और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दिए निर्देश। पुलिस गश्त बढ़ाने और आम लोगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर दिया जोर। राज्य भर में पड़ रही है भीषण गर्मी। 44.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा मेदिनीनगर का तापमान। कल तक हीट वेव चलने की चेतावनी। और रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू। पुरुष 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल मुकाबले में अनिमेश कुजूर ने 10.15 सेकंड के साथ बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
4: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: यह रोजगार मेला झारखंड समेत देश भर के 47 केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। रांची में कार्यक्रम का आयोजन सीसीएल ऑडिटोरियम में होगा। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहेंगे। राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर आज ऑन मैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाएगी। यह सूची 2 सप्ताह तक प्रदर्शित की जाएगी। सभी ऑन मैप्ड मतदाता अपने बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में अपनी मैपिंग करा सकते हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक में यह निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटना चाहिए और पुनर्निरीक्षण का कार्य पूरी पारदर्शिता तथा गंभीरता के साथ संपन्न कराए जाए। राज्य के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने लातेहार दौरे के दौरान जिले की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर उग्रवाद, संगठित अपराध, महिला सुरक्षा और नशाखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की जानकारी ली। बैठक में डीजीपी ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलर

0: रणनीति अपनाने का निर्देश देते हुए पुलिस गश्त बढ़ाने और आम लोगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जनजातीय सांस्कृतिक समागम में शामिल होने नई दिल्ली जा रहे लोगों से टाटानगर रेलवे स्टेशन पर मुलाकात की। इस मौके पर चंपाई सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा को जनजातीय समाज का प्रेरणा स्रोत बताते हुए कार्यक्रम की सफलता की कामना की।
1: रूढ़ी जन प्रथा को बचाना है जो वर्षों से हमारा पूर्वजों ने हजार हजार साल पहले से लड़ाई लड़ते लड़ते जल जंगल जमीन का बाद और अपना अस्तित्व को बचाने के लिए खून का नदी बहाया। इन भाषा संस्कृति जीवित रहे और इसका उत्थान हो।
0: रांची के टाटीसिल्वे थाना क्षेत्र स्थित एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के दौरान कंप्यूटर सिस्टम हैक कर कदाचार कराने का प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल फोन, बैंक चेक और शैक्षणिक प्रमाण पत्र समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक 27 मई को शाम 4 बजे से आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार बैठक प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। इसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। राजधानी रांची समेत कई जिला भीषण गर्मी की चपेट में है। 44.4 डिग्री सेल्सियस के साथ मेदिनीनगर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं रांची का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और कोडरमा में दिन में तेज धूप व तापमान में वृद्धि होगी। वहीं पलामू, गढ़वा, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला में तापमान में वृद्धि के साथ लू चलने की संभावना है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली की प्रसूति और स्त्री रोग विभाग की डॉक्टर अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पर इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में देश भर से 750 से अधिक एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन 7 स्पर्धाओं के फाइनल मुकाबले संपन्न हुए। पुरुष 100 मीटर के दौड़ के सेमीफाइनल में अनिमेश कुजूर ने 10.15 सेकेंड का समय निकालते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। वहीं महिला लंबी कूद में एनसी सोजन ने 6.75 मीटर की छलांग लगाकर नया मीट रिकॉर्ड कायम किया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ। प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुष 10,000 मीटर दौड़ में उत्तराखंड के दीपक भट्ट ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि महिला वर्ग में महाराष्ट्र की रवीना गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन को लेकर खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। 4 दिनों तक चलने वाली

0: इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 62 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, 27 ओलंपियन और कई एशियन एवं वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक विजेता हिस्सा ले रहे हैं, जिससे रांची में खेल प्रेमियों के बीच उत्साह का माहौल है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान तारीख की घोषणा की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर और हिंदुस्तान ने लिखा है, झारखंड की 2 समेत 10 राज्यों की 24 सीटों पर 18 जून को मतदान। दैनिक भास्कर ने जेटेट भाषा विवाद पर सत्ता पक्ष में मतभेद की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर होगी अभेद सुरक्षा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में देशभर के 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री संजय सेठ होंगे शामिल। राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर आज ऑन मैप्ड मतदाताओं की सूची की जाएगी प्रकाशित। ऑन मैप्ड मतदाता अपने BLO से संपर्क कर मतदाता सूची में करा सकते हैं मैपिंग। DGP तदाशा मिश्रा ने अपराध और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दिए निर्देश। पुलिस गश्त बढ़ाने और आम लोगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर दिया जोर। राज्यभर में पड़ रही है भीषण गर्मी, 44.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा मेदिनीनगर का तापमान। कल तक हीट वेव चलने की चेतावनी। और रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू। पुरुष 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल मुकाबले में अनिमेश कुजूर ने 10.15 सेकंड के साथ बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहां जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर

धक्का लगता है, तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ के चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे।

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आज सुनते हैं गीत गुंजन। गीत गुंजन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम के शुरुआत में हम आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल का ये गाना अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाटिकर की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल मोहम्मद अमीर की आवाज़ में फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का ये गाना। और इसी गीत के साथ हमें गीत गुंजन से आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे गीत गुंजन, ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं जोहार पलामू।

जो हर प्रभु सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं आज का सुविचार। हमारे आज के सुविचार इस प्रकार से है, कहते हैं कठोर परिश्रम और धैर्य ही सफलता के मूल मंत्र होते हैं। जी हाँ, जब तक हम परिश्रम ना करें तब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ को पाने के लिए परिश्रम अति आवश्यक है। हम बातें और भी करेंगे, सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जो हर ग्लैमर कार्यक्रम को बढ़ाते हुए जानते हैं मौसम का मिजाज। तो आज का अधिकतम तापमान है 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 28 डिग्री। तो गर्मी का मौसम जो है एकदम प्रचंड हो चुका है और हमें इससे प्रचंड

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जो हर पलामू, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बातें करते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति हम किस प्रकार से सचेत रहेंगे। जिस तरह की अभी गर्मी पड़ रही है, ऐसे में हमें अपनी देखभाल करना अति आवश्यक है। भीषण गर्मी और लू के हीट स्ट्रोक से बचने के लिए शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत ही जरूरी है। धूप में निकलने से पहले हमें पानी पीना बहुत ही जरूरी है। सूती और हल्के ढीले कपड़े पहनें और अपने सिर व चेहरे को ढक कर रखें। सादा पानी नियमित रूप से पीते रहें, भले ही आपको प्यास लगे या ना लगे। बाहर निकलते समय अपने पास पानी की बोतल जरूर रखें। संतुलन के लिए नींबू पानी, ORS और नारियल पानी छाछ या बेल का शरबत भी आप पी सकते हैं। मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूज, संतरा, खीरा, ककड़ी खाएं, जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। बाहर जाते समय खाली पेट न रहें, कुछ हल्का खा कर रहें। तला भुना और बासी खाने से बचें। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें, क्योंकि इस समय धूप सबसे तेज होती है और सीके सबसे ज़्यादा होती है। बाहर जाना जरूरी हो तो छतरी का इस्तेमाल करें या धूप चश्मा का इस्तेमाल करें। शरीर को पूरी तरह ढकने वाले हल्के रंग के सूती कपड़े पहने। लू लगने का जो उपचार है वो हमेशा अपने साथ रखें। यदि किसी को लू लग जाए तो उन्हें तुरंत ठंडी या छायादार जगह पर लिटा दे। शरीर पर ठंडे पानी का पट्टियां रखें और कूलर या पंखे की हवा दे। अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़े तो बेहोशी छाए तो तुरंत हमें डॉक्टर से मिले और हमें मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अभी जो गर्मी पड़ रही है, अभी जैसा मौसम है, उस मौसम से हम लड़ सकते हैं। हम अपने शरीर का बचाव कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख सकते हैं। अगर हम खान पान की बात करते हैं तो हमें हल्के ताज़ा भोजन लेना हो, सुबह का नाश्ता घर करके चले, साथ में भी कुछ खाने पीने का चीज़ें रखें। नींबू पानी पिए, शरबत पिए, साथ ही साथ आप सत्तू का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में

इसी गीत के साथ जोहार पलामू से हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे जोहार पलामू, खेल विज्ञान एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों पर आधारित ये कार्यक्रम। प्रस्तुति स्वर्था पिंकी कुमारी का और संयोजक थे एस के लाल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है, FM 103 MHz पर। लीजिए पेश है फिल्म संगीत में, हम आपको सुनाते हैं फिल्म लाल।

और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत से मैं आज्ञा दीजिए, नमस्ते। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार अब से कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
2: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की ये पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार ये वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर स्थित एक विशेष न्यायालय ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी मजदूरों को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके पास अवैध दस्तावेज में ये मजदूर तिरुप्पुर जिले के पल्लडम के एक कपड़ा कंपनी में काम कर रहे थे। जांच के दौरान उनके पास बांग्लादेशी नागरिकता दर्शाने वाले पहचान पत्र भी पाए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विशेष न्यायालय में सुनवाई के बाद कल ये फैसला सुनाया गया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में भी कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतरोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रिकेल।

आप हैं आकाशवाणी दिल्ली की इंद्रप्रस्थ सेवा के साथ, और जिन मीटर्स पर आप हमें सुन रहे हैं वो है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम

10 किलोहर्ट्ज पर। समय हो चुका है आपकी पसंद का, जी हाँ, फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और वो भी आपकी पसंद का। आप अपनी पसंद भेजेंगे हमें डिजिटल पत्र के साथ, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिजिटल पत्र का मतलब आप भेजेंगे मेल के माध्यम से, क्योंकि भाई अब संदेश भेजने का काम तो होता है लेकिन उसका जो तरीका है वो बदल गया है। तो इस बारे में हम आपके सामने अपने क्या क्या विचार रखेंगे आज डिजिटल पत्र या पत्र के ऊपर।

0: कर लो।
1: मगर ऐसा नहीं था, वो रातों को रोती रहती थी, यहाँ तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था कि कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रुपए की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपए नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके, फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जाए यहाँ से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसटने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलते हुए उसकी टांगें और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती, वहाँ के भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके मुकाबले में कमजोर थी, इसलिए वो वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे कि वो उनके मुकाबले में ज्यादा काबिले रहम लगती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसके हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो ये है कि किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं।

थोड़ी देर बाद एल्युमिनियम के कटोरे में एक रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहाँ क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के के कटोरे को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था, उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी के जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं। लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूँ।

तुम मरना क्यों चाहती हो? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें ये पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूं हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नजर संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूँ, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूँ। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूँ, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूँ तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे, उनकी हार होगी तुम्हारी जीत होगी, और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

चंद पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरीह का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेल कूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इसी दौरान उसकी नजर अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी।

हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहां खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ा कर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी, बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।

संत बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है, तोते की तरह रटना

बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिखकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूँ? मेरे बाप जिंदा है या नहीं, मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है। मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है। माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।

अब मौसी ही मेरी माँ है और वही मेरे बाप भी है। मैं पढ़ लिख कर अपनी मौसी का नाम रोशन करूंगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था, और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपने कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है, सब दुनिया के बनाए हुए उसूल हैं। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें, कोशिश जरूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखियों का सहारा लिए हुए रुक्मणी स्टेज पर पहुंची।

रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती है जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आएं और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है, उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए। लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिख कर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

गीतों भरी कहानी में आप सुन रहे थे इब्राहिम यादगिरी की कहानी गोल्ड मेडल। वाचक स्वर नेहा शर्मा, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन।

कार्यक्रम का आगाज हमने किया फिल्म गमन की इस गजल के साथ। गायिका थी छाया गांगुली, इसे लिखा था मखदूम मोहिउद्दीन साहब ने और धुन बनाई थी जयदेव ने।

जगजीत कौर की आवाज में हम आपको फिल्म बाजार की ये रचना सुनवा रहे हैं। मिर्जा शौक की रचना है और खयाम साहब की धुन।

जगजीत कौर को अभी आपने सुना फिल्म बाजार में। और लीजिए अब सुनिए कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की रचना, आवाज चित्रा सिंह की है और फिल्म का नाम है साथ साथ।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।

0: प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
0: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
0: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
0: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म गजल का ये गीत सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और धुन बनाई है मदन मोहन ने।

ग्यावस्ती आशा भोसले की और फिल्म का नाम था उमराव जान। इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आवाज लता मंगेशकर की फिल्म का नाम है लेकिन। गीत को गुलजार साहब ने लिखा है और धुन बनाई है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

रहे थे स्वर यात्रा के 90 वर्ष। आकाशवाणी के पूर्व उद्घोषक श्री प्रमोद कुमार राय और प्रभु शरण की से उनसे बातचीत कर रहे थे। सहयोग प्रस्तुति थी बसंत कुमार की। हम आकाशवाणी के राज्य केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम आपकी पसंद बस कुछ ही पलों में।

बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी यही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहां पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते, इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी दो दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ

पांच देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर्स से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई, और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है, दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। UAE के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है। और आपने देखा होगा ये सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी। और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, ASML, ASML के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। ASML, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही

भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल्ड मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती है। यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल्ड वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स
दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा और स्वाभाविक है रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब्स दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं, तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भार का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है, यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं
उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं।

इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी भूलता हूं। उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है।

नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं, तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं, शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटी को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं।
उनके सामर्थ्य

की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है, और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से हैं, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से हैं। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही हैं। जो पहले से सरकार में है वो भी हैं, जो नए आ रहे हैं वो भी हैं। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों,

0: आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे तो यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।

0: ये था आज का मैटिनी शो। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग मिडिल सोसाइटी के सचिव अजय सहगल को फर्जी सहमति पत्र जमा करके धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन प्राप्त करने से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जांच पंजाब पुलिस ने किसानों की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की थी। विभाग की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 15 भूस्वामियों की 30.5 एकड़ भूमि के संबंध में फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपये तक की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए गीतकार कैफी आजमी के कुछ गीत चुने हैं।

ये लगता है कि यहाँ

ये आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था हंसते जख्म। गीतकार कैफी आजमी थे और संगीतकार थे मदन मोहन।

ये स्वर लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है आखिरी खत। कैफी आजमी के बोलों को संगीत से सजाया है खयाम साहब ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नौनिहाल से लिया है। गीतकार कैफी आजमी के बोलों को संगीत में ढाला है मदन मोहन ने।

0: यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था नौनिहाल।
1: अरे सुनो।
2: हाँ।
1: सावधान रहना।
2: क्यों, क्या हुआ, कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
1: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
2: अच्छा।
1: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
2: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
1: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
2: तो
1: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
2: अच्छा,
1: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
2: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
1: क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतकार कैफी आजमी की गीत रचनाएं। आइए सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म गोरा का ये गीत।

हेमंत कुमार को अभी आपने सुना फिल्म कोहरा में। कार्यक्रम का अगला गीत कमल मित्रा के संगीत निर्देशन में आशा भोंसले और हेमंत कुमार का गाया हुआ है। फिल्म का नाम यहूदी की बेटी।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म क्षमा से, आवाज सुमन कल्याणपुर की। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और धुन बनाई है गुलाम मोहम्मद ने।

प्रति से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज जगजीत सिंह की, फिल्म का नाम है

लीजिए, कार्यक्रम में अब सुनिए खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। ये फिल्म है शोला और शब्द।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था शोला और शबनम। लीजिए अब सुनिए मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है हकीकत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर, बस कुछ ही पलों में।

वक्ते गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा 30 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Prime Minister highlighted that new employment opportunities are being created for the youth of the country.
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है. ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है.
0: Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary has announced that 1 lakh teachers will be recruited in the state over the next 5 years. During a high-level review meeting of the Education Department, the Chief Minister directed the officials to ensure recruitment of at least 20,000 teachers every year. He said that the notification for teacher appointments will now be issued annually in the month of July to streamline the recruitment process. The Bihar government today announced free travel on state-run buses for all students appearing for the NEET UG re-examination scheduled on June 21. In a social media post, Chief Minister Samrat Chaudhary said all NEET candidates in the state will be allowed to travel free of cost on government buses. The Chief Minister also appealed to district administrations, temples and non-governmental organizations to help arrange drinking water and sattu for students and their parents at bus stands, railway stations and other major locations. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12 board examinations by one more day until tomorrow. Earlier, the deadline was today. The CBSE said the decision was made after its website experienced unprecedented traffic over the past few days, along with several attempts of unauthorized interference, making it prone to disruptions. Indraprastha Gas Limited, IGL, increased the price of compressed natural gas, CNG, by 1 rupee today. After the price hike, the new rate for 1 kilogram CNG in the national capital is 81 rupees and 9 paise. Indian Oil has reassured customers and the general public that there is no overall shortage of petrol and diesel in the country. In a statement, the oil marketing company said that the current situation being witnessed at certain retail outlets is highly localized and temporary in nature. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow this evening at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad defeated Royal Challengers Bengaluru by 55 runs in Hyderabad. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा. पहले मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले में झारखंड समेत देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र. कहा, युवाओं के लिए बन रहे लाखों रोजगार के अवसर. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राजधानी रांची के आधा दर्जन से अधिक नए इलाकों में पाइपलाइन से पीएनजी आपूर्ति शुरू करने का दिया निर्देश. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 25 मई से सभी विभागों की करेंगे समीक्षा. बजट की घोषणाओं पर भी होगी चर्चा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इबोला वायरस को लेकर झारखंड समेत सभी राज्यों को निगरानी का दिया निर्देश. भारत में अब तक नहीं मिला है इबोला का केस. और नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन झारखंड के रुद्रांश शर्मा ने 500 प्लस डी इवेंट में जीता स्वर्ण पदक. और अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड समेत देश भर के 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा. इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि भारत विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करना है. दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है.
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है. आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है. भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ

0: पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद रेलवे ऑडिटोरियम में रोजगार मेला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान 88 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कौशल विकास योजना के तहत 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
2: कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और इसके साथ ही यह इंटर्नशिप युवा को लगभग 1.25 लाख प्रतिभागी जो युवा है उनको देश की शीर्ष कंपनियों में अनुभव और आर्थिक सहायता प्राप्त करने का भी बेहतर अवसर भी मिल रहा है।
1: इधर रांची में कार्यक्रम आयोजन सीसीएल ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में बैठक कर मोरहाबादी, लालपुर, धुरवा, हिहेल, एचसी क्षेत्र और बीआईटी मेसरा समेत आधा दर्जन से अधिक नए इलाकों में जल्द पीएनजी आपूर्ति शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स गठित कर युद्ध स्तर पर कनेक्शन दिए जाएं ताकि अधिक से अधिक घरों को पाइपलाइन से सस्ती और पर्यावरण अनुकूल गैस मिले। इस दौरान मंत्री ने तंग मोहल्लों में आग बुझाने के लिए 2 फायर बाइक का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 25 मई से 11 जून तक रांची में सभी विभागों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इन मैराथन बैठकों में सभी प्रमुख विभागों के कार्यों का मूल्यांकन और योजनाओं का क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने पर जोर रहेगा। साथ ही बजट घोषणाओं पर भी चर्चा होगी। 25 मई को जल संसाधन, वित्त और वाणिज्य कर विभाग से शुरुआत होगी और 11 जून को परिवहन, राजस्व, निबंधन, भू सुधार और विधि विभाग की समीक्षा के साथ यह अभियान समाप्त होगा। हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कल रांची के रातू में 2.25 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 सड़कों का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि जर्जर सड़कों से बरसात में कीचड़ और गर्मी में धूल की समस्या थी। नई सड़कों से किसानों को मंडी, छात्रों को स्कूल और मरीजों को अस्पताल पहुंचने में आसानी होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। 15 मई को 3 रुपए प्रति लीटर और 19 मई को 90 पैसे की वृद्धि के बाद ईंधन की कीमतों में यह तीसरी बार संशोधन है। आज की वृद्धि के बाद रांची में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 63 पैसे और डीजल की कीमत 97 रुपए 66 पैसे हो गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही झारखंड की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। श्री मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया।
3: भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी भी और चुनाव जीतेगी भी। राज्य में करप्शन व्याप्त है, भ्रष्टाचार व्याप्त है सभी स्तरों पर। किस प्रकार से हेमंत सोरेन के राज्य में विकास का काम रुका पड़ा, इन सारे मुद्दों को लेकर हम स्थानीय स्तर पर भी कार्यक्रम करते हैं, प्रदेश स्तर पर भी कार्यक्रम करते हैं।
1: बता दें कि झारखंड की 2 सीटों पर 18 जून को मतदान होना है। रांची के खिजरी से कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा है कि गठबंधन सरकार में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और पार्टी को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
4: इंडिया एयरलाइंस भावनात्मक भी है, इंडिया एयरलाइन राजनीति भी है और इंडिया एयरलाइन देश का आने वाला जो डिमांड है उसका भी एक कड़ी है। इसीलिए निर्णय जो होंगे सारे पार्टियों का भावना को लेकर के सारे पार्टियां मिलकर के एक उम्मीदवार खड़ा करें ताकि जो है कि दोनों का दोनों सीट हम आसानी से जीत सके।
1: झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने जीएसटी में राज्य का हिस्सा नहीं मिलने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
5: हमारे राज्य में जीएसटी का पैसा नहीं आ रहा। जो भी राज्य के कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसमें केंद्र सरकार का सहायता होता है, सहायता और ये फेडरल सिस्टम का एक स्थापित मूल्य, किसी योजना में एक रुपए नहीं आना, राज्य सरकार के कमर को तोड़ने का काम कर रही है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इबोला वायरस को लेकर झारखंड समेत सभी राज्यों को निगरानी और रोकथाम के सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि भारत में अब तक कोई मामला नहीं मिला है। झारखंड में केंद्र के निर्देश पर तैयारी शुरू कर दी गई है और जल्द ही सभी सिविल सर्जन्स को अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाने व अन्य एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने समन्वित निगरानी, समय पर रिपोर्टिंग और चिन्हित स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों पर विशेष जोर दिया है। राजधानी रांची समेत राज्यभर में भीषण गर्मी पड़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोलहान प्रमंडल में लू लगने से एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक हीट वेव को लेकर लोगों से सतर्क रहने और धूप से बचाव की अपील की है। 11वीं नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन झारखंड के रुद्रांश शर्मा ने 500 प्लस डी इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। रुद्रांश शर्मा की लगातार दूसरी स्वर्णिम सफलता पर रोलर स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ झारखंड में खुशी की लहर है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,75,000 रुपये प्रति किलो है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले में झारखंड समेत देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं के लिए बन रहे लाखों रोजगार के अवसर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राजधानी रांची के आधा दर्जन से अधिक नए इलाकों में पाइपलाइन से पीएनजी आपूर्ति शुरू करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 25 मई से सभी विभागों के करेंगी समीक्षा। बजट की घोषणाओं पर चर्चा भी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इबोला वायरस को लेकर झारखंड समेत सभी राज्यों को निगरानी का दिया निर्देश। भारत में अब तक नहीं मिला है इबोला का केस। और नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन झारखंड के रुद्रांश शर्मा ने 500 प्लस डी इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी। आज की कलाकार है शोभा गुरटू।

तो ये गीत आपको कैसा लगा? सुंदर गीत लगा ना, बहुत ही खूबसूरत गीत था। और हमारे श्रोता अपनी बात लिख रहे हैं, आप लिखते हैं कि संगीत का ये सफर वाकई बहुत सुरीला और दिलचस्प है। आपने जो सुराग दिए हैं, एक ही संगीतकार, दो महिला गायिकाएं और ये 12 विशिष्ट शब्द, ये सीधे तौर पर भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम यानी गोल्डन एरा की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन शब्दों और शर्तों को जोड़ने पर जो नाम सबसे ऊपर उभरता है वो है संगीतकार ओपी अय्यर साहब का या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। जी नहीं, आज हम आपको एक ही संगीतकार जो कि चित्रगुप्त साहब हैं, उन्हीं से जुड़े गीत सुनवा रहे हैं। यानी चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में आज जिन दो महिला गायिकाओं ने जुगलबंदी की वो गीत हमने आपके लिए चुने हैं। फिर भी आपने प्रयास किया, सबसे बड़ी बात यह है। आप लिखते हैं कि आशा भोंसले और गीता दत्त की जोड़ियां हैं, इस तरह के बहुत सारे सदाबहार गाने हैं जिनका अंदाजा लगाया जा सकता है, और आपने कुछ गानों का जिक्र किया भी है। देखिए आपके गाने हमारे गानों से कितना मेल खा रहे हैं, गौर कीजिएगा और हमें लिखिएगा जरूर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चित्रगुप्त सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वे उस सुकून, ठहराव और मेलोडी का नाम है जो आज भी रेडियो पर बजने पर हमें एक खुशनुमा जमाने में वापस ले जाते हैं। महान संगीतकार चित्रगुप्त भारतीय सिनेमा के वे अमर गायक शिल्पी थे जिन्होंने बिना किसी भारी भरकम वाद्य यंत्रों के शोर के अपनी सादगी और दिल को छू लेने वाली धुनों से संगीत को नवाजा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार तो चित्रगुप्त हैं और प्रत्येक गाना दो फीमेल सिंगर्स का गाया हुआ है। आपने भी कुछ गाने लिखे हैं? बिल्कुल, आपके गाने हमारे कुछ गानों से बिल्कुल मेल खा रहे हैं। देखिए कौन कौन से गाने हैं, बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती के सुरीले सफर में इबारत से कुछ चीजें स्पष्ट करके आसान किया आपने, जैसे एक ही संगीतकार और दो महिला गायिकाएं, बस अब शब्दों के गानों पर दिमाग लगाते हैं और गानों का निर्णय हो ही गया, समझो। अरे वाह, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, सरल नहीं कठिन है आज की गीतमाला, आपके दो प्रश्नों से ज्यादा भी कठिन है। अरे अभी तो दो सवाल हमारे आए ही नहीं है, कैसे कठिन हो सकती है? आज तो हमने आपको शब्द दे दिए थे और साथ ही बता दिया था कि एक ही संगीतकार पर केंद्रित है ये शब्द और दो गायिकाओं पर, मतलब दो जो जुगलबंदी है महिला गायिकाओं की जुगलबंदी होगी। कितना सारा तो बता दिया था आपको और हमारे कई श्रोताओं ने पकड़ भी लिया है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज का सुरीला सफर ने दिमागी तापमात्रा बढ़ा दी है, संभावित गानों का शब्द अनुरूप कयास लगाना कष्टप्रद है, इन्हें ढूंढने में श्रोता बंधुओं के कमेंट्स कारगर सिद्ध हो रहे हैं। आज श्रोता बंधुओं के लिस्ट के अनुसार ही हम भी चलने वाले हैं। चलिए तो आज के दो सवाल, वैसे दो सवाल नहीं है लेकिन इन्हीं सुरीले सफर से जुड़े ये सवाल हैं। चूंकि आज आप सुन रहे हैं कुछ गीत, तो इनसे इतर आपसे कुछ पूछ लिया जाए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं। जैसे मुझे एक गीत बहुत पसंद है, जब जब तुम्हें भुलाया तुम बहुत याद आए, है ना ये गीत, जहां आरा फिल्म का लता मंगेशकर और आशा भोंसले की जुगलबंदी है। तो इस तरह के और भी गीत जो हैं महिला जुगलबंदी वाले गीत, वो आपको कौन कौन से गीत पसंद हैं या याद हैं उसका जिक्र जरूर करें। और एक सवाल हमारा ये है कि संगीतकारों के बारे में बताइए, ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए और वो गीत आपको पसंद हैं, जैसे कि आज हमने चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जुगलबंदी गीत लिए हैं। ऐसे बहुत सारे संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे गीत गवाए हैं, आप बताइए कौन से ऐसे संगीतकार हैं जो आपको पसंद है या उनके गाने आपको याद हैं। आगे बढ़ते हैं सुरीले सफर के इस गीत की ओर। चित्रगुप्त साहब का संगीत पंडित भरत व्यास के बोल हैं, सुमन कल्याणपुर और कमल बारूट की आवाजें हैं। इस बार फिल्म का नाम है महाभारत।

आज की सवाल एक बार फिर से दोहराए देते हैं। पहला सवाल हम आपसे ये कर रहे थे कि आपकी पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने अपनी पसंद का गीत आपको बताया, फिल्म जहां आरा का लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाया वो गीत जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए, है ना। ठीक उसी प्रकार और भी बहुत सारे गीत हैं, तो आपको कौन सा गीत पसंद है या बताइए कौन कौन से गाने पसंद है। और एक सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं इसका जवाब कि संगीतकारों में बताइए ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए और वो आपको याद हैं वो गाने, या वो गाने आपको बहुत पसंद हैं। जैसे आज हम चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जो महिला जुगलबंदी वाले गीत लेकर आए हैं, ठीक उसी प्रकार और भी संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे गीतों की रचना की है। बताइए वो कौन कौन से गीत हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि 1 बजे जब सुरीला सफर शुरू होगा तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और श्रोता दिमाग पर कम जोर डालें, सुरीले गीतों का आनंद लें और गीत भी पहले से अधिक बजेंगे। धन्यवाद विविध भारती, धन्यवाद मुझे। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं लगाना है कि हमें बुरा लगे या हमें गुस्सा आ जाए या हम तनावग्रस्त हो जाए। बिल्कुल मनोरंजक कार्यक्रम है ये, आपके मनोरंजन के लिए इसका आनंद उठाइए। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये बहुत अच्छा नया प्रयास है, शब्द आपने दे दिया और हिंट भी दे दिया है, तो कोशिश भी हमारी बनी रहेगी। और वही आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि लगता है आज आपने यू टर्न मार दिया है, सुरीला सफर का ये पैटर्न भी अच्छा है, अब फिर परीक्षा होगी जानकारी बता पाएंगे, चलो चले सुरीले सफर पर मंदाकिनी जी के साथ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गेंद आपने डाली है वो गुगली जैसी लग रही है, लेकिन यॉर्कर भी हो सकती है या फिर वाइड हो सकती है, बाहर निकल जाएगी, ज्यादातर बल्लेबाज असमंजस में है। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, आज तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आप लोग, देखिए ना फटाफट हमारे कुछ श्रोताओं ने तो बिल्कुल सही गाने चुने हैं। अब हमारे पास वक्त नहीं होता उन सभी गानों का जिक्र यहाँ करने का, वरना आपको बताते कि आज बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने सही चुने हैं। एक श्रोता ने लिखा है आज शायद यही गाने बज पाने वाले हैं, बेहद अच्छा आज शायद यही गाने बजेंगे, आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, बेहद हिम्मत वाला काम है, अगर ऐसे गाने शामिल होंगे तो कार्यक्रम की रोचकता बनी रहेगी और कुछ हर रोज बजने वाले गानों से अलग सुन सकेंगे, बेहद नायाब चयन।

है, आपने हमें धन्यवाद दिया है, और बिल्कुल आपके कुछ गीत तो हमारे प्लेलिस्ट से बिल्कुल मेल खा रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको, आप सभी श्रोताओं को जो आज की जो सुरीला सफर की ये प्लेलिस्ट है उसमें आप शामिल हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार चित्रगुप्त मखमली धुनों और सादगी के मसीहा थे। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में जहां एक तरफ शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, एसडी बर्मन जैसे दिग्गजों का दबदबा था, वहीं एक ऐसा संगीतकार भी था जिसने बिना किसी तामझाम के बेहद सादगी और गहराई से भरपूर संगीत दिया। उनका नाम था चित्रगुप्त। चित्रगुप्त श्रीवास्तव हिंदी सिनेमा के उन अनमोल रत्नों में से एक हैं जिनके गीतों की मिठास आज भी कानों में मिश्री घोल देती है। बिल्कुल सही कहा, और वही मिश्री घोलने वाले गीत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगला गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है। इस बार आवाजें हैं गीता दत्त और उषा मंगेशकर की, और ये फिल्म है माँ बाप।

जी कितना खूबसूरत गीत था, है ना। अच्छा, इस गीत को आपने पहले कभी सुना था बताइएगा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वे आज तो भैया इस भरी गर्मी में थोड़ी सी भी यदि ठंडाई की बात करूं तो वो है विविध भारती, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में अच्छा मैं आई हूं तो गानों की बौछार होगी। गानों की बौछार तो हमेशा ही होती है और मन आनंदित होगा। सचमुच कल की गीतों भरी कहानी सुनी जिसमें एक ऐसा प्रसंग आया जहां मुझे रोना ही आ गया था। धन्य विविध भारती जो ऐसे प्रसंग लाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहला गाना एकदम अनसुना सा था, यहां तक कि सिनेमा का भी नाम नहीं सुना था। तूफान में प्यार कहां, सिर्फ विविध भारती के पास ही ऐसा कलेक्शन हो सकता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम सबसे अलग होता है, इस महारथी आपको ये महारत आपको हासिल है। अच्छा, मुझे बहुत शानदार सुंदर, क्योंकि सुने कौन सा संगीत, गीतों से हम भीषण गर्मी में ठंडक महसूस कर रहे हैं, मस्ती और आनंद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं आपको मुझे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार और सभी मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज परीक्षा में पेपर अनुमान से ज्यादा आसान आ जाता है तो खुशी के मारे जो याद किया था वो भी भूल जाते हैं। दूसरे आसान पेपर की मार्किंग भी हार्ड होती है। श्रोताओं में बहुत से शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, वे सब मेरी बात का समर्थन करेंगे। अब नंबर देना आपके हाथ में है, देखें आप कितना लिबरल रहती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने आज सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सुरीला सफर की पोस्ट का इंतजार किया, फिर मैं अपनी नौकरी के लिए निकल गया। 10:30 बजे नौकरी पर पहुंचकर कुछ घंटे काम किया, उसके बाद 12 बजे मैंने सुरीला सफर की पोस्ट देखी, फिर श्रोता मित्रों की पोस्ट देखी, तब मालूम पड़ा आज सुरीला सफर महान और अमर संगीतकार चित्रगुप्त जी पर केंद्रित है, साथ में 2 गायिकाओं पर भी। दुकान पर पहुंचकर गीतों को शब्दों को पढ़ा, मेरे लिए समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। वहीं एक श्रोता ने हमारे इस सवाल का जवाब देते हुए बहुत सारे गीत लिखे हैं, गोरे गोरे और बांके छोरे, लता मंगेशकर और समाधि फिल्म का आपने ये गाना लिखा है, बिल्कुल सही कहा आपने, और साथ में प्रेमलता है इनके, जिसका जिक्र आपने नहीं किया है। वहीं एक श्रोता ने दूसरे गाने लिखे हैं, लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज में जो जुगलबंदी वाला गीत है, लिखते हैं ये गाना मेरा फेवरेट है फिल्म उत्सव का, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा और मेरे महबूब में क्या नहीं अपलम चपलम, ये सभी गीत मुझे बेहद अच्छे लगते हैं। बहुत सही आपने गीतों का चयन किया है। जी हाँ, तो हमारे श्रोता बताएं कि कौन से ऐसे गीत हैं जुगलबंदी वाले, महिला जुगलबंदी वाले जो उनको पसंद हैं, उनका जिक्र वो करें, साथ ही उन संगीतकारों के बारे में बताएं जिन्होंने अपने संगीत निर्देशन में ये महिला जुगलबंदी वाले गीत लिए हैं और संगीतबद्ध किए हैं। जैसे आज हमने चित्रगुप्त साहब को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रेम धवन का लिखा ये गीत सुनते हैं। चित्रगुप्त साहब की संगीत रचना है, सुमन कल्याणपुर और उषा मंगेशकर की आवाजें हैं। ये फिल्म है गेस्ट हाउस।

हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है। एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा लता जी और कमल बारोट की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में है। वहीं मन क्यों बहका लता जी और आशा जी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। और काश किसी दीवाने से हमको भी मोहब्बत हो जाए। अच्छा, काश किसी दीवाने को है हमसे भी मोहब्बत हो जाए। आपने से और को का थोड़ा सा अंतर कर दिया है। और ये गीत भी आपको पसंद है, लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाया हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ है। वहीं आप लिखते हैं, तुमको पिया दिल दिया और कजरा मोहब्बत वाला और तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। ये सभी गीत आपको बेहद पसंद है, बहुत सुंदर गीतों का चयन आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिन रात जले अखियां परदेसी, उषा मंगेशकर और आशा भोसले, ये गीत हमें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बहुत निराला है और बहुत बढ़िया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपने कमाल की गुगली फेंकी है, गुगली फेंकी है। अच्छा, आपने, हम तो क्लीन बोल्ड हो गए, आज हमारी बत्ती गोल, डब्बा गोल है। आप तो बस मधुर गीतों का रसा स्वादन कराइए और हम मधुर गीतों का आनंद लेने वाले हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमें सफर में तो सफर सुरीला कैसे नहीं होगा, अगर आप हैं हमारे साथ तो आज आप आई प्रोग्राम में तो गीतों की बहार आ गई है। आप लिखते हैं कि ओ गोरे बांके छोरे गीत पसंद है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, कजरा मोहब्बत वाला, ये सभी गीत हमें बेहद पसंद है जो दो गायिकाओं द्वारा गाए गए हैं। साथ ही आपने लिखा है एक श्रोता ने कि मनभावन के घर गाए जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, लता जी और आशा जी की आवाज में, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी गीतों की चॉइस कितनी बड़ी है, मन बहुत खुश हुआ। अच्छा, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही बढ़िया है, दो फीमेल गायिकाओं के गीत कितने बढ़िया और कितने ताल सुर में परदेसी का गाना सुन के बहुत ही बढ़िया लगा, चित्रगुप्त जी का संगीत बोले तो बहुत मधुर संगीत, क्या कहने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी थीम कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ भी हो हम आपको विविध भारती जरूर सुनेंगे, इस तपतपाती गर्मी में गानों के जरिए ठंड का एहसास हमें थोड़ा तो होगा। आप इतनी शिद्दत और प्यार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, सराहते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। चलिए अगला गीत सुनते हैं, चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में, इसे आर कृष्णा ने लिखा है, इस बार स्वर है गीता दत्त और उषा मंगेशकर के और ये फिल्म है कंगन। हमने शब्द दिया था लिख पढ़, वही है ये गीत।

0: बेटा बन।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अभी जो गीत हम सुन रहे थे फिल्म गेस्ट हाउस का सबसे शानदार गाना शीला वाज और अन्य अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। कितनी खूबसूरत और गहरी जानकारी आपने हमें दी है, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप चाहे मना करें, मैं आपकी तारीफ करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि आज यादों की महफिल में मेरे तीन पसंदीदा गाने एक साथ सुनवाए गए। कुछ दिल ने कहा जीत ही लेंगे बाजी हम तुम और मैं ये सोचकर जा रहा था। बिल्कुल, ये गाने तो बहुत ही खूबसूरत थे और कैफी आजमी की रचनाएं थी, तो पसंद तो होंगी आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पसंदगी के महिला युगल गीत में इन्होंने कुछ गानों का जिक्र किया है, सखी रे सुन मोरी पपीहा उस पार। अच्छा, फिल्म मिस मैरी का ये गाना आपको बहुत पसंद है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिस देश में गंगा बहती है का क्या बात तू मुझे क्या बता, ये गाना पसंद है। गर्जत बरसत सावन आयो रे और बरसात की रात फिल्म का जो एक जमाने में उसका अंश संगीत रचना के परिचय धुन में शामिल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मैडम काफी खुश है और काफी हंसमुख लग रही है। अच्छा और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक परिवर्तन से ही कार्यक्रम में श्रोता फ्रेंडली हो गए हैं, आगे गीतों के लिए दिलचस्पी और उत्सुकता बढ़ गई है और आज का ये कार्यक्रम चित्रगुप्त साहब और दो गायिकाओं तक ही सीमित है, इससे हम बड़े खुश हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपलम चपलम और मन भावन के घर जाए गोरी ये गाने बहुत पसंद है हमें। वहीं एक श्रोता ने मन क्यों बहका रे सखी ये गाना पसंद किया है, चुपके कौन आया मेरे अंगना काश किसी दीवाने को और आएगा हमारे गांव कोई आएगा, इन सभी गीतों को पसंद किया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे ज्यादा पसंद है मन क्यों बहका रे बहका और हुजूर आला जो इजाजत हो, ये युगल महिला गीत वाले जो स्वर गीत हैं ये हमें बेहद पसंद आते हैं। जी तो आज के सुरीला सफर में हमने आपके सफर को थोड़ा सा आसान कर दिया और आप लगभग हमारे साथ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत, ये है आशा भोंसले और उषा मंगेशकर की आवाजें, अनजान के बोल हैं, चित्रगुप्त साहब का संगीत है और ये फिल्म है ज्वाला दहेज की।

जी तो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि मेरे पास करीब 20,000 गानों का संग्रह है और लगातार पुराने गीतों को ढूंढकर संग्रह को मैं और बढ़ा रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ताथैया करके आना मेरे जादूगर, ओ सैया, गीता दत्त, लता मंगेशकर, इकबाल कुरैशी, फिल्म पंचायत का गीत और कौन रंग मुंगवा लता मंगेशकर और सुधा मल्होत्रा का, संगीतकार रोशन साहब और रेशमी सलवार कुर्ता चाली का ये गीत इन्हें बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये गीत तो पहली बार सुना है, वैसे मुझे डोला रे डोला फिल्म देवदास का गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वाह वाह, मेरा एक गीत मैच कर गया है, निकला है गोरा गोरा चांदरे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कचरा मोहब्बत वाला आंखियों में ऐसा डाला शमशाद बेगम और आशा भोंसले की गायकी बहुत पसंद है। युगल गायिकाओं में कुछ लोगों ने अपलम चपलम, हंसतावा नूरानी चेहरा, तेरी महफिल में किस्मत आजमाकर, मन क्यों बहकाई सभी गीतों को पसंद है किया है। और वहीं एक श्रोता ने कहा है, आपने पूछा कि कौन से युगल गीत पसंद है, फिल्म शिकारी का युगल गीत तुमको पिया दिल दिया, फिल्म पारसमणि का गीत हंसतावा नूरानी चेहरा, उत्सव का गीत मन क्यों बहकारी का हमें बेहद पसंद आता है। चलिए तो आपकी पसंद को हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी पसंद इतनी लाजवाब है। और अब कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां सुनते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को फिल्म हम मतवाले नौजवान में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, चित्रगुप्त का संगीत।

तो दोस्तों आज का सुरेला सफर यहीं तक, और अब इस सफर से मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: urged the citizens to stay informed about various welfare schemes and programs of the government. We spoke to some of the beneficiaries who were given appointment letters at today's Rozgar Mela.
1: My name is Sakshi Verma and I'm from Raipur, Chhattisgarh, and I'm very grateful to ICF and PM Narendra Modi and Government of India that I get this opportunity through cultural quota. As a classical dancer, we get this job is very difficult and I'm very grateful to them. So thank you, ICF.
2: My name is Santakishore. I'm from Trivandrum, Kerala. I wrote this exam some years back, but now I got posted and now I'm very happy. I thank our central government for providing such an opportunity. I will take this not only as my work, but a service to the nation.
3: My name is Tejinder Singh Kanda. I am from Bathinda, Punjab, and I am selected for junior associate in State Bank of India. I am so grateful for the central government giving me the opportunity to serve the nation.
0: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary has announced that 1 lakh teachers will be recruited in the state over the next 5 years. During a high-level review meeting of the Education Department, the Chief Minister directed the officials to ensure the recruitment of at least 20,000 teachers every year. He said that the notification for teacher appointments will now be issued annually in the month of July to streamline the recruitment process. Meanwhile, Education Minister Mithilesh Tiwari said that the Chief Minister's announcement has ended the uncertainty surrounding the fourth phase of the teacher recruitment examination, TRE4. He informed that the Education Department will soon assess vacant teaching posts and send a fresh requisition for further recruitment. The Bihar government has announced free travel on state-run buses for all students appearing for the NEET UG re-examination scheduled on June 21. In a social media post, Chief Minister Samrat Chaudhary said all NEET candidates in the state will be allowed to travel free of cost on government buses. The Chief Minister also appealed to district administrations, temples and non-governmental organizations to help arrange drinking water and sattu, a flour made from dry roasted pulses and cereals, for students and their parents at bus stands, railway stations and other major locations. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12 board examinations by one more day until tomorrow. Earlier, the deadline was today. The CBSE said the decision was made after its website experienced unprecedented traffic over the past few days, along with several attempts of unauthorized interference, making it prone to disruptions. The board informed that the students will have up to 2 days to apply for the next stage of verification of marks or re-evaluation after receiving the scanned copy of their answer books. The CBSE has advised candidates to make use of the extended timeline and complete the process accordingly. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata this morning on a 4-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important step towards strengthening bilateral ties and expanding cooperation in trade, defense, energy security, technology, and Indo-Pacific strategy. U.S. Ambassador to India Sergio Gore received Mr. Rubio at the Kolkata airport. Soon after his arrival, the U.S. Secretary of State visited Mother House, the headquarters of St. Teresa's Missionaries of Charity, and the children's home in the city. Secretary Rubio will call on Prime Minister Narendra Modi in New Delhi today. According to the U.S. ambassador, the upcoming engagements will primarily focus on strengthening cooperation in key strategic sectors, including defense partnerships, advanced technologies, trade ties, and collaboration under the Quadrilateral Security Dialogue, Quad, framework. Tomorrow, Mr. Rubio will hold talks with External Affairs Minister S. Jaishankar and attend the U.S. Embassy's Independence Day celebrations in the national capital. The World Health Organization, WHO, has raised the public health risk of the Bundibugyo strain of Ebola in the Democratic Republic of the Congo from high to very high at the national level. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said the risk is now assessed as very high nationally high regionally and low globally. He added that 82 cases and 7 deaths have been confirmed, but the outbreak is likely much larger, with nearly 750 suspected cases and 177 suspected deaths reported so far. The WHO had earlier declared the outbreak a public health emergency of international concern, while clarifying that it is not at the pandemic level. Indian Oil has reassured customers and the general public that there is no overall shortage of petrol and diesel in the country. In a statement, the oil marketing company said that the current situation being witnessed at certain retail outlets is highly localized and temporary in nature, arising due to local demand-supply imbalances and redistribution of sales patterns in select areas. Indraprastha Gas Limited, IGL, increased the price of compressed natural gas, CNG, by 1 rupee today. After the price hike, the new rate for 1 kg CNG in the national capital is 81 rupees and 9 paise. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow this evening. The match will start at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad defeated Royal Challengers Bengaluru by 55 runs in Hyderabad. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red warning for heatwave to severe heatwave conditions over East Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. According to the IMD, heatwave conditions are expected to persist over large parts of northwest, central and eastern India over the next 6 to 7 days. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments, says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned copies, photocopies of answer books for Class 12 board examinations until tomorrow. U.S. Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundi Bugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. And with that, we end the midday news.
4: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे कहा भारत युवाओं को अवसर रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडी बुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है
5: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले रोजगार मिले उनका सामर्थ्य खिल उठे साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है
5: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
4: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
5: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
4: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
6: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
4: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
4: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
8: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
4: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
9: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ट्रेडोस अदनोम ग्रिबियासिस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर ये खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी।

0: चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था, साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सुरीली धड़कन।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये था पहला गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था जन्म जन्म के फेरे। गीतकार थे पंडित भरत व्यास और धुन बनाई थी SN त्रिपाठी ने।

0: साहिर लुधियानवी की लिखी यह कव्वाली अभी आपने सुनी। मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाजें थी। एन दत्ता का संगीत था और फिल्म का नाम था साधना।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आशा भोसले, शमशाद बेगम और साथी। फिल्म का नाम हम पंछी एक डाल के। गीतकार है पी एल संतोषी और संगीतकार एन दत्त।

0: कोई मारे कोई किसी को,
1: ना कोई खाए मांस किसी का,
0: ना कोई पीवे खून किसी का,
1: ना कोई रोके सांस

0: हम आएंगे तुमको वहाँ बचाने को।
1: हम आएंगे,
2: हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे।
3: लेकिन सब में था होशियार एक बूढ़ा सा सियार, बोला अपनी दुम फटका।

लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज और ये फिल्म है मधुमति, शब्दकार शैलेंद्र और संगीतकार सलिल चौधरी।

मधुमति फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में सुना। आइए अब सुनते हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीत, आवाज आशा भोंसले की, शब्द हसरत जयपुरी के हैं और धुन ओपी नैयर की है।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की रचना सुनिए। गायक गायिकाएं हैं आशा भोसले और गीता दत्त, और ये फिल्म है अदालत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। हेमंत कुमार का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर हैं। फिल्म का नाम है चंपाकली।

0: गरीबी रेखा से बाहर है। यह है प्रधानमंत्री का मंत्र, सबका साथ सबका विकास। देश विकसित भारत 2047 की ओर, उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: रामगढ़ के पतरातू में लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन 2026 की शुरुआत की गई है। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड PVUNL ने 22 मई को इस विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत आसपास के स्कूलों की 50 छात्राओं को चुना गया है। उद्घाटन समारोह में PVUNL के CEO AK सहगल और स्वर्णरेखा महिला समिति की अध्यक्षा रेणु सहगल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में शामिल सभी 50 छात्राओं को पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए बैग, यूनिफॉर्म, जूते और जरूरी किट भी बांटे गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: कोडरमा के एनसीसी कैडेट आकाश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश की 17,500 फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर तिरंगा फहराया है। उन्होंने देश के 20 लाख कैडेट्स में से चुने गए केवल 8 कैडेटों में शामिल होकर झारखंड का मान बढ़ाया है। आकाश ने दिरंग के राष्ट्रीय संस्थान से अपना उन्नत पर्वतारोहण प्रशिक्षण पूरा किया है। इस बड़ी उपलब्धि के बाद कोडरमा रेलवे स्टेशन पहुंचने पर एनसीसी कैडेट्स और परिजनों ने उनका भव्य स्वागत किया। आकाश ने कहा कि माता पिता के आशीर्वाद और गुरुओं की प्रेरणा से उन्होंने इस कठिन मुकाम को हासिल किया है।
1: उन लोगों ने 4 दिन आर्टिफिशियल मार्ग लाइन किया, वहां से फिर अपना रक्षक वगैरह जितना था पैक करने के बाद फिर हम लोग वहां से ऊपर और गए, फिर वहां भी एक हफ्ता रहा, फिर वहां से क्लाइम करने के बाद फिर वहां पर हम लोग 14,650 फीट ऊपर गए, फिर वहां भी कुछ दिन रहा, उसके बाद फिर वहां से फिर हम लोग सीधा गए थे 16,460 फीट ऊपर, फिर वहां पे टेंट लगा के रहते थे, फिर हम लोग लास्ट दिन हाइट जब गेन किए थे उस दिन 17,000 फीट ऊपर गए थे।
0: बोकारो के बालीडीह पुलिस ने एल्यूमिनियम तार चुराने और बेचने वाले एक छात्र गिरोह को पकड़ा है। पुलिस ने एक कार का पीछा कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कार की तलाशी लेने पर उसके अंदर से करीब 70 किलो कटा हुआ एल्यूमिनियम तार बरामद हुआ। मुख्यालय डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि यह गिरोह बोकारो स्टील प्लांट के आसपास से 4 तार चोरी करता था। उधर हजारीबाग पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए राहुल दुबे गैंग के छात्र अपराधी जियाउल रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक लोडेड पिस्टल, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया है। बड़कागांव एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह बानादाग रेलवे साइडिंग में लेवी वसूलने और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करने जा रहा था। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी तो शुरू करते हैं आज का ये सफर आपके मनपसंद गीतों का। तो पहला गीत सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं ये। कहाँ से लिखा है आपने? आपने लिखा है गांव जाखोद राजस्थान से, पूजा खटक बिमला देवी शंभुदयाल खटक ने। और इसी ये खत हमें मिला है कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से, योगेश गुजराती, रेखा गुजराती। और ये खत हमें मिला है बीकानेर से और राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान के थे श्रोता जिनका नाम हमने पढ़ दिया है। आप है चेतक सर्कल उदयपुर से मुकेश जीनगर, रेणु जीनगर, अजय, प्रिंस और कुलदीप। आप सभी सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है जीने की राह।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनामिका से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। इस गीत को सुनने की आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। आप हैं कोल्हापुर से सतीश वाघमारे, आतिश वाघमारे, स्वाति, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे, श्रमेण वाघमारे। अच्छा, आपने चंदन नगर सातारा से ये खत लिखा है। और उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर, चेतन शामतकर ने खत लिखा है हमें। आप हैं पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और अलीना मंसूरी। नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद। और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मास्टर मनीष। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनामिका में।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म अनामिका में। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। आप हैं पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश, जिम्मी, अमिता, हनी, दियाना, जियांश मटाई, करनाल हरियाणा से गुरविंदर सिंह पांधा, मनविंदर सिंह पांधा, और ये खत आया है हैदराबाद से कनुगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रावलिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश का। हम आप सभी से ये अनुरोध भी करते हैं कि कृपया अपने नाम थोड़ा सा साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और हम आपके नामों का उच्चारण सही ढंग से कर पाएं। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म लैला मजनू का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और संगीतकार मदन मोहन हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, अनजान के बोल, लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म का नाम है अपने रंग हजार। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्ग से, आप हैं छत्तीसगढ़ से अनंत जैन, हंसित जैन, प्रीति जैन, और छत्तीसगढ़ से ही हैं देवरी भटापारा से गन्नूलाल रजक, KRS, अश्विनी कुमार और गणेश राम। लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं लिखने वाले गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती जोधले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है छत्तीसगढ़ से जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू। यानी ये खत है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। हमें उम्मीद है आपने अपना नाम सुन लिया होगा। और ये खत मिला है गाजियाबाद से नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद का। और वनुजा तांडा से सानिका राठौड़, एस आर टेलर, जय राठौड़, सुनील राठौड़, इंदुबाई राठौड़ और कुमार आशीष का। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोंसले को फिल्म परवाना में। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और संगीत मदन मोहन का है।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर प्रेम का गीत, आवाज किशोर कुमार की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखे। आप हैं बोडोसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। और ये खत आया है खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रदीप कुमार का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: किशोर कुमार की गाय फिल्म अमर प्रेम के इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: रवि शर्मा लिखित नाटक सुनिए विजयमाल।
1: सब यथास्थान विराजें, कार्यवाही आरंभ की जाए।
2: जो आज्ञा महाराज। महाराणा की जय। राणा हाड़ा जी का विशेष दूत एक संदेश लेकर आया है और दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है।
1: आने दिया जाए।
3: महाराणा की जय।
4: राणा हाड़ा जी ने यह पत्र आपकी सेवा में प्रेषित किया है।
1: मंत्री जी,
2: अन्नदाता,
1: पत्र का भावार्थ व्यक्त कीजिए।
2: अन्नदाता, राणा हाड़ा जी अपनी अति सुंदरी कन्या का विवाह हमारे वीर सामंत चूड़ावत से करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए आपकी अनुमति मांगी है।
1: यदि चूड़ावत जी को यह प्रस्ताव स्वीकार है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है?
2: महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ निवेदन करूं।
1: आज्ञा है मंत्री जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
2: महाराज, सरदार चूड़ावत हमारे वीर सेनापति हैं। राणा हाड़ा ने उन्हें अपनी सुंदरी कन्या के लिए मांगकर बुद्धिमता का परिचय दिया है। पर मेरी सम्मति में तो वीर चूड़ावत की जीवन संगनी कोई वीर कन्या ही हो सकती है, हाड़ी कुमारी नहीं।
1: महामंत्री जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हाड़ी कुमारी छत्राणी नहीं है? क्या उसकी रगों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा?
2: महाराज,
1: हम आपकी शंका का कारण समझने में असमर्थ हैं।
2: महाराज, जहां तक मुझे ज्ञात है, हाड़ी कुमारी में वीरोचित गुणों का अभाव है। सामंत चूड़ावत का बचपन तो तलवारों की खनखनाहट में पला है और यौवन युद्ध क्षेत्र में पल्लवित हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस उगते हुए सूर्य को ग्रहण लग जाए। विद्वानों ने कहा भी है, भार्या रूपवती शत्रु, यूं भी नारी का रूप और यौवन पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जानबूझकर इस दुर्बलता को गले की माला बनाने की सलाह मैं नहीं दे सकता।
1: चूड़ावत जी।
5: महाराणा,
1: आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? क्योंकि वीर राजपूत केवल अपने ही विचारों और अपने ही भुजबल के विश्वास पर आगे बढ़ता है, इसलिए निसंकोच आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।
5: महाराणा, हाड़ी कुमारी के अद्भुत रूप और लावण्य की चर्चा सुनकर भी मैंने कभी भावुकता का आश्रय नहीं लिया। पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि रूपवती भार्या को चाहे शत्रु कहा जाए अथवा उसे पुरुष की दुर्बलता की संज्ञा दी जाए, पर इन सब के साथ साथ वो पुरुष के जीवन की एक महान प्रेरणादायक शक्ति भी है। वह शक्ति जिसके अभाव में शिव भी शव के समान हो जाता है। आज एक नारी के सौंदर्य ने मेरी वीरता और पुरुषत्व को चुनौती दी है। यदि महाराणा की आज्ञा हो तो स्वीकार कर लो इस चुनौती को।
1: हम आपको ये चुनौती स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। मलखान सिंह
6: जी। महाराज,
1: राणा हाड़ा को यह शुभ संदेश दे दो कि हमें ये संबंध स्वीकार है। महामंत्री जी।
2: जी महाराणा।
1: सामंत चूड़ावत के विवाह का आयोजन राजकीय सम्मान से अतिशीघ्र किया जाए।
2: जो आज्ञा महाराज।

0: भैया भाभी बहुत ही सुंदर हैं।
1: सच
0: सच भैया, देखोगे तो पागल हो जाओगी।
1: तनिक अपनी भाभी को हमें भी तो दिखा दो।
0: इतने उतावले क्यों हो रहे हो, थोड़ी देर और ठहर जाओ ना। और हाँ, मेरे मुंह दिखलावनी।
1: ये लो।
0: कितनी अच्छी है ये माला।
1: अब बोल कहाँ है तेरी भाभी।
2: अरे तारा कहाँ चली गई?
0: सब भाभी को ही घेर कर बैठी हैं।
1: अच्छा,
0: कोई सुनता ही नहीं। तारा तारा
2: आई।
0: देख तारा, जरा भैया को ऊपर वाले कमरे का रास्ता दिखा देना, बेचारे थक गए हैं।
2: आइए सामन, ऊपर जाकर विश्राम कीजिए और प्रतीक्षा भी।
1: प्रतीक्षा? प्रतीक्षा किसकी?
2: चंद्रोदय की। आज आपके शयन कक्ष में पूर्ण चंद्र का आगमन जो होने वाला है।
1: ओ, अब समझा, तुम बहुत नटखट हो।
0: आओ भाभी, इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ ऐसे,
3: यहाँ यहाँ क्या करना होगा मुझे?
0: ये हमारी कुल देवी हैं, सौभाग्य और यश की देवी।
3: अच्छा,
0: नववधु इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही पति के दर्शन कर सकती है। आज के दिन वधु जो कुछ इनसे मांगती है वो उसे अवश्य मिलता है।
3: अच्छा
0: भाभी, मांगो जो भी इच्छा हो।
3: मैं केवल यही मांगती हूँ कि मेरे पति पर कभी भी किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, यश और सौभाग्य की वर्षा होती रहे उन पर।
0: धन्य हो भाभी, तुमने वही मांगा जो मांगना चाहिए था।
3: इसके सिवा और मैं मांग ही क्या सकती थी?
0: भाभी, तुम्हारे ये विचार तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। और हाँ भाभी, अब रात अधिक हो रही है, हम सब तो आज रत जगा करेंगी। तुम ऊपर जाओ, आज तुम्हारी मधु यामिनी है ना?
3: ना ना, मैं भी तुम लोगों के साथ रत जगा करूंगी।
0: रत जगा तो करोगी ही, पर ऊपर यहाँ नहीं। भाभी शर्माओ नहीं, ऊपर जाओ। नहीं जाती? अच्छा ठहरो, मैं भैया को बुलाती हूँ, तुम्हें गोद में उठाकर ले जाएंगे।
3: हाँ अरे अरे,
0: बुलाओ भैया।
3: मैं जाती हूँ।
0: तारा सुन जी, भैया ऊपर के कमरे में ही है ना?
3: जी हाँ, सामन तो वहाँ पहले से ही हाड़ी रानी की प्रतीक्षा में बैठे हैं।
0: बस अब खूब मजा आएगा।
3: कितना सुंदर कक्ष है ये, पलंग, गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूलों के पर्दे और ये तलवार अवश्य मेरे स्वामी की है। और वो चित्र किसका है? ओह स्वामी प्रियतम, कितना तेजस्वी मुख है।

0: आज मेरी चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हुई। अब मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। जब तुम सामने आओगे तब तो शायद लज्जा के मारे में कुछ बोल भी नहीं।
1: दीदी,
0: कौन?
1: स्वागत है।
0: ओह, आप यहाँ?
1: हाँ जी, मैं यहाँ कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। पर ये घूंघट किस लिए? मैंने तो तुम्हारे रूप की एक झलक भर देखी है, हृदय नहीं भरा। अच्छा, तो मैं ही इस चंद्रमुख पर से इन घूंघट रूपी बादलों को हटाए देता हूँ। ऐसे
0: ना,
1: हाँ
0: ना।
1: अब ठीक है, देख रहा हूँ रूप का सागर, विधाता के हाथों खड़ी हुई सौंदर्य की प्रतिमा, पवित्रता और कोमलता की प्रत्यक्ष देवी मीनाक्षी, सुहाग बिंदिया और शशि मुख पर ये मोती की नथ, मानो साक्षात भगवती का ही पदार्पण हुआ है मेरे घर में। मेरा अपनापन, मेरा व्यक्तित्व जैसे तुम में विलीन होता जा रहा है। मैं नहीं हूं, मैं और तुम।
0: स्वामी, मेरे देवता।
1: सच?
0: मैं तुम्हारी पुजारी।
2: सभी प्रजाजनों को सूचित किया जाता है,
1: तुम सच मुगल बादशाह सुंदर हो।
2: नगर की राजकुमारी
1: चंद्रमुखी पागल चकोर
2: अपनी विशाल सेना
1: ये चाहता है कि एक तक तुम्हें देखता ही रहूं।
2: नगर के राजा ने
0: स्वामी
2: हमारे महाराणा से
0: पागलपन
2: सहायता
0: की है।
1: महाराणा के तुम कुछ कहती जाओ और मैं सुनता रहूं। मेरी रानी, मैं तुम्हारे सौंदर्य सागर के यौवन रूपी भंवर में फंस गया हूं।
0: स्वामी,
1: कमल के कोमल संपुट में बंद भ्रमर की तरह हैरान हूँ, मुक्त हूँ।
0: सुना आपने?
1: इधर
0: स्वामी।
1: प्रिय,
0: छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ।
1: प्रिय, मुझसे क्या अपराध हो गया है जो तुम इतनी प्रसन्न हो और अचानक दूर खड़ी हो गई?
0: स्वामी, सुनिए नगाड़े की ध्वनि। राजपूत तो इसका मतलब अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए मैं पीछे हट गई।
1: ओह मेरी हाड़ी रानी, मेवाड़ भूमि वीरों से शून्य नहीं है, और फिर मेरे लिए तो राणा जी का विशेष दूत आएगा।
0: जानती हूँ, पर देश की आन पर मर मिटने वाले किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करते।
1: प्रियतम,
0: मेरी प्रार्थना है कि आप किसी की प्रतीक्षा न करें और तुरंत अपने कर्तव्य का पालन करें।
1: प्रिय, जीवन में प्रेम का महत्व किसी भी वस्तु से कम नहीं। कम से कम इस मधु यामिनी को तो बीत जाने दो। विधाता भी कैसा क्रूर है, जीवन के इस मधुर हास्य में कठोरता का अठास और संगीत की मधुर लहरी में ये भयानक चीत्कार जैसा क्षण मेरे ही भाग्य में था। तुम्हें जी भर कर निहार भी न सका, एक बार हृदय से लगा भी न सका। सेज पर सजी हुई गुलाब की पंखुड़ियां भी तुम्हारी प्रतीक्षा में मुरझा जाएंगी।
0: स्वामी, ये केवल आपका मोह और वासना है।
1: रानी,
0: प्रेम प्रेरणा देता है, मोह विचलित करता है।
1: रानी,
0: स्वामी विचलित हो रहे हैं क्योंकि मोह ने प्रेम को बंदी बना रखा है।
1: हाँ रानी, मैं विचलित हो रहा हूँ। मैंने अब तक यौवन के उद्दाम वेग को केवल तलवार की धार पर ही रोक रखा था, पर तुम्हारे रूप और यौवन ने उस वेग को इतना तीव्र कर दिया है कि उसे रोकना असंभव सा हो रहा है। अपने प्राणों को अब तक मैं बर्छों और भालों की नोक पर ही उछालता फिरता था, पर आज जैसी घुटन और उलझन कभी ना हुई थी। क्या करूं?
0: तो ठीक है स्वामी, आप चूड़ियां पहनकर यहां बैठिए और मैं सैनिक वेश में युद्ध भूमि में जाती हूँ।
1: रानी ठहरो,
0: आप इस पुष्प शैया पर बैठकर अपनी घुटन का उपचार करिए, मैं आपकी इस कायरता के पाप का प्रायश्चित करने जाती
1: हूँ। ठहरो रानी,
0: यह हर अंश की तलवार है जिसने हर संकट में हमारी रक्षा की है।

0: मैं जाती।
1: रानी ठहरो, रानी सुनो तुम।
0: नहीं सामन, नहीं, मैं जीते जी अपने आप पर ये कलंक नहीं आने दूंगी कि जब सहस्त्रों युवक एक अबला की सतीत्व रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे, उस समय सामंत रंग महल में रंगरेलियां मना रहा था। रूप और यौवन की आंधी में सामंत की वीरता एक तिनके की भांति उड़ गई। अपनी प्रियतमा के केश पुष्पों की सुगंध में मधु सामंत तलवारों की खनखनाहट से भयभीत हो गया। नहीं नहीं सामंत, नहीं, मैं आप पर एक कलंक का टीका नहीं सह।
1: रानी शांत हो और जरा यहाँ बैठो।
0: छोड़िए मुझे, मैं ये तलवार लेकर आलमगीर की सेना पर टूट पड़ूंगी। एक राजपूत बालक के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी। कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि सामन की वीरता कायरता के बंदी खाने में पड़ी तड़प रही है।
1: नहीं नहीं नहीं, ठहरो रानी, तुम चली जाओगी तो मुझे विदा कौन करेगा।
0: तो फिर शीघ्रता कीजिए स्वामी, आइए मैं आपके भाल पर रक्त तिलक कर दूं। स्वामी विजयी हो और शीघ्र लौटे, यही मेरी शुभकामना है।
1: रण क्षेत्र में भी मैं तुम्हारी मनोहर छवि न भूल सकूंगा। तुम मेरी रग रग में समा गई हो। मैं तुम्हारे इस निर्दोष अछूते और अतृप्त यौवन को देख रहा हूँ। सोचता हूँ यदि मैं जीवित न लौटा तो तुम्हारा ये रूप यौवन
0: ऐसा न कहिए प्रियतम, यदि कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो ये दासी स्वर्ग में आपके स्वागत के लिए पहले ही उपस्थित हो जाएगी। आप ऐसे विचार हृदय से निकाल दीजिए और निश्चिंत होकर रणभूमि में जाइए।
1: अच्छा प्रिय, विदा।
2: जय भवानी।
0: जय भवानी। विजय प्राप्त कर शीघ्र आइए, मैं विजय मान लिए आपकी प्रतीक्षा करूंगी। भवानी आपको यह शौर्य दे।

0: कितनी सुंदर है हाड़ी रानी, कितनी मस्ती और अल्हड़पन है उसके अंग संचालन में। पात्र में भरी हुई मदिरा के समान इठलाता हुआ उसका यौवन, जैसे मदिरा की मादकता को भी चुनौती दे रहा हो। एक बार गले से भी न लगा सका। क्या करती होगी इस समय? कदाचित गुलाब की पंखड़ियों से सजी सेज पर बड़ी तड़प रही होगी। अगर मैं जीवित न लौटा तो उसका ये यौवन रूप नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भेजना ठीक होगा, कुछ निशानी भी मांग लाएगा। रण सिंह उपयुक्त है इस कार्य के लिए, उसी को भेजता हूं।
1: रण सिंह का प्रणाम स्वीकार हो रानी जी।
2: कहिए रण सिंह जी, क्या समाचार लाए हैं?
1: महारानी, सामंत बड़े विफल हैं। उन्होंने मुझे आपके पास कुछ सेनानी लाने भेजा है, साथ ही ये संदेश भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर जौहर व्रत करने से आप ना हिचके।
2: ओ, अभी तक प्रियतम का मोह नहीं टूटा। एक क्षत्रानी अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लीजिए, ये मेरे पितृकुल की तलवार है। निशानी के रूप में उन्हें ये तलवार देकर कहिएगा कि दोनों वंशों की लाज अब उनके हाथ है।
1: जो आज्ञा।
2: तारा, आज 3 दिन हुए, युद्धस्थल का कोई समाचार नहीं मिला।
3: वह रानी जी, जब रणसिंह आते हैं तब आप क्रोधित हो उठती हैं, और जब युद्ध का कोई समाचार नहीं मिलता तब व्याकुल होकर रोने लगती हैं।
2: तारा, तारा देख तो कोई आ रहा है।
3: रणसिंह जी आए हैं।
1: रानी जी, रणसिंह का प्रणाम स्वीकार हो।
2: रणसिंह, युद्ध भूमि का क्या समाचार है?
1: महारानी जी, युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। सामंत ने मुझे अंतिम बार आपसे कुछ सेनानी मांग लाने को कहा है। उनका शरीर रणभूमि में है पर मन आपके ही पास मंडरा।

0: है
1: आप। रण सिंह, एक अबला के सतीत्व को संकट में देखकर भी सामंत मेरे ही बारे में सोच रही है। इस हार जाम की पुतली के मोह में उनकी सारी एकाग्रता नष्ट हो रही है। उनकी इस मानसिक कायरता

0: मैं आज तुम्हें अंतिम निशानी दूंगी, ऐसी निशानी जो कभी भी किसी भी पत्नी ने अपने पति को न दी होगी। विजय मार। तारा, तारा।
1: आई, आई रानी जी, आपने मुझे बुलाया।
0: हाँ तारा, मेरी प्यारी सखी, तूने मेरी बहुत सेवा की है ना, आज अंतिम बार में तेरी सहायता चाहती हूँ।
1: ये क्या कर रही है?
0: इधर आ, इधर आ, मेरी मांग में सिंदूर भर दे, मेरे केशों को सुगंधित पुष्पों से सजा दे, पैरों में बिछिया पहना और मावर लगा। जल्दी कर, जल्दी कर तारा।
1: रानी जी,
0: रानी जी, मुझे छोड़कर मत जाओ पगली। रोती है, क्षत्रानी होकर रोती है। शिखा ताकत, रण सिंह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ला ला सिंदूर ला। अरे तेरे हाथ कांप रहे हैं, जरा तनिक ठीक से मांग तो भर दे। ऐसे दर्पण ला, दर्पण इधर ला। अरे अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था तब सब कहते थे कि बहुत सुंदर लग रही हूँ, पर आज मैं कैसी लग रही हूँ ये तो तू ही बता सकती है। बता बता ना। अरे फिर रोती है। ला ला तारा, मेरे विवाह का जोड़ा और मुझे पहना दे। सुन तारा, एक बार तूने ही कहा था ना, इस सामंत की विजय माल का सबसे सुंदर पुष्प मैं हूँ। हाँ, आज वही पुष्प बनने में जा रही हूँ। स्वामी के जोड़े कर्वोन्नत वक्ष पर ये मेरा शेष रूप एक पुष्प खूब खिलेगा, खूब खिलेगा। बस बस, अब बहुत विलंब हो रहा है तारा, जल्दी कर ला कृपाण। ठहरिए रानी जी, मुझे आपके चरण स्पर्श तो कर लेने दीजिए। बस अब समय नहीं है तारा, अब समय नहीं है, मेरा भग्न शेष रण सिंह को दे देना। और कहना कहना रानी ने ये विजय मार समझ के लिए दी है। विजय

0: तारा, तुम रो क्यों रही हो?
1: रण सिंह जी, लीजिए, हाड़ी रानी ने सामन के लिए ये विजय माल भेजी है।
0: ये कैसी विजय माल है जो इस तरह थाली में ढांक कर लाई हो?
1: आप स्वयं देख लें और सामन तक शीघ्र पहुंचा दें।
0: ये क्या, ये रानी के शीश की विजय माल? धन्य हाड़ी रानी, तुम्हारा ये बलिदान युग युग तक भारत के नरनारियों को प्रेरणा देता रहेगा। जाता हूं तारा।
2: अभी तक रण सिंह नहीं आया और इधर आलमगीर अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा आ रहा है। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं सूझता। हाड़ी रानी नस नस में बस गई है, क्या करूं?
0: सामंत, क्या मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं?
2: आओ आओ रण सिंह, मैं बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहो, हाड़ी रानी कुशल से तो है? मेरे लिए कुछ सेनानी दी उन्होंने?

0: सामंत, रानी जी ने आपके लिए ये विजय माल भेजी है।
1: अच्छा,
0: इसे गले में पहनकर आप झूम पड़ेंगे।
1: सच?
0: और जो भी इस अनोखी विजय माल को देखेगा वो अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। इस विजय माल के साथ ही हाड़ी रानी ने एक निवेदन भी किया है।
1: वो क्या?
0: कि इस युद्ध में हम सबका एक ही नारा हो और एक ही लक्ष्य हो, विजय या मृत्यु।
1: हमें सब स्वीकार है पर सेनानी तो दिखाओ।
0: आगे बढ़िए सामंत, और इस ढके हुए थाल को स्वयं खोलकर रानी की दी हुई इस निशानी से अपने वक्ष स्थल को सुशोभित कीजिए।
2: लड़सिंह जी, क्या लाए हो? हमारी भाभी का भग ऋषि, ये क्या किया तुमने लड़सिंह?
0: मैंने नहीं, आपने ही ये किया। रानी के मोह में अंधे होकर आपने मुझे बार बार सेनानी लाने को भेजा। रानी आपकी दुविधा को पहचान गई और आप पर कोई कलंक न लगे।
2: मैं समझ गया, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही दोषी हूं। सचमुच मेरा पतन हो गया था, रानी ने मुझे बचा लिया।
1: हाड़ी रानी, तुम साक्षात भवानी थी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। इन लहराते हुए सुंदर केशों की माला बनाकर मेरे गले में पहना दो रण से, मेरी प्रियतमा का शीश मेरी छाती पर लटकने दो, मेरे मृत शरीर को रानी के साथ एक ही चिता पर रखकर भस्म कर देना। अब मेरी आंखों पर से मोह का आवरण हट गया है, भूखे सिंह की तरह हम अपने शत्रुओं पर टूट पड़ेंगे। साथियों, आगे बढ़ो,
3: विजय हमारी है।
0: अच्छा, की सेना उल्टे पैर भाग रही है।
1: सच रण सिंह, तुम विजयी हुए?
0: हाँ सामंत, सच। मुगल बादशाह भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद वो भी रणभूमि छोड़कर भाग निकला। सामंत,
1: शत्रु भाग गया। जय भवानी, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए। मैं चाहता हूँ मेरी प्रियतमा मेरी प्रतीक्षा में होगी।
3: मैं चाहता हूँ सामंत, आप कहाँ दौड़े जा रहे हैं? सामंत ठहरिए, ठहरिए सामंत।
4: रानी, सुना तुमने, हम विजयी होकर आ गए, हम लौट कर आ गए। आओ हमारा स्वागत करो, टीका लगाओ, आरती उतारो। रानी शीघ्र आओ। तारा, ओ तारा
5: जी। सामंत,
4: रानी जी कहां है? उनसे कहो कि हम विजयी होकर आ गए हैं, विजय माल लेकर जल्दी आए।
5: सामंत, रानी जी की विजय माल तो आपके गले में पहले से ही सुशोभित है।
1: हाँ, रानी, मेरी हाड़ी रानी, मेरी विजय माल।

विजय माल। अभी आपने रवि शर्मा लिखित ये नाटक सुना। प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर।

0: रांची में आज सुबह से मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जिन मतदाताओं का नाम इस सूची में मिल रहा है, वे तुरंत बीएलओ से मिलकर अपनी मैपिंग पूरी करवा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार यह सूची अगले दो हफ्तों तक सभी केंद्रों पर लगी रहेगी। राज्य सरकार ने राज्य में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलों के अधिकारियों और थानों को अपने दफ्तरों के बाहर और सार्वजनिक जगहों पर आम लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने को कहा गया है। पलामू के चैनपुर में आज जमीन विवाद में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल चाल जाना। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जामताड़ा में आज विभिन्न पंचायतों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने सुपाईडी, बिंदापाथर, देवालबाड़ी, बंदरडीहा पंचायतों का दौरा किया। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सरायकेला के गम्हरिया में टाटा कंपनी फाटक के पास से पुलिस ने 10 टन चोरी के स्क्रैप मेटल के साथ एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में एक गाड़ी भी जब्त की गई है और पुलिस फरार तीन अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। राज्य के 8 जिलों में कल गर्जन के साथ तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कि इसको हम फिल्म में यस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया जिसका नाम था बैंगन। तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।
2: बिल्कुल, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था और अपने माता पिता के बारे में बताएं।
1: जी जी, सो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है पहरा।
2: क्या बात।
1: सो मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक रेडियो पे गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है इश्क और भी गहरा हुआ है। तो मैं काफी छोटा था और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है। मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं। हाँ। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा।
2: अरे वाह,
1: मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश में सुनता था, रेडियो मेरे साथ ही रहता था, मेरा दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था। देशर पटरिया के गाना, उर्मिला पांडे जी के गाने और भी बहुत सारे लोगों के गाने मैं सुनता था। तो ऐसा एक जीवन बीता और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था। चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहाँ पे बैठते थे और फिर वो वहाँ पे कुछ गाने गाते थे एक दो घंटे और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए कि जानवर उनके खेतों में ना घुसवाए। सो पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती मैं, आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी, दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठे थे और कई दफ़ा लोग हमसे इरिटेट भी होते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ कि मंडली ने

0: सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे, जुर्माना लगाते थे।
1: अच्छा,
0: तो ऐसा करके होता, तो किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उन्होंने कुछ पैसा दिए, 8-10 हज़ार रुपये उधर से आए। तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें, तो उन्होंने
1: हाँ,
0: सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
1: अरे वाह वाह,
0: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया, पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था, तो अब
1: ओके,
0: बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे पर हारमोनियम रहता था, बजा तो कोई नहीं था। तो
1: हाँ,
0: फिर वो हमारा घर जस्ट बगल में था, तो हमारे घर में रखते थे वो हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम 2-2-3-3 घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था, और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को कि
1: अरे
0: गाने के
1: वाह,
0: आसपास से, गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास ही बजा लेता है। तो ऐसे करके मैं उस पहला जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है, जिनमें मेरे
1: अपने घर के
0: पिताजी
1: ही
0: भी थे,
1: चबूतरे में हुआ।
0: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया। और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए।
1: वाह वाह,
0: सो मैं ये बोलूँगा कि मेरे पिताजी भी किसान हैं, मेरी माँ भी किसान है, और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से हैं, ऐसे जय
1: हाँ
0: जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है, अगर हम उन साथ में बोलें तो हम बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि बोलने में कि हम किसान परिवार से, तब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का हूँ।
1: कितने दूर है छतरपुर से ये गांव?
0: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है ये, बसारी पन्ना रोड पे पड़ता है, तो बसारी के
1: अच्छा,
0: आगे है पहरा।
1: ओके, तो
0: बहुत ही छोटा सा गांव है सर, बहुत ही।
1: कितनी क्लास तक वहां पढ़े आप?
0: मैं वहाँ पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद मैं 12वीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय जिसका नाम था जीजाओरे, बुंदेली फिल्म थी।
1: हाँ
0: उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव, जो उसी गांव के थे, तो वो लाइक वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय
1: अरे
0: तक,
1: वाह,
0: जीजाओरे की सीडी। झूमो नाचो गाओ रे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आओ रे भैया जी जाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका,
1: क्या
0: टाइटल
1: बात है।
0: सॉन्ग था
1: अच्छा,
0: उसका।
1: जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है,
0: उस
1: लोकगीत?
0: पे ऐसे कुछ कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे, लाइक फागे होती थी,
1: हाँ,
0: तो उसी तरह से कि कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, उपटा लगत उंगरिया मेरे, कहाँ ले आए
1: उपटा लगत उंगरिया,
0: उंगरिया,
1: क्या
0: मतलब
1: बात
0: ना
1: है,
0: कहाँ ले आए राजा के
1: क्योंकि
0: पहाड़िया में,
1: मतलब
0: लाइक
1: बुंदेलखंड।
0: कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए। ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है, ये
1: हाँ,
0: पहाड़िया को बड़ो

0: कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बंबई रहता हूं और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि, बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो
1: हाँ
0: लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
1: तो
0: तो
1: मजा आ गया मुझे सुन
0: बहुत ही
1: के
0: मजा आ गया, बहुत बहुत
1: तो।
0: मजा आ गया। तो
1: हाँ
0: यही था फिर बुंदेली, फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव।
1: हाँ
0: तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग 1 महीना 21 दिन चलता था वो।
1: अच्छा
0: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे एमपी के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो वो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद,
1: अरे
0: और
1: बाप
0: मैं नाइन्थ
1: रे,
0: क्लास में पढ़ता था उस समय।
1: ठीक
0: उस
1: है।
0: नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हम वो छोटे छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे हमारे,
1: हाँ
0: छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे,
1: तो
0: लाइक
1: बुंदेली में था ये।
0: हाँ बुंदेली में नाटक था। अब
1: हाँ
0: मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है, क्योंकि मैं एक तो पहला नाटक था मेरा, तो
1: हाँ
0: उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया। और मैंने अभी आपसे बात भी किया, इस तरह का जो जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूं।
1: वाह।
0: तो फिर ऐसे शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ कि खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई। खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूरी है। सो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाट विद्यालय एनएसडी की एक वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान, जो कि काफ़ी
1: ओ
0: बड़े
1: वो तो
0: एक्टर हैं,
1: पन्ना के ही
0: जो
1: है।
0: पन्ना के ही हैं। तो
1: हाँ
0: वो एनएसडी से पास आउट होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे। हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है, तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो अंग्रेज

0: आते हैं गोरे, 5-स्टार होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उनने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला 2-2 किलो चावल लेके चलना है, 1 किलो दाल लेके चलनी है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चलनी है, क्योंकि वहां पे 1 महीने रहना है। तो शिल्पग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया इश्तियाक जी ने, इन्हें कहीं देखा है,
1: अरे
0: इन्हें
1: वाह,
0: कहीं देखा है। तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है, उसका नाटक उन्होंने बनाया था, और वो नाटक बहुत अच्छा बना और मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि इतने छोटे से हैं वो, क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया और इतना अच्छा काम निकल के
1: और
0: आया।
1: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
0: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने मुझे ये करना है या मैं कहाँ सीखूं, तो उन्होंने बोला था कि मैं एनएसडी से पढ़ा हुआ हूँ, तुम भी एनएसडी जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके एनएसडी पहुंचना है।
1: डायरी में लिख गया।
0: हाँ, तो मैं लिख
1: अरे
0: लिया कि
1: क्या
0: अब ये
1: बात
0: मुझे
1: है,
0: पहुंचना है एनएसडी। तो फिर वहां
1: अभी
0: से
1: आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे।
0: जी,
1: यहां एक फिल्मी गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ जी, हाँ
1: तो
0: जी,
1: जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में आप ये सब कर रहे थे कि आप वो बड़े गांव में गए और उसके बाद खजुराहो हो गए, उस दौर का कोई गाना याद आता हो तो वो गाना यहां बजाया जाए।
0: एक फिल्म थी वो शोला और शबनम,
1: गोविंदा
0: गाना
1: की
0: गाना
1: फिल्म।
0: सुनता, तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे थे ना, ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए
1: क्या बात
0: ओए।
1: है,
0: तो ये कुछ गाने जो ऐसे उस समय के याद है मुझे,
1: बिल्कुल वो एक जहन में बसे
0: बहुत
1: होते
0: ही।
1: हैं और ये उस दौर की याद लेके
0: जी
1: आते
0: जी
1: हैं।
0: जी हमने
1: बातचीत
0: बहुत देखा
1: करेंगे।
0: है फिल्म को,
1: वाह।
0: बहुत देखा है फिल्म को हम। मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी,
1: हाँ,
0: गुंडा,
1: क्या
0: जो
1: बात
0: भी
1: है,
0: सीडी पे जो भी मिलता था देखते थे, जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
1: वाह। ये
0: हाँ
1: गाना सुनते
0: जी।
1: हैं।

0: उसको, तो उनसे जुड़ गया। फिर उनने जो भी नाटक कराए उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सर्वश्रद्धेय सत्यनारायण का नाटक किया,
1: बिल्कुल
0: और भी नाटक जो भी वो कराते थे उसमें उससे जुड़ गए। और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही भाई, अभी एक नाटक हुआ है, वो नाटक हुआ। फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं, इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, क्योंकि हम तो कुछ भी कर देते हैं,
1: बिल्कुल
0: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा,
1: अच्छा
0: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा। अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो? आपको कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर आया आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो। तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर नाम के एक बंदे हैं, हेमंत भाई
1: बिल्कुल
0: आप जानते होंगे, बहुत बड़े कवि हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो
1: विहान ग्रुप
0: हम विहान ग्रुप अभी वो चलाते हैं कि एक मेंबर है वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको फोन करता था, वो मैं पागल कर देता, भैया मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर है अलख नंदन सिन्हा जी, मैं
1: गजब
0: अलख दादा से उनसे मिलवा
1: हाँ
0: दूंगा, पर
1: हाँ
0: वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं एमए के लिए मैंने अप्लाई किया था, और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को, शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं बस में बैठा हूं और मेरे घुटने कांप रहे हैं, और मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बंदे का नंबर जान है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी, और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूं, और मैं वैसे ही जा रहा हूं, मेरे घुटने कांप रहे हैं, और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है, मैं सोचूं कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा, और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फोन कर रहा हूं, अभी 5 बजे कोई कोई फोन उठाएगा?
1: बिल्कुल
0: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूंगा, मैं जाके कहीं, मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया, और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फोन बंद हो जाए या आपका फोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा, और फिर एक बंदा,
1: रोशनपुरा चौराहे पर
0: हाँ एक एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा
1: हाँ
0: मेरे पास आए, और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए, ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये एक पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा, और वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा, और मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैंने उनके पैर छूए, वो नहीं बोले कि पैर वैर नहीं छूते, मैंने कि बोले हमारे यहाँ तो पैर बड़ों के पैर छूते हैं, उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते क्योंकि लोग अजीब के होते हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया। और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग दादा के घर में, और हम बैठे हुए हैं, और 1 घंटा हो गया,
1: पहले हेमंत आया।
0: हेमंत दादा आए पहले, और उन्होंने बोला
1: अच्छा
0: कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा, और क्योंकि वो उनका ग्रुप का नाम नटबुंदेले है, और तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले,
1: हाँ
0: और तुमने बोला तुम गाने गाना गाते हो तो हो सकता है तुम्हें म्यूजिक के बंदों को रख ले। और मैं अतरंगीता सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पीली कलर की शर्ट पहनी हुई है, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं, बड़े
1: अरे
0: बड़े
1: बाप
0: मैंने
1: रे
0: बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा, लगता कि उधर रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया बैठे बैठे, पानी आया चाय आई हम पी के बैठे हुए हैं, और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं, और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं बंदा पढ़ ही रहा है, आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे वो, उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया, और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये, उन्होंने बोला किसको लेके आ गए, कौन है, मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं, आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर।
1: अरे
0: मैं
1: बाप रे
0: बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे को, ये ताकत लगा रहा था क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे
1: ज़्यादा
0: चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था। उनने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखे इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं जाना है, और मैं उसके लिए आया हूं, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं है, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मैं ऐसा कुछ भी करूंगा, मैं आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रिहर्सल स्पेस साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीजें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेटरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी श्यामला हिल्स पे, उसमें मैं, हेमंत देवलेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे, वो रहते थे। तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार, और ये
1: ओ
0: पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहां पे एक छोटी सी लाइब्रेरी

0: भी थी और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना। और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया, एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ, तो उनने बोला कि अच्छा। तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तब मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई, उस महफिल में सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना दूं आपको,
1: जरूर।
0: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा
1: बाबा
0: मोखा मेला जाने। ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिचरी खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, ओ
1: वाह,
0: पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने,
1: शानदार है,
0: दद्दा
1: वाह
0: मोखा
1: वाह
0: मेला जाने। घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है,
1: वाह,
0: कैया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बाड़ो लिबवाने,
1: वाह वाह
0: मोखा
1: वाह,
0: अपने मौसिया से गुब्बाड़ो लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
1: क्या बात है।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, ये उसके दोस्त हैं,
1: बिल्कुल,
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेला ना जा पाहो उनखा आके तिनगाने,
1: वाह वाह
0: आज ते
1: वाह,
0: 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने,
1: क्या
0: दद्दा
1: बात है,
0: मोखा मेला जाने।
1: वाह वाह,
0: आखिरी बंद है कि दद्दा धीरे से मुस्काए, ढीले दोई बेला, और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला, फिर मेला में फिर दद्दा ने गड़गड़िया लेवाई, और कंधे पे बैठा के पूरा मेला दो घुमाई, कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने, और आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने,
1: वाह
0: दद्दा
1: वाह,
0: मुखा मेला जाने।
1: कहते हैं देवेंद्र
0: कि बचपन है उस समय, ये बुंदेलखंडी कभी गानों में
1: ये
0: कभी जो
1: होता
0: राइटर
1: था,
0: होता था उसका नाम छाप
1: बिल्कुल,
0: बोलते थे उसे,
1: हाँ।
0: छाप है, तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरी बुंदेली कविता थी। और वहां से ही मेरा साहित्य के बारे में, शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया, चेखव पढ़ना शुरू किया, मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया, गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया, विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया, बादल सरकार पढ़ना, तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
1: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
0: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था, और 10 रुपए का, 5 रुपए का नमकीन का एक पैकेट आता है, भुजिया वो ले ली, और रोटी बना के, और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीजें घर से ले गया था, और रोल बना के उसमें नमकीन डालता था और उसको ऐसे खाता था। खर्च कुछ था ही नहीं,
1: बस
0: वहां
1: ये
0: से
1: खाना हो गया।
0: खाना हो गया, और वहां से रिहर्सल के लिए वॉक करता था, तो वॉक करके वहां पे जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुंचता था, तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था, ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल स्पेस साफ करना है, चटाइयाँ बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में मैं, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे, जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना। और हम तीन लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था कि भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मेरी भाषा का बहुत खराब था। एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े, और दादा मुझे और मेरी भाषा बहुत खराब थी, तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द, ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे, वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक ही मुझे वो करने को मिला। मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हो गया। तो उसमें एक डायलॉग था, ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नहीं, वो मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पे गाली मिलती थी, और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो, मैं कहा
1: हाँ
0: यार मैं समझ नहीं आता मैं वही तो बोलता हूँ। फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे को भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे मैं कमा नहीं सकता, और ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, वो खुला ही था। तो मैंने फिर एमपी स्कूल ड्रामा के लिए एग्जाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे मैंने म्यूजिक बनाना समझा, मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था, पर म्यूजिक बनाना मैंने कैसे समझा, कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ, त्रिपुराई शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी, जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीजों के लिए, काफी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है। तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे, और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री में और थिएटर की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, SNA अवार्डी हैं वो, और मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा है मैंने। तो एक नाटक कर रहे थे, तो उस नाटक में हम उज्जैन में, हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी, और उज्जैन में हम एक महीने के लिए वहां पे थे, तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे। हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे। तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही, और वो गाना मुझे ही गाना था, तो मेरे सामने बना रहे थे, क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ, तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं। तो एक गाना उन्होंने बनाया, एक कविता थी, दिखती है आस क्यों, पाक पसारे सही में है मन क्यों, क्यों रूठे किनारे। तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया सर, देखिए छोटी सी बात है पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया, और मैं ऐसे इंस्पायर हो, इनलाइट हो गया, मुझे लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गाना ऐसा कुछ था।

0: क्यों रूठे किनारे। तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की और लिखने
1: क्या
0: की शुरू की
1: बात
0: है,
1: है,
0: क्योंकि मैं पढ़ता था भावे लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए।
1: कंपोज करना शुरू किया या लिखना शुरू
0: लिखने
1: किया?
0: भी लिखना लिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का, 7-8 मिनट का, एक 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ अगले।
1: रुको, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है। एक गाना सुनते हैं, उसके बाद ये दास्तान
0: हाँ,
1: सुनेंगे।
0: पता चलेगा
1: तो
0: सर।
1: बताओ यहां कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओमकारा का गाना,
1: ओमकारा का गाना
0: ओमकारा
1: है।
0: का गाना है
1: बहुत
0: कि बहुत ही
1: शानदार
0: सुंदर
1: गाना है,
0: गाना है, बहुत ही
1: बहुत
0: सुंदर
1: शानदार
0: गाना
1: गाना
0: है।
1: है।

0: ये गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र,
1: जी।
0: आप बता रहे थे कि हर शनिवार को यह परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा,
1: हाँ,
0: तो इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेली गाने थे, कुछ ऐसे कुछ गाने थे, और वहां पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। हाँ, अपना अपना भाग का मैंने पहला गाना है, वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके। सुबह का भोला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है, सुबह का भोला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, मेहनत करके भाग्य जुगा ले तुझको किसने रोका है, सुबह का भोला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है और फिर
0: म्यूजिक का सिलसिला चल पड़ा,
1: चालू हो गया। फिर उसके बाद मैं पास आउट हुआ और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना, मेरे ग्रुप में काम करना।
0: अच्छा,
1: तो एक ब्रिज मिल गया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है डेस्टिनेशन।
0: वो बोर्ड
1: वो,
0: और
1: वो तो छूटे नहीं है, वो रिकॉर्डिंग तो छूटे नहीं है।
0: हाँ।
1: वो तो मैं मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है। जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था, उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था, पर एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया और देने गया इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो, तो भोपाल में आपने नहीं दिया? मैंने बोला मैंने दिया था। तो उन्होंने क्या हुआ? मैंने कि हो गया। तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ।
0: अरे
1: मैंने कहा अरे यार, तो फिर मुझे पढ़ने को वहां पे मौका मिला और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था। 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए, और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ।
0: ओके।
1: और तो उसके बाद मैंने दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम किया।
0: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन
1: हो गया
0: और वहीं वो
1: और वो धुरंधर जी से मिलना हुआ मेरा।
0: मिले धुरंधर जी?
1: धुरंधर जी उस समय तक थे, धुरंधर जी पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक।
0: हाँ।
1: मैंने बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, ऐसे वो मनगढ़ंत कहानी सुना रहे वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग कैसे होते हैं, तो ऐसे थे वो, क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहां पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे दुनिया में होता है
0: जी।
1: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब प्यार मिलता है, परिवार के सदस्य हो, सीनियर सदस्य हो आप, तो उस तरह से। तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा है और फिर वो रिटायर्ड हो गए, तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहां भी हो, बहुत ही अच्छे थे वो।
0: एनएसडी ने आपकी दुनिया को कितना बदला?
1: सो एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे, और मुझे शौक था एक्टिंग करने का, और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया। उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था, और मेरे डायलॉग इसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे,

0: बंदूक किसके पास है? मैं बोलता राजगुरु के पास, मैं डायलॉग खत्म, मेरा रोल भी खत्म मेरा रोल भी खत्म, मेरी भाषा इतनी खराब थी।
1: अच्छा, क्योंकि लेकिन ये फिर भाषा पर काम कैसे किया? ये हाँ, बहुत
0: मैं बता रहा हूँ कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था। शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था,
1: हाँ।
0: तो लोग हंसते थे।
1: हाँ।
0: तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मैं बहुत बड़ा मसला है।
1: हाँ।
0: तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की, मुझे लगातार टोका, मुझे समझाया, और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके। मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा अच्छा मैं गलत बोलता था,
1: शक को साफ बोल रहे हो,
0: हमेशा ही बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता जो राजेश जोशी की बहुत पॉपुलर कविता है, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया।
1: हाँ।
0: जो हमारे बैंड का मंडी हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड है उसमें गाना है ना,
1: हाँ।
0: जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे।
1: हाँ।
0: तो शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था जिसमें मैंने सा को सही बोला था। शामिल बोला था, मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोलना था, इतने दिन से तुमसे यही तो बुलवाना चाह रहे थे हम।
1: ओके।
0: तो ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया, और जब मैं पहली बार इसमें एनएसजी आया और मैंने बहुत बड़ा रोल किया लोअर डेप नाटक में, दोबारा हुआ एनएसजी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया और डायरेक्ट कर रहे थे अनिरुद्ध खुटवर सर। और मैंने मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया और दो ढाई घंटे के नाटक में डेढ़ दो घंटे कम से कम स्टेज पे है और लगातार बोलना है, और कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी चीज जो मैं नहीं करता था सब उसको करना है। मैंने जम पकड़ने की कोशिश की, और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ। पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया, और उस समय मुझे समझ में आया कि यार मैं जहां से बिलोंग करता हूं, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूं, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियां कौन कहेगा। तो फिर मैंने वहां से अपना रुझान बदला और मैंने डिजाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया। सेकेंड ईयर से आप स्पेशलाइजेशन करते हो, तो वो लिया और फिर मैं उस तरफ आ गया। और फिर मैंने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहां से मैं बिलोंग करता हूं उस जमीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, मेरे को लोग प्यार करते हैं, और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूँ। लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
1: बिल्कुल
0: तुम्हारी एफर्टलेस दिखती है। तो ऐसे करके शुरू हुआ पूरा पूरा।
1: तो फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर के बाद किए हैं?
0: अभी दिल्ली पहुंचा उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे,
1: बंसी कॉल
0: जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया।
1: मुखौटा,
0: हाँ। तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लाजन लाइव थिएटर करते थे, और वो फार्स कॉमेडी करते थे, वो कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था, और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने, और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने वाटर स्टेशन, जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे, तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
1: बिल्कुल
0: देखे हमने। अविलाश पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने, और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ, और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं, और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं, और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं।
1: तो वहां से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
0: मैं पास आउट हुआ 17 में, और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था, डिरेल मैंने किया था, वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया, और वो थिएटर ओलंपिक हुआ उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था, उसके 1000 लोग देखते थे, और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिजाइन किया था, और एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक कि वहां से एक रेल की पटरी निकलती है और वहां पे एक गार्ड रहता है और वहां पे फाटक है और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा, ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था, तो वो गाना और उसके काफी गाने ऐसे पॉपुलर हुए और वो मैंने रिकॉर्ड किया, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे थे, मैंने दे दिए किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने एक गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, काफी बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बंबई आ जा और मैं हम काम करेंगे। वो बहुत बड़ा नाम था वो डायरेक्टर का, और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था, 12 बजे के आसपास एनएसजी से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पे मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में, और एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूँ। उन्होंने बोला फलाना फलाना बोल रहा हूँ। सर सर वे कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज म्यूट हो गई है। मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं और मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ। कुत्ते मेरे आसपास पहुंचे, मैं सुनाई देना बंद हो गया मुझे। मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊंगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं, कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ, पर वो काम नहीं बन पाया। अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया, पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे। पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया।
1: और यहां से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
0: हाँ मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे शुरू होता कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा, क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है। पर ये बताता कि वहां हर हाल में पहुंचना है, जहां जाने का ख्वाब देखा है तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया, क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे। फिर मैंने एक नाटक बना लिया, कांजी हाउस, जो मैंने ही लिखा था, और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे। वो शुरू ऐसे होता है, एक आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।
1: अच्छा
0: हाँ, वो क्योंकि रेडियो को बंदा था तो रेडियो पे कोई न्यूज चल रही है, और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है, ऐसे करके उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये इसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूजिक है। तो कांजी हाउस में उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए, और वो फिर कोविड लग गया। हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है, जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है।
1: और उसका एक गाना सुनाओ यार।
0: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको।
1: बिल्कुल
0: सुनाता हूँ मैं आपको। उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है। मैं एक इसकी छोटी सी गंभीर बात आ देता हूँ कि एक छोटा सा सेंटेंस, जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात

0: पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होके ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गांव से निकल के कहाँ कहाँ पहुंचता है उसकी कहानी है। सो गाना है, अब कंट्रोल नहीं होता, अब बर्दाश्त के बाहर है, इसको कोई रोक सके, किसमें इतना पावर है, सीने के इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
1: क्या
0: पै
1: बात
0: पै
1: है,
0: पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, पै पै पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, सीधे लड़के के हाथों में इलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है,
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ थे गायब, बात थी गायब, दुनिया की औकात थी गायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी,
1: वाह,
0: सुबह उठा तो कान के नीचे, सुबह उठा तो कान के नीचे, गर्दन पर स्कार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है, पा पा पा पा पा, बहुत जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है,
0: ये
1: क्या
0: राजा सॉन्ग
1: बात है,
0: है।
1: बढ़िया गाना
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: कैसा रिस्पॉन्स है इस नाटक का?
0: सर, जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए हैं, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमना है, तो जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं, और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं, एक तो हमारे मंडी हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे, और रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने नहीं बोला हुआ है तो बहुत अच्छे गाने हैं और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कोम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो हैं, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, एनएमसीसी में भी कर रहे हैं, तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले, और एक थोड़ा एग्जाम्पल बने कि हाँ कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
1: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
0: जी जी
1: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब
0: जी
1: सीरीज
0: जी
1: में।
0: स्वानंद दादा हैं, और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया, उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिगी, जिगी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की को के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन और उससे राखी बनवा दी, तो वो जिगी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा,
1: बेचारा।
0: अब वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो, अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से उसके पीछे घूमता है, बहुत मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की, क्यों, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा, वो मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविंद सर उसमें काम कर रहे थे, हमारे गुरु जी रोविंद सर
1: बिल्कुल,
0: काम, आशीष विद्यार्थी जी भी उसमें काम कर रहे हैं,
1: वाह,
0: तो काफी लोग उसमें थे, तो उसमें बहुत ही अच्छा था, और उसमें मेरा एक गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था, गाना उसमें सब मोह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था,
1: सुनाओ ना।
0: अच्छा वो गाना कुछ ऐसा था, वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल विट चूक में फंस गए, रोटी से परहेज किया है, पिज्जा बर्गर सूप में फंस गए, वो देखो सब लूप में फंस गए, प प प प प प प प प प प प, बुजुर्गों ने फरमाया है प्यारे सब मोह माया है, प प प प प प प प प प, अरे टैटू भी गुदवाया है, डूड सब मोह माया है, प
1: वाह
0: प
1: वाह,
0: प प प प प प प प प प प प प प प प प प प प प प, बस काफी ऐसे फन सॉन्ग है, आम आदमी का गाना है कि बेचारा क्या
1: बिल्कुल
0: चाय
1: बिल्कुल,
0: चढ़ा के दूध में फंस गए,
1: वाह वाह,
0: पी के कहीं तो फूंक में फंस गए,
1: वाह, क्या
0: पिचकारी से खेल रहे थे नजरों की बंदूक में फंस गए, उसके
1: सुंदर है,
0: लिरिक्स ऐसे हैं, मतलब
1: वाह वाह वाह। देवेंद्र, बहुत अच्छा लगा आपसे बात
0: मेरे
1: करके,
0: को बहुत खुशी
1: और
0: हुई
1: सबसे
0: आपसे।
1: अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए।
0: जी जी जी
1: तो फिर कभी मिलेंगे
0: 100%
1: और
0: सर,
1: आगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती
0: बहुत
1: बनाने
0: बहुत
1: के लिए।
0: शुक्रिया, मैं रेडियो का मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है, और आप यकीन

0: नहीं मानोगे, मैंने बहुत सुना है, विविध भारती मैंने सुनता था, आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था, फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं, कर
1: हाँ
0: दिया जा रहा है आपको, फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार। और
1: बिल्कुल
0: बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत इतना नहीं एक रेडियो में, और मैं
1: बिल्कुल
0: बड़ा मिस करता हूँ इसको। और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे, बैरन होगी जिंदगी मैं कहाँ से कहूँ, जैसे गाने मैंने सुन सुन
1: क्या
0: के बड़ा
1: बात,
0: हुआ हूँ मैं। सो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ, कि मैंने थोड़ा म्यूजिक और जो लोक है, जो फोक है, वो काफ़ी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है। और दूसरा, मैं शहर भी रहा हूँ, तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूँ, तो मेरे लिए ये काम कर जाता है। और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है, कि वो
1: क्या
0: गाना
1: बात
0: नहीं
1: है,
0: सुनता, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, और मैं आज आपके
1: वहां
0: साथ
1: से
0: भी बैठा
1: यहां
0: हुआ
1: तक
0: था।
1: का
0: और
1: सफर है।
0: हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके। और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर, और मुझे स्वानंदा ने दी थी वो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा, आपसे बात करता
1: बिल्कुल
0: रहूंगा, विविध भारती से जुड़ा रहूंगा।
1: शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
1: यूपी

आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: पिथौरागढ़ के पतरातू से असम के लिए 4000 टन फ्लाई ऐश की पहली रेलगाड़ी रवाना की गई। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने पर्यावरण को बचाने के लिए यह बड़ी पहल की है। पीवीयूएनएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एके सहगल ने इस मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। गिरिडीह साइबर पुलिस ने गांडई थाना क्षेत्र में छापेमारी कर दो शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बड़ी सफलता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पकड़े गए अपराधियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और 3 चेकबुक बरामद किए गए हैं। खूंटी पुलिस ने कर्रा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के आरोपी को महज 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तस्करी कठर टोली गांव से 19 वर्षीय आरोपी संतोष महली को दबोचा। आरोपी ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सारे किस्से आंखों में घुल गया, अब जागते गुजरेगी ये रात हमारी, करवटों में कितनी बातें तोल गया, भीगा हुआ सिरहाना कहता है एक फसाना, जो अब तक कहा ना हमने उसे आंखों से है बहाना।

न होश खुद का न कोई फिक्र है, हर सांस में तेरा ही बस तेरा जिक्र है। फैली कस्तूरी की तरह मेरे आगे पीछे, भटकूं मैं खोजूं कि जाने किधर है। मिलता नहीं सारे बाजार ढूंढा, न जाने खोया कहां मेरा सबर है।

वो गम दिल से लगाए बैठे हैं, हम खुद को भुलाए बैठे हैं। बन गए अजनबी तुम एक पल में, हम सक पकाए बैठे हैं। न कोई शिकवा किया न शिकायत ही कोई, हाथ सीने में छिपाए बैठे हैं। दोष दें भी तो कैसे तुझको, हम खुद चोट किस्मत से खाए बैठे हैं।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। खिलता है चांद रोज, मुस्कुराते हैं तारे, हम इनसे क्या कहें जब तुम ही नहीं हमारे। ना आना था जिंदगी में तो तसव्वुर में क्यों हो आते, कह तो गए थे अब तुम कोई नहीं हमारे। ये बातें तुम्हारी

गम का दिया जला तो जल उठी ये रात। कोई तो पूछे मुझसे मेरे दिल के अब हालात। दिन पत्थर से सख्त लगते डसे काली नागिन सी ये रात। अब शब्दों में क्या समेटूं मेरे बिखरे हुए जज्बात। आज करो एक वादा मेरे सामने तुम, दिया है गम हमें कोई बात नहीं, पर फिर ना करना ऐसा किसी के साथ।

ये गम किसी का नहीं, खुशी किसी की नहीं, न बहे आंसू मेरे तेरी आंखों से जब तक चोट तुझे लगी नहीं। इस भरी दुनिया में मेरी कोई मंजिल भी नहीं, रास्ता भी नहीं, क्या बताऊं मैं अपनी दास्तां तुझे। तू मेरा दोस्त भी नहीं, हम नवा भी नहीं, मेरा दर्द भी तेरा नहीं और तू मेरी दवा भी नहीं।

अभी आप सुन रहे थे हमारे मुंबई केंद्र का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए आपको अभी की सभा में पेश होने वाले कार्यक्रमों से अवगत करा दें।

अब से कुछ ही देर बाद शाम 5:35 पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युवाणी। शाम 6 बजे का समय है प्रादेशिक समाचार का। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से। 6:02 पर ग्रामीणों एवं कृषकों को संबोधित हमारा कार्यक्रम होगा खेतीबाड़ी। और शाम 6:30 पर कृषकों को संबोधित हमारा कार्यक्रम किसानवाणी का समय है। शाम 6:55 पर आप शामिल होंगे हमारे रांची केंद्र के कार्यक्रमों में। शाम 7 बजे का समय है प्रादेशिक समाचार का। और 7:10 पर जिले में आजकल

7:15 पर आज आप सुनेंगे एक विशेष कार्यक्रम भेंट। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत हम पेश करेंगे एक भेंट वार्ता। विषय होगा वास्तु का हमारे जीवन में महत्व। भेंट वार्ताकार होंगे श्री विजयानंदन सरस्वती। इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञान जगत। विज्ञान जगत कार्यक्रम का संकलन और वाचन होगा मीनाक्षी करण का। रात्रि 8:00 का समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट से का। 8:30 पर विविध क्षेत्रीय फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा इंद्रधनुष।

रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार और 9:15 पर उर्दू में समाचार। ये तीनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 9:30 का समय होगा कार्यक्रम विविध भारती का। विविध भारती के अंतर्गत आप सुनेंगे आज के फनकार। ये कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10 बजे हम पेश करेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 11 बजे का समय होगा हिंदी में समाचार का। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और हमारी आज की सभा की समाप्ति होगी रात्रि 11:10 पर। तो ये थी हमारी अभी की सभा में पेश होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम है युवाणी, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: युवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आइए आज के युवाणी कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं एक वार्ता के साथ। वार्ता का विषय है अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। वार्ताकार हैं आनंद कुमार।
1: के लिए कल्याणकारी योजनाएं, अल्पसंख्यकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनमें छात्रवृत्ति योजना, रोजगार योजना और वित्तीय सहायता शामिल है। छात्रवृत्ति योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मौलाना आजाद राष्ट्रीय अधेता वृत्ति योजना, मेघावी छात्रवृत्ति, रोजगार योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता, वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम ऋण योजनाएं, बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अन्य योजना, समग्र शिक्षा अभियान, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री

आवास योजना इत्यादि। अल्पसंख्यकों के कल्याणकारी योजनाओं का मकसद है शिक्षा के अवसरों में वृद्धि करना, आर्थिक गतिविधियां और रोजगार में समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं में उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, सांप्रदायिक विद्वेष और हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और उत्थान के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं एवं पहले से संबंधित महत्वपूर्ण उपलब्धियां तथा अंतर्दृष्टि साझा की है। भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं, शैक्षिक सशक्तिकरण योजनाएं, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, ये सभी राज्यों में छात्रों के लिए एक केंद्र पोषित छात्रवृत्ति योजनाएं हैं। यह प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाती हैं। इनका उद्देश्य कक्षा 1 से 10 तक की कक्षा में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह शैक्षिक खर्चों को प्रतिबंधित करने और अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करता है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाले तथा स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में के अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा उनके करियर की संभावनाओं को बढ़ने में सहायता करता है। राष्ट्रीय साधन सह मेघा छात्रवृत्ति योजना, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS, केंद्र प्रायोजित योजना सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम CSS, जिसे वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। इसमें सीमित वित्तीय संसाधनों और मेघावी अल्पसंख्यक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करती है तथा योग्य छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम NMDFC द्वारा शिक्षा ऋण योजना NMDFC जैन समुदाय सहित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को शिक्षा ऋण योजना प्रदान करता है। अधिकतम 5 वर्ष की पाठ्यक्रम अवधि वाले तकनीक एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए रियायते ऋण प्रदान किया जाता है। भारत में 5 वर्षीय पाठ्यक्रमों के लिए 20 लाख रुपए तथा विदेश में 5 वर्षीय पाठ्यक्रमों के लिए 30 लाख रुपए तक के शैक्षणिक ऋण उपलब्ध हैं। रोजगार एवं आर्थिक सशक्तिकरण योजनाएं, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है। कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए पारंपरिक शिल्प कला रूपों तथा सांस्कृतिक प्रथाओं का समर्थन करना। NMDFC योजनाएं, अल्पसंख्यकों को उसके आर्थिक उद्यमों तथा उद्यमशीलता का समर्थन करने के लिए रियायते ऋण प्रदान करता है। आर्थिक आत्मनिर्भरता को सक्षम बनाता है एवं अस्थायी आजीविका को बढ़ावा देता है। यह भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या को गिरावट को रोकने के उद्देश्य से अल्पसंख्यकों यह भारत में पारसी समुदायों की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के उद्देश्य से एक अनूठी योजना है। यह पारसी परिवार को अधिक बच्चे पैदा करना तथा उनके समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तथा करने के उपायों को लागू करता है। कौमी वक्फ बोर्ड तरक्की आमी स्कीम WBTS एंड शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना SWSBY अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए वक्फ संपत्तियों के विकास और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। समुदायों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए वक्फ संपत्तियों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बढ़ाना। अवसंरचना विकास योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, इसका लक्ष्य अल्पसंख्यक केंद्रित क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करना है। बेहतर सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा केंद्र और कौशल विकास के अवसर प्रदान कर अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें भाग लेने वाले मंत्रालयों विभागों की विभिन्न योजनाओं पहलों को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 6 केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित और कमजोर वर्गों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने
के समान अवसर मिले।

और वे देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। कार्यक्रम के निम्नलिखित व्यापक उद्देश्य हैं: शिक्षा के अवसरों में वृद्धि, मौजूदा और योजनाएं, रोजगार के लिए बढ़ी हुई ऋण सहायता और राज्य केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती। इसके माध्यम से आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुरक्षित करना। बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करके उनके जीवन स्तर में सुधार लाना और सांप्रदायिक विद्वेष और हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण करना। प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों की योजना विशेष रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए है। हालांकि अन्य सहभागी मंत्रालयों विभागों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं पहलों के परिव्यय और लक्ष्यों का 15% जहां तक संभव हो अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाता है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा और कौशल विकास के लिए पहल सहित कल्याणकारी योजनाएं जिन्हें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और कार्यक्रम के तहत अन्य भागीदारी मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जो कि निम्न प्रकार से हैं: प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, योग्यता साधन आधारित सह योजना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम, ऋणी योजनाएं, समग्र शिक्षा अभियान, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पोषण अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल। ये योजनाएं सरकार के संतृप्त दृष्टिकोणों के तहत संबंधित मंत्रालयों के विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और सरकार के संतृप्त दृष्टिकोणों के तहत कई घटकों को मुख्य धारा में भी शामिल किया गया है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। प्री मैट्रिक स्तर पर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के माता पिता को अपने स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल भेजने, स्कूली शिक्षा पर उनके वित्तीय बोझ को कम करने और अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा पूरी करने में सहायता करने के उनके प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह छात्रवृत्ति 1 से 10 तक के छात्रों को प्रदान की जाती है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित मेघावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, ताकि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर प्रदान किया जा सके, उच्च शिक्षा में उनकी उपलब्धि दर में वृद्धि हो और उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हो। छात्रवृत्ति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय के लिए प्रदान की जाएगी। इसमें राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध ITI, ITC भी शामिल है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 6 केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है। पिछले 5 वर्षों के दौरान मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए 3 छात्रवृत्ति योजनाएं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और योग्यता साधन आधारित छात्रवृत्ति लागू की है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सरकार के लिए हर एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। हर एक बच्चा को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए बजट आवंटन को तर्कसंगत

अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, वार्ताकार थे आनंद कुमार। अब आइए अब हम बात करते हैं आज उस विषय पर जो कि हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम की। कौशल विकास कार्यक्रम विकास से जुड़ा एक ऐसा कार्यक्रम है, युवाओं के कौशल के विकास का कार्यक्रम है। युवाओं को उनकी रुचि और उद्योग की मांग के अनुसार हुनरबंद बनाकर सरकार के रोजगार के अवसर प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण पहल सरकार द्वारा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का उद्देश्य समाज के हाशिए पर जीवन यापन कर रहे अन्य लक्ष्य समूह के साथ अनुसूचित जाति के 18 से 45 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ये आता है और कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं विस्तृत रूप से। जैसे अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। भारत सरकार द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए चलाई जा रही एक प्रमुख राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है

अब आइए जानते हैं कि कौशल विकास योजना में कौन कौन सी योजनाएं हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा युवाओं के को रोजगार योग्य बनाने और उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए कौशल विकास योजना चलाई जा रही है। इसमें केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं का विवरण है। प्रमुख योजनाएं हैं जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे PMKVY कहते हैं। इसके अंतर्गत उद्यमिता मंत्रालय की यह प्रमुख योजना है। इसके तहत युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है और कोर्स पूरा होने पर एक मान्यता प्राप्त

और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। PMKVY 4.0 के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह योजना उन लोगों को, स्कूल छोड़ने वालों को जो 12वीं तक के बाद स्कूल छोड़ चुके हैं और कम पढ़े लिखे लोगों के लिए है जो 15 से 45 वर्ष के आयु के बीच है। इनका मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है ताकि लोग घर बैठे अपना रोजगार शुरू कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना, यह योजना औद्योगिक संस्थाओं और युवाओं के बीच सेतु का काम करती है। इसके तहत युवाओं को उद्योगों में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है और सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के युवाओं को आजीविका से जोड़ने के लिए यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें अस्थायी रोजगार प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना CTS, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से युवाओं को तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्रों में दीर्घकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और अन्य योजनाएं हैं इसी के तहत, जिसे PM विश्वकर्मा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। कौशल ऋण योजना के अंतर्गत युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय ऋण प्राप्त करने में मदद दिया जाता है। इस तरह से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत समाज के करीब करीब हर तबके के जो युवा वर्ग के हैं, जो 15 से 45 वर्ष के उम्र के हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं या जो पढ़े लिखे हैं, हर व्यक्ति के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना है ताकि वो प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना रोजगार हासिल कर सके। अब आइए सुनते हैं, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। इस विषय पर बातचीत हम लोगों ने किया और इन बातों को हम सबों को इस पर अमल करने की ज़रूरत है, और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसका जब तक हम फ़ायदा नहीं उठाएंगे तब तक सरकार की योजनाएं सफल नहीं हो सकती। अब आइए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपके लिए

0: अभी आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। जामताड़ा के उपायुक्त आलोक कुमार ने आज नारायणपुर प्रखंड अंचल कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का

0: निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने विकास और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी विभिन्न पंजीयों की बारीकी से जांच की। इसके बाद उपायुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। लोहरदगा में सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची जारी कर दी गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत इन मतदाताओं के लिए मैपिंग का विशेष शिविर लगाया गया है। उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद दास और अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार सहित कई अधिकारियों ने विभिन्न बूथों का औचक निरीक्षण किया। हजारीबाग के समाहरणालय परिसर में आज जिला प्रशासन द्वारा कुल 24 दिव्यांगजनों के बीच बैटरी चलित ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। उपायुक्त हेमंत सत्ती के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त रिया सिंह ने लाभुकों को गाड़ियां सौंपी। कोडरमा के एनसीसी कैडेट्स में से आकाश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश की 17,500 फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर तिरंगा फहराया है। उन्होंने देश के 20 लाख कैडेट में से चुने गए केवल 8 कैडेटों में शामिल होकर झारखंड का मान बढ़ाया। धनबाद में आगामी 5 से 7 जून तक 13वीं झारखंड राज्य सीनियर महिला एवं पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। झारखंड राज्य कबड्डी संघ के महासचिव संजय कुमार झा ने बताया कि इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में राज्य भर से करीब 40 से 45 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें से अब तक 19 टीमों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। राज्य के 8 जिलों में कल गर्जन के साथ तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बारी और किसानवाणी अब से कुछ ही पलों में।

खेतीबाड़ी सुनने वाले तमाम किसान भाई बहनों को प्रदीप का नमस्कार। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे खासकर जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनके लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातों पर। तो किसान भाई, अभी का जो समय चल रहा है उसमें पशु को तेज धूप से बचाएं, पशुओं को मुंह खुरपका रोग का टीका यदि नहीं लगवाया है तो अवश्य लगवाएं, गेहूं के भूसे की पोषकता बढ़ाने के लिए उसको यूरिया से उपचारित करें, और पशु की अच्छी सेहत तथा दूध बढ़ाने के लिए 50 से 60 ग्राम मिनरल मिक्सचर उन्हें अवश्य दें। गर्मियों में हरा चारा लेने के लिए ज्वार और मक्का और लोबिया की भी आप बुआई कर सकते हैं। अच्छी नस्ल लेने के लिए, अच्छी नस्ल के बच्चे लेने के लिए उन्हें अच्छी नस्ल से ही गर्भाधान कराएं। पशुओं में गलघोंटू रोग से बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। पशुओं को संतुलित आहार दें जिससे उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे। पेट के कीड़ों से बचाव का उचित प्रबंध करें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाव करें। चारे की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह अनुसार उन्नत किस्म के बीज का प्रबंध करें।

गर्मियों में हरे चारे के लिए ज्वार मक्का क्या बुआई कर सकते हैं, लोबिया की बुआई कर सकते हैं। बछड़े को बैल बनाने के लिए 6 मास की आयु पर बधिया अवश्य करावें। किसान भाई पशुओं को ब्लैक क्वार्टर रोग से बचाव का भी टीकाकरण आप करा लें। पशुओं को पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार ही दवा दें तो ज़्यादा बेहतर है। गर्मियों के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीला पदार्थ हो सकता है जो पशुओं के लिए हानिकारक है, इसलिए किसान भाई ज्वार को खिलाने से पहले 2 से 3 बार उसे पानी से धो लें। तो आने वाला चूंकि मौसम बरसात का है तो बरसात के मौसम में चारे की अच्छी पैदावार आप लें, इसके लिए पहले से उसके लिए उचित व्यवस्था अवश्य कर लें। क्योंकि अभी गर्मी चरम पर है, अभी गर्मी और बढ़ेगी, इसलिए इस गर्मी में पशुपालक भाई अपना तो बचाव करें ही, साथ साथ पशुओं की भी उचित देखभाल अवश्य करें और उन्हें इस तपती गर्मी से अवश्य बचाएं। किसान भाई अब हम बात करेंगे सब्जी के प्रमुख कीट, बीमारियां एवं उनके रोकथाम के बारे में। तो किसान भाई अब हम सबसे पहले बात करेंगे टमाटर की, क्योंकि यह एक ऐसी सब्जी है जिसकी मांग हमेशा बाज़ार में बनी रहती है और इसकी खपत भी अधिक होती है। तो इसमें जो प्रमुख जो कीट जो लगते हैं उसमें है फल बेधक, इसमें युवा सुंडियां कोमल पत्तियों से भोजन ग्रहण करती हैं जबकि वयस्क सुंडियां फल में वृत्ताकार छेद कर घुस जाती हैं और फल का भीतरी भाग खाते रहती हैं। सफ़ेद मक्खी, इसमें वयस्क मक्खियां पत्तियों की निचली सतह से रस चूसती हैं, पत्तियां अंदर की ओर मुड़कर अंततः मुरझा जाती हैं। चेपा, यह भी जो है टमाटर का प्रमुख कीट है। चेपा का प्रकोप मुख्यतः शुष्क एवं मेघाच्छन्न मौसम में होता है। चेपा कोमल प्रोड़ों या पत्तियों की निचली सतह से रस चूसते हैं जिससे पौधे के विकास की प्रक्रिया रुक जाती है। अगर हम रोग की बात करें किसान भाई टमाटर में, तो उसमें है आर्द्र

फाइटोफ्लिथिरा कवकों के मिले जुले संक्रमण से होता है। इससे प्रभावित पौधों का निचला तना गल जाता है, पौधे अचानक ही मुरझा जाते हैं और जमीन पर गिरकर नष्ट हो जाते हैं। संक्रमित पौधे भूरे जल अवशोषित क्षति के साथ पीले हरे रंग के दिखाई देते हैं। अगेती झुलसा, यह जो रोग है किसान भाई, उसमें ग्रसित पौधों की पत्तियों के किनारे के भाग पर छोटे काले गोलाकार धब्बे होते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। जब धब्बे बढ़ते हैं तब संक्रमित पत्तियां मुरझाकर गिर जाती हैं। इस रोग का प्रकोप पौधे के सभी भागों पर होता है। पछेती झुलसा, इसमें पौधे के किसी भी भाग पर भूरे बैंगनी अथवा काले रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। ये धब्बे तेजी से बढ़कर भूरे हो जाते हैं और पत्तियों की निचली सतह के संक्रमित क्षेत्र के किनारों के समीप अथवा तने पर एक सफ़ेद फफूंदी का विकास कर लेते हैं। यहाँ तक कि फलों के डंठल भी संक्रमित होकर काले पड़ जाते हैं। पर्ण कुंचन, इसमें जो होता है किसान भाई, संक्रमित पौधों की पत्तियां मुड़ जाती हैं तथा पौधों की वृद्धि रुक जाती है। रोग का अधिक संक्रमण होने पर इसमें फल की उत्पादकता न के बराबर रह जाती है। किसान भाई, आर्द्र गलन रोग की शिकायत अगर हो तो रोकथाम के लिए अच्छी जल निकास की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए जमीन से 10 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बनाकर ही नर्सरी तैयार करना चाहिए। 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा की सक्षम स्ट्रेन को 3 किलो

गोबर की खाद में मिलाएं और 7 से 14 दिनों के लिए संवर्धन के लिए छोड़ दें। वो उसके पश्चात 3 वर्ग मीटर क्यारी में ट्राइकोडर्मा संवर्धित खाद को मिट्टी में मिला दें। आद्र गलन के नियंत्रण हेतु 10 ग्राम प्रति बीज ट्राइकोडर्मा या कैप्टन 70 WP के साथ 0.25% की दर से बीजोपचार करें। किसान भाई, चूसक कीटों तथा सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु रोपाई से पूर्व इमीडा क्लोरोप्रीट 17.8 SL के 7 ml प्रति लीटर पानी के मिश्रित घोल में टमाटर पौध की जड़ों को 15 मिनट तक डुबो कर रखना चाहिए। रोगों के फैलने की संभावना को कम करने के लिए टमाटर की किस्मों के लिए पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी 60x45 cm तथा संकर किस्मों के लिए 90x90 cm की दूरी रखना बेहतर होता है। पर्ण सुरंगक चेपा तथा सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु पौधरोपण के 25 दिन पश्चात नीम अर्क 5% का छिड़काव करना चाहिए। फल भेदक द्वारा क्षतिग्रस्त फलों को समय समय पर एकत्रित कर नष्ट कर दें। ऐसा करना सुंडी का एक फल से दूसरे फल में पहुंचने से रोकने के लिए अनिवार्य होता है। अगेती एवं पछेती झुलसा के नियंत्रण हेतु केप्टान 50W 2.5 kg प्रति हेक्टेयर 1000 लीटर पानी के साथ या मैंकोजेब 75 WP 1.5 से 2 kg प्रति हेक्टेयर की दर से 750 से 1000 लीटर पानी के साथ छिड़काव करना बेहतर होता है। तो ये तो बात हुई किसान भाई सब्जी के प्रमुख कीट बीमारियां एवं उनके रोकथाम के बारे में। आइए अब सुनते हैं लोकगीत।

0: आप सुन रहे थे लोकगीत, गायक कलाकार थे भरत सिंह भारती और साथी। आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता, मृदा की पोषकता को कैसे बनाए रखें। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा और इनसे बातचीत कर रही हैं प्रतिमा वर्मा।
1: हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। किसान भाइयों, मृदा का संरक्षण और संवर्धन के लिए तमाम बातों पर जानकारी के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा। स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: सर्वप्रथम हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि दिन प्रतिदिन भूमि की उर्वरा शक्ति घटने के मुख्य क्या कारण है।
2: मृदा का जो स्वास्थ्य है दिन पर दिन क्षरण होते जा रहा है, तो मृदा के स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखें और उसकी उपयोगिता किसान के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि अगर मृदा ही नहीं रहेगी तो इस धरती पर कुछ जीवन संभव नहीं है। आज किसान भाई देख रहे हैं कि हमारे मृदा की जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे खराब होते जा रही है, क्योंकि मृदा में जो हमारे फसल लेते हैं रासायनिक खाद वगैरह का उपयोग करते हैं, रासायनिक दवा का भी उपयोग करते हैं, तो इससे हमारे मृदा के स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। पहले जो मृदा हमारा जो था उसमें जो हम फसल लेते थे तो बिना रासायनिक खाद दिए हुए भी फसल अच्छी होती थी, लेकिन आज जो है हमारी मृदा ऐसी हो गई है कि अगर उसमें हम रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक और दवा का उपयोग न करें तो हमारी फसल अच्छी नहीं हो पाती है। इससे यही किसान अनुमान लगा रहे हैं कि हमारे जो मृदा का जो स्वास्थ्य है दिन पर दिन घटते जा रही है। तो इसके बनाए रखने का किसान के साथ एक ही उपाय है कि जो हमारा रासायनिक खाद और रासायनिक दवा और कीटनाशक का जो उपयोग कर रहे हैं उसकी मात्रा को कम करते हुए हम जैविक खेती की तरफ किसान को आना चाहिए। अगर मृदा ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो उससे जो भी अनाज और जो भी खाने का जो पौधा हम ले रहे हैं उसमें भी जो है रासायनिक का उसमें गुण आ जाएंगे और वो हमारे स्वास्थ्य के भी काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा, और ऐसा देखा भी जा रहा है कि हमारे स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव पड़ भी रहा है। तो इसका एक ये भी कारण है कि हमारा मृदा ही स्वस्थ नहीं है, इसलिए मृदा स्वस्थ रखने का एक ही उपाय है कि किसान भाई उसमें जैविक खेती की तरफ ज्यादा लें। और जैविक खेती की जहाँ की बात आती है तो जैविक खेती,
1: हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे कि जैविक खेती की आप बात कर रहे हैं, जैविक खेती किसान किस तरीके से करें कि उनको ज्यादा फायदा हो, उर्वरा शक्ति और बढ़े।
2: जी हाँ, कुछ दिन पहले हमारा ये था कि किसान हमारे देश का जो प्रोडक्शन था कम था और हमारी जनसंख्या ज्यादा थी, तो उसकी भर खाने की पूर्ति करने के लिए हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाए जिसमें हम रासायनिक खाद और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी फसल के वैरायटी को चेंज किए और उससे फसल का उत्पादन बढ़ाए। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है, आज जो है परिस्थिति अलग है। हमारे किसान की आमदनी बढ़ना है तो उत्पादन क्षमता को नहीं देख करके वो टिकाऊपन की जरूरत है, और ये टिकाऊपन तभी आएगी जब हमारा मृदा स्वस्थ रहेगा। मृदा स्वस्थ रहने का कारण है कि उसमें हम जैविक खेती करें। तो जैविक खेती के लिए किसान भाई जो हमारे पौधा का रिक्वायरमेंट है उसका जो पौष्टिक तत्व की जरूरत है उसको हम जैविक से दे सकते हैं। जैसे यूरिया का उपयोग किसान भाई करते हैं जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हवा में भी नाइट्रोजन काफी है, हवा में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन वो फसल उपयोग उसका नहीं करता है। तो हम किसान भाई को ये सोचना है कि उस जो हवा में 78% नाइट्रोजन है उसको खेत में कैसे उपयोग लायक बनाएं। तो इसके लिए आपका बहुत सारा है जीव, पहले हमारे खेत में बहुत सारे जीव रहते थे, बहुत सारे जीव जो है हमारे खेती के लिए बहुत उपयोगी हैं और किसान भाई का दोस्त है, लेकिन आज जो है रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करने से वो सारे जीव समाप्त धीरे धीरे होते गए हैं और ये सब प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हम रासायनिक खाद के उपयोग को कम करके अगर ये जीव की संख्या को बढ़ाएं, जैसे राइजोबियम जीव है, एक राइजोबियम जीव है जो प्रकृति से नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, अपने उपयोग के लिए ग्रहण करता है, और वो जो उससे प्राप्त होता है नाइट्रोजन वो मिट्टी में रहता है और पौधा को मिलता है, और ये नाइट्रोजन जो होता है वो टिकाऊपन भी होता है। लेकिन किसान यूरिया के अगर रूप में नाइट्रोजन देते हैं लेकिन वो नाइट्रोजन टिकाऊ नहीं होता है, अगर आप ज्यादा खेत में डाल देंगे तो आपका फसल बर्बाद भी हो जाएगा। लेकिन अगर ई राइजोबियम से अगर राज्यों में जीव जो है वो अगर प्रकृति से नाइट्रोजन ग्रहण करके खेत में देता है तो वो टिकाऊ भी होगा, एक फसल को मिलेगा, अगर बच जाता है तो वो जमीन में पड़ा रहेगा और दूसरे फसल को मिलेगा। इस तरह से
1: आपके कहने का मतलब है कि जैविक खेती किसानों के लिए हर तरह से उपयोगी
2: है। हर तरह से उपयोगी है।
1: और अगला सवाल हमारा ये है डॉक्टर साहब कि मृदा की जो जल धारण क्षमता है उसको बनाए रखने के लिए हमारे किसान क्या करें।
2: जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मृदा की जो जल धारण क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, धीरे धीरे घट रही है, धीरे धीरे घट रही, क्योंकि पहले लोग, आप जाने तो पहले हम लोग खेत को एक बार सिंचाई करते थे तो करीब एक सप्ताह के बाद ही उसमें सिंचाई करने की जरूरत होती है, लेकिन आज जो है, आज सिंचाई किए तो दो दिन के बाद फिर हमको सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। तो कहने का ये अर्थ है कि मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो धीरे धीरे घट रही है। किसान भाई जल धारण क्षमता से नहीं समझते होंगे, लेकिन ये अगर एग्जाम्पल दिया है मैंने, इससे आप समझ सकते हैं। जल धारण क्षमता घटने का अर्थ ये हुआ कि मिट्टी में जल को पकड़ के रखने की शक्ति कम होते जा रही है। एक कम होने का कारण, एक ही कारण है कि रासायनिक खाद का उपयोग। रासायनिक खाद के उपयोग करने से हमारी मिट्टी जो है धीरे धीरे हार्ड होते जा रही है, हार्ड होने के कारण जो है उसको जल धारण क्षमता जो है वो धीरे धीरे घट रही है। तो जल धारण क्षमता को बनाए रखने के लिए किसान से यही मैं कहना चाहूंगा कि वो रासायनिक खाद के जगह पर जो है आप कंपोस्ट डालें, बर्मी कंपोस्ट डालें। तो अगर ये बर्मी कंपोस्ट डालते हैं या जैविक खेती करते हैं तो धीरे धीरे जो है वो मिट्टी की जल धारण क्षमता वो बन जाएगा। जैसे आप किसान ऐसा देखते भी होंगे, जिस खेत में आप गोबर की खाद ज्यादा डालते हैं तो आप वहां की मिट्टी भुरभुरा भी रहती है, वहां के सॉइल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है और आपकी जल धारण क्षमता भी बढ़ी जाती है। तो ऐसे खेत में आप अगर एक बार सिंचाई करते हैं तो एक सप्ताह के बाद भी सिंचाई करेंगे तो पौधा नहीं मरेगा, माने जल उसमें रहेगा, अर्थात मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है।
1: जी, और मृदा क्षरण से बचाव के लिए हमारे किसान क्या करें?
2: जी हाँ, किसान भाई की सारे कष्ट का जड़ एक ही है कि रासायनिक खाद का उपयोग, क्योंकि रासायनिक खाद का उपयोग करने से हमारी मिट्टी जो है हार्ड होते जा रही है। आप किसान भाई, ऐसे हम समझाते हैं किसान भाई को कि आप एग्जाम्पल लेते हैं कि यूरिया ही देते हैं खाद, यूरिया खाद देते हैं तो यूरिया क्या है, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए देते हैं, लेकिन आप उसमें देखेंगे किसान भाई कि जो यूरिया का एक बोरी रहता है तो उसमें लिखा रहता है कि कितना परसेंट नाइट्रोजन है, तो आप देखेंगे बोरे पर तो उसमें लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन, अर्थात अगर 100 केजी आप यूरिया देंगे तो 46 केजी ही नाइट्रोजन मिलेगा और बाकी जो 54 केजी है, तो 54 केजी क्या है, एक किसान नहीं समझ पाते हैं। तो ये 54 केजी जो फिलर मटेरियल है, जो जो 46 केजी नाइट्रोजन है उसको पकड़ के रखने के लिए 54 केजी उसमें एक फिलर मटेरियल मिला जाता है जो हमारा कोई उपयोग नहीं है। तो वही अगर खेत में जा करके जो है हमारी

0: मिट्टी को हार्ड बनाते जा रही है। वो जो फिलर मटेरियल है वो मिट्टी को हमारे हार्ड बनाते जा रही है, और हार्ड जब मिट्टी बन रही है तो जो बारिश की पानी आ रही है वो बारिश की पानी नीचे रिस करके नहीं जा रहा है। तो बारिश के पानी रिस कर नहीं जा रहा है तो क्या होगा कि जमीन पर एक जमा होगा और धीरे धीरे एक छोटा धार बन बन करके एक बड़ा धार बनते जाएगा, और बड़ा धार बन करके वो मिट्टी को कट करेगा। मिट्टी को कट करने के साथ साथ मिट्टी को तो कट करेगा ही, लेकिन मिट्टी को कट करके आपका जो वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी का जहां जगह है उसको भी भरते जाएगा, जैसे आहार पोखर को भी धीरे धीरे भरते जाएगा। और एक समय है कि वो जो आपको पानी जमा करने का जो सोर्स है स्रोत है वो भी धीरे धीरे भर जाएगा। एक तो दूसरा घटा हुआ कि मिट्टी कटा हुआ, दूसरा आपका जो पानी जमा करने का सोर्स है वो भी धीरे धीरे भरते जा रहा है, तो ये सारे प्रॉब्लम होगा। दूसरा मिट्टी कटाव का कारण ये है कि आप गांव देहात में, गांव में किसान भाई जो करते हैं अपने खेत के मेड़ को मजबूत नहीं रखते हैं। अच्छा। धीरे धीरे जो क्या होता है कि मेड़ को काटते काटते पतला कर देते हैं, तो क्या होता है कि एक तो आप रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं जिसके कारण मिट्टी हार्ड हो गई है, एक आप मेड़ को भी मजबूत नहीं रखे हैं। इससे क्या कारण क्या होता है, वो बारिश की पानी एक खेत में जमा होता है थोड़ा सा, अगर आपका जो मेड़ है वो मेड़ नहीं मजबूत है तो एक मेड़ को तोड़ करके दूसरे खेत में जाता है। दूसरे खेत में जाने से पानी जो है और मोटा हो जाता है, और मोटा होने से वो धीरे धीरे और उसका कटाव की शक्ति बढ़ जाती है और धीरे धीरे वो ज्यादा कटाव करने लगता है। तो पानी की धार जैसे जैसे मोटा होगा वैसे वैसे ज्यादा कटाव करेगा, और वो कटाव करके फिर वो मिट्टी को काट करके अपना जो है दूर ले जाता है। तो आप ये किसान भाई जानते हैं कि मिट्टी का जो ऊपरी सतह है वो भी उपजाऊ है, ऊपरी सतह काफी उपजाऊ है, और ऊपरी सतह ही अगर कट के बर्बाद हो जाती है तो वो आपका एक खेत धीरे धीरे वो बंजर जैसा हो जाएगा, उसे उत्पादन ज्यादा नहीं आएगा, और दूसरी की आपका जो पानी का सोर्स वो भी भरते जाएगा। किसान भाई जानते भी हैं कि एक इंच भी मिट्टी बनाने में हजारों वर्ष लग जाती है, तो मिट्टी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए मिट्टी के कटाव को बचाने के लिए किसान भाई को दो काम जरूर करना चाहिए कि एक तो रासायनिक खाद का कम उपयोग करें, दूसरी कि अपने खेत के मेड़ को भी मजबूत रखें जिससे कि पानी हो तो खेत में जमा हो और धीरे धीरे रिस करके नीचे जाए जिससे कि आपका पानी लेवल जो है वो भी आपका बना रहे।
1: किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी आशा है आप इसे जरूर लाभ उठाएंगे। आप थे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा। आप हमारे कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों को मृदा संरक्षण से जुड़ी तमाम बातों की जानकारी दी, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, मृदा की पोषकता को कैसे बनाए रखें। भेंट वार्ता का अर्थ है डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा, और इनसे बातचीत कर रही थी प्रतिमा वर्मा। इसी के साथ ही आज का खेती बाड़ी कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। इजाजत दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बारी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत तो है कार्यक्रम किसान।

0: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: किसानवाणी सुनने वाले तमाम किसान भाई बहनों को प्रदीप का नमस्कार। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, चूँकि गर्मी की रफ्तार

दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, और अब हमारे जो पशु हैं उनके लिए हरा चारा का संकट हर साल की भांति इस साल भी उत्पन्न हो रहा है। तो किसान भाई, पशुओं के लिए जो हरा चारा है वह सबसे प्राकृतिक और पौष्टिक आहार है। यह दूध उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ पशुओं को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में भी मदद करता है। एक वयस्क दुधारू पशु को प्रतिदिन लगभग 25 से 30 किलोग्राम हरा चारा देना चाहिए। किसान भाई, अगर हम हर प्रमुख रूप से हरे चारे की बात करें तो उसमें है सुपर नेपियर घास। इसकी विशेषता है कि यह एक बार लगाने पर कई वर्षों, लगभग 5 से 7 साल तक लगातार हरा चारा देते रहता है। इसका जो फायदा है किसान भाई लगाने का, इसमें प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं, जो दुधारू पशुओं के लिए बेहद लाभदायक है। दूसरा है किसान भाई ज्वार। इसकी जो प्रमुख किस्में हैं उसमें है आपको डेयरी डिलाइट और जंबो गोल्ड, और एक और है CSX17। यह जो है ज्वार मीठी और रसदार होती है, जिसे पशु बहुत चाव से खाते हैं और इससे पशुओं का दूध बढ़ता है। मक्का। किसान भाई, इसकी विशेषता है कि मक्के का जो हरा चारा है पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसके चारे को सुखाकर या साइलेज बनाकर लंबे समय तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है। अजोला। किसान भाई, इसकी विशेषता है कि यह पानी में उगने वाली एक जलीय घास है जो प्रोटीन का बहुत अच्छा विकल्प है। इसे कम जगह में भी आसानी से उगाया जा सकता है। किसान भाई, अगर अन्य प्रमुख चारों की बात करें इसके अलावा, तो बरसीम, लोबिया, जई और बाजरा भी पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो किसान भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी पशु स्वस्थ रहे, ऊर्जावान बना रहे, तो आप हरे चारे का उपयोग पशुओं के लिए अवश्य करें। अगर साथ ही मिनरल मिक्सचर भी अगर उन्हें मिलता है तो सोने पे सुहागा। तो ये तो बात हुई किसान भाई हरे चारे की। चूँकि गर्मी तेज़ी से बढ़ रही है और हरे चारे का महत्व हमारे पशुपालक भाई अच्छी तरह जानते हैं, तो उस पर विशेष ध्यान देंगे। अब हम बात करेंगे किसान भाई पशुओं में होने वाले गांठदार त्वचा रोग के बारे में। तो किसान भाई, जो गांठदार त्वचा रोग है जिसे हम लैम्पी स्किन डिजीज के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में हम लोग LSDB इसको बोलते हैं, उसमें है कि मुख्यतः गौ जाति एवं भैंस जाति के पशुओं को संक्रमित करने वाला एक विषाणु जनित छुआछूत की बीमारी। यह बीमारी मुख्य रूप से संक्रमित मक्खियों, मच्छरों एवं चमोकन के काटने से होता है। बीमार पशु के आँख, नाक के स्राव, लार एवं घावों के स्राव एवं खोटी के संपर्क में स्वस्थ पशु के आने पर भी इस बीमारी के प्रसार की संभावना रहती है। बीमार दुधारू गाय भैंस के थन में घाव हो जाने के कारण दूध पीने वाला बाछा बाछी जो है यह बीमारी उसमें फैल जाती है। गाभिन गाय भैंस भी इस रोग से संक्रमित हो जाते हैं और उससे जन्म लेने वाला जो बच्चा होता है, जो पाठा पाठी जो होता है, उसमें भी यह बीमारी जन्म से आ जाती है।

संक्रमित सांड भैंसा से पाल दिलवाने पर भी यह बीमारी गाय भैंसों में फैल जाता है, अथवा संक्रमित सीमेन द्वारा एआई कराने पर भी यह बीमारी फैलता है। तो किसान भाई, पहले तो आप समझ गए कि यह कैसे कैसे फैलता है और किस तरह से आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें कि हमको जानकारी नहीं है कि हमारे पशु को संक्रमित बीमारी लग चुकी है, गांठदार त्वचा रोग से संक्रमित हमारा पशु हो चुका है, तो उसके लक्षण से आप किसान भाई जान जाएंगे कि हमारा जो पशु है वह संक्रमित हो चुका है, और देखने से भी पता चलता है। अगर आप नज़दीक से अपने मवेशी को देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि हमारे पशु को गांठदार जो है त्वचा रोग हो चुका है। तो किसान भाई, बीमारी के अगर हम लक्षण की बात करें तो संक्रमण के प्रारंभ में, जब संक्रमण होता है तो प्रारंभ में ही आँख और नाक से स्राव आने लगता है और जो लसिका ग्रंथियां हैं उसमें सूजन हो जाता है, पशु को तेज बुखार होता है, उसके जो दूध की जो उत्पादन क्षमता है वह घट जाती है, त्वचा पर गांठदार घाव का उभरना जो कुछ समय के बाद लगभग पूरे शरीर पर फैल जाता है। आम तौर पर मादा पशुओं में थनैला होना देखा गया है। कुछ बीमार पशु इस रोग के संक्रमण से निमोनिया के भी शिकार हो जाते हैं। इस बीमारी से मृत्यु दर लगभग 10% तक है, तो खतरनाक बीमारी है और इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। अब अगर बीमारी हो तो इसके बचाव रोकथाम के लिए भी अगर हम बात कर रहे हैं किसान भाई कि समय समय पर स्वस्थ पशुओं को टीका अवश्य लगवाएं। पशुओं में इस बीमारी के लक्षण पाए जाने पर इसकी सूचना विलंब अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को दें। बीमारी के प्रारंभ से ही पशुओं का उपचार कराएं, बीमार पशु को अलग रखें, साफ सफाई का पूरा ध्यान दें, मच्छर मक्खी एवं चमोकन पर नियंत्रण हेतु कारगर उपाय करें, यथा गौशाला के पास जल जमाव नहीं होने दें, नालियों को साफ रखें, बाह्य परजीवी नियंत्रण हेतु दवा का उपयोग करें। संक्रमित पशुओं को बाहर चारागाह में चरने हेतु नहीं भेजें। संक्रमण के दौरान पशुओं का क्रय विक्रय भी नहीं करना चाहिए। गौशाला में आवाजाही पर कड़ा नियंत्रण रखें। बीमार मृत पशुओं को

उपयोग में लाए गए पुआल बोरा आदि को जला दें एवं पशुशाला को कीटाणु रोधी घोल से सफाई करें, तब जाकर के आप अपने जो मवेशी हैं, जो पशु हैं, उनकी आप सुरक्षा कर पाएंगे। तो ये तो बात हुई किसान भाई गांठदार त्वचा रोग के बारे में। अब हम बात करेंगे सब्जियों के कीट और उनके नियंत्रण के बारे में। तो किसान भाई, हम लोग बात करेंगे जो प्रमुख जो है, जो सब्जी है वह है बैंगन। इसमें कौन से कीट जो है उनका आक्रमण होता है और इसके उपाय के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए किसान भाई? तो इसमें जो कीट लगता है बैंगन में वह है चेपा। चेपा किसान भाई शिशु तथा वयस्क पत्तियों का रस चूस लेते हैं तथा प्रभावित पौधे पीले पड़ते हुए विरूपित होकर सूख जाते हैं। पत्ती मोड़क, इसमें जो है लार्वे पत्तियों को मोड़ देते हैं तथा उनके हरे भाग को खा जाते हैं और पत्तियों की भीतरी

मुड़ी हुई पत्तियां मुरझाकर सूख जाती हैं। किसान भाई, फल भेदक यह बैगन की सर्वाधिक विध्वंसकारी नासी जीव है। इसमें लार्वा प्ररोहों में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे प्ररोहों की बढ़वार स्थल नष्ट हो जाते हैं। लार्वे फलों में उनकी अंकुड़ी के माध्यम से प्रवेश करते हैं। इस प्रकार फलों पर कीट के आक्रमण का कोई बाहरी लक्षण नहीं दिखाई देता। बाद में ये लार्वे फलों में छेद कर देते हैं, जो निकास छिद्र के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसे फल खाने योग्य नहीं रह जाते तथा उनका बाजार में कोई मूल्य नहीं मिलता। अगर हम रोग की बात करें किसान भाई, तो डैम्पिंग ऑफ और फल सड़न बैगन का प्रमुख रोग है। डैम्पिंग ऑफ में यह रोग पौधे की अविकसित व विकसित दोनों अवस्थाओं में होता है। अविकसित अवस्था में बीज निकलने से पहले ही सड़ जाता है, जबकि विकसित अवस्था में पौधे मिट्टी की सतह पर ही गिर जाता है। अगर फल सड़न की बात करें किसान भाई, तो यह बैगन का गंभीर रोग है। पत्तियों पर यह रोग छोटे गोल धूसर से भूरे रंग के धब्बे के रूप में दिखाई देता है। संक्रमित फलों पर छोटे धंसे हुए धब्बों के रूप में लक्षण प्रकट होते हैं।

इसमें 10 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाएं और उसमें आप नर्सरी लगाएं। जून के महीने में मृदा सौरीकरण के लिए 3 सप्ताह तक 45 गेज पॉलीथीन की चादर बिछाएं, जिससे मृदा का सौरीकरण हो सके, जिससे जीवाणु मुरझान जैसे रोगों तथा सूत्रकृमियों को कम करने में सहायता मिलती है। तथापि यह ध्यान रखना चाहिए कि सौरीकरण के लिए मृदा में पर्याप्त नमी मौजूद हो। फल भेदक प्रतिरोधी किस्में और संकर प्रजाति का आप चुनाव कर सकते हैं। डैम्पिंग ऑफर जड़ गलन के नियंत्रण हेतु ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से नर्सरी उपचार और पौध जड़ उपचार अवश्य करें, तब जाकर के आप बेहतर उत्पादन ले पाएंगे। तो ये थी बात बैगन और उनके रोग के बारे में। आइए अब सुनते हैं

0: कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाड़ी में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे पशुपालन की और थोड़ी बहुत बातें होंगी पारंपरिक खेती की भी। जी हाँ ग्रामीण भाई बहन, और बातें हमारे साथ आज साझा करने के लिए हैं चैनपुर प्रखंड के पचलेवा गाँव की एक महिला हमारे साथ हैं और आप हैं जेसफिन टोपनो। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: टोपनो जी, अभी क्या क्या आप खेती कर रही हैं?
1: अभी मेरे पास कद्दू और करेली है।
0: अच्छा, मतलब गर्मा वाली?
1: गर्मा वाली।
0: अच्छा,
1: और पशुपालन है मेरे पास।
0: कई थान करेली और कद्दू है?
1: दस थान।
0: दस थान करेली, दस थान कद्दू। वाह, तो उत्पादन
1: अभी शुरू है।
0: अभी शुरू है। अच्छा, अभी लेट से लगाई थी क्या?
1: लेट से लगाए, प्याज में लगाए थे।
0: प्याज भी
1: लगाए थे।
0: अच्छा, तो
1: आलू भी लगाए हैं, 50 किलो का मेरा 6 क्विंटल आलू।
0: अच्छा,
1: और केवल गोबर का खाद से।
0: वाह, खाली गोबर?
1: केवल गोबर।
0: ये सब नहीं, बाकी जो DAP यूरिया जो?
1: नहीं,
0: कुछ नहीं।
1: नहीं।
0: वाह,
1: कुछ। हम पिछला साल 45 किलो का 5 क्विंटल आलू का उत्पादन की।
0: वाह,
1: केवल हम देसी खेती।
0: 5 किलो आलू से 45 किलो?
1: 50 किलो। 45 किलो आलू का 5 क्विंटल।
0: वाह, 45 किलो आलू से 5 क्विंटल
1: केवल गोबर का खाद,
0: सीधे 10 गुना।
1: 10।
0: वाह, अब खाली गोबर से?
1: केवल गोबर से। उसको हम 6 महीना का रखते हैं गड्ढा में खोद के, उसी को निकाल कर लगाते हैं, खेत में छींटते हैं।
0: अच्छा, एक बात यहाँ पर अफसोस आती है, इस बात की अफसोस आती है कि उसे हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप उसे बहुत जो बाजार में जो भाव है, जो और भी आलू के, उसी भाव पर आप बेची होंगी।
1: हाँ जी,
0: यही इसी बात

0: काफ़ सोच आता है। और कृत्रिम खाद जितने भी हैं उसका उपयोग नहीं किया गया, आप उसमें सिर्फ गोबर का प्रयोग किए हैं
1: गोबर का
0: और दाम उतने ही सामान्य दर पर आप
1: उतना ही सामान्य दर,
0: जबकि इसमें बेहतर मूल्य मिलना चाहिए था।
1: मिलना चाहिए था लेकिन नहीं देता है।
0: नहीं, आप लोग टूटिए ही मत ना, देखिए कैसे उसका दाम मिलता है। इस तरह का आलू का उत्पादन बहुत कम संख्या में हमारे किसान भाई लोग कर पाते हैं।
1: जी हाँ।
0: और ये जो कद्दू करेली अभी तो निकल नहीं रहा है,
1: अभी निकल रहा है, शुरू है अभी
0: तो बेचना शुरू है।
1: नहीं अभी ज्यादा नहीं हुआ है, दो तीन बार मैंने तोड़ कम सब्जी बनाया, अभी बेचने जैसा नहीं हुआ है।
0: तो मतलब आलू की खेती भरपूर मात्रा में,
1: भरपूर।
0: अच्छा, और लाभ बढ़िया दे गया।
1: बढ़िया दे गया। मक्का मैंने पानी के चलते इस साल कम हुआ।
0: अच्छा, पानी के चलते मक्का बाहर खा ली।
1: लेकिन हम मुर्गी जो पालन किए हैं तो उसे वही लोग।
0: कितने मुर्गियाँ हैं
1: मेरे पास? कम से कम 50 मुर्गी है।
0: वाह, अब कौन मुर्गी? ये
1: देसी वाला।
0: देसी वाला, वाह, 50 तो देसी वाली मुर्गी रखे हुए हैं।
1: एक अंडा वाली है, रोज डेली अंडा देती है।
0: वाह, तो फिर अंडा तो घर में बच्चे लोग खाते होंगे सर। और बेचती भी हैं?
1: कभी कभी बेचते हैं, 10 रुपये का एक पीस।
0: अच्छा, जरूरत पड़ने पर। और मुर्गियाँ का दाना पानी?
1: दाना पानी लेके आते हैं इधर जो दुकान से मिलता है वो भी। फिर मकई में, और मकई जितना अपना उत्पादन करते हैं उसको बेचते नहीं है, उसको दलिया बना के सुअर के लिए और मुर्गे के लिए और बकरी रखे हैं उसको भी खिलाते हैं।
0: वाह, मतलब घर ही से सब सारा चीज हो जाता है। और अभी तैयारी किस चीज की चल रही है आगे के लिए?
1: अब तो बरसात के लिए, बरसात के लिए अब मक्का।
0: अभी मड़ुआ
1: भी लगाए हैं, 1 किलो लगाए हैं, कम से कम 1.5 किलो
0: मड़ुआ लगा दिए।
1: नहीं, 1.5 क्विंटल हुआ था पिछला साल।
0: पिछला साल ना, पिछला साल कितना? 1.5 क्विंटल मड़ुआ उत्पादन किए।
1: 1.5 किलो का 1.5 क्विंटल।
0: वाह, 1.5 किलो का 1.5 क्विंटल उत्पादन हो गया।
1: बहुत अच्छा मड़ुआ हुआ है।
0: मतलब इधर बृहद पैमाने पर लोग मड़ुआ खेती करते हैं।
1: तो हम लोग को बोला जाता है कि आप लोग मड़ुआ का रोटी खाइए तो आप लोग का शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहिएगा। इसलिए अब हम लोग को पहले जानकारी नहीं था, जानकारी था लेकिन इसमें इतना ताकत था हम लोग को नहीं पता था। तो बाद में फिर हम लोग जैसलपीएस में जुड़ने के बाद हम लोग को पता चला कि दीदी आप लोग ये लगाइए।
0: तो आप लोग इससे जुड़ी हुई हैं, झारखंड स्टेट?
1: हाँ, जुड़े हैं।
0: लवलीवुड
1: में हम लोग जुड़ी
0: हुई हैं। तो इससे बहुत फायदा हो जाता है?
1: बहुत फायदा, हम लोग को उधर से बीज देता है, धान मकई का बीज देता है। हम लोग एपीओ में जुड़े हुए हैं, उधर से देता है और उसी का पैदावार बहुत अच्छा होता है।
0: वो सब देते होंगे तो आपको ये क्या बोलते हैं जो लोकल होता है गांव देहात का, वो वाली बीज होगी?
1: वो भी है, अपना पहले से हम लोग जो पारंपरिक खेती कर रहे हैं वो भी है। दोनों हम लोग खेती करते हैं।
0: तो अभी मड़ुआ की तैयारी कैसे कर रही हैं? अभी कैसे जमीन तैयार कैसे कर रही हैं?
1: अभी तो पानी बरसेगा तब ना, अब जून के बाद
0: तो कोड़ाई तो करिएगा ना, उसकी तैयारी करिएगा ना।
1: कोड़ाई करेंगे तो पानी बरसेगा तब ना।
0: तो गर्मी में जो बोला जाता है कि आप गहरी जुताई करिए खेतों की, लोग बोलते हैं ना, वैज्ञानिक भी लोग बोलते हैं कि गर्मी में ही कर दीजिए आप, तो अभी जुताई वगैरह नहीं हुआ? अभी
1: नहीं हुआ है अभी।
0: अच्छा, तो कब करना है?
1: अभी जब जून, 15 जून के बाद ही।
0: 15 जून के बाद,
1: क्योंकि हम लोग का गांव का एक तो सिस्टम है कि आप पूजा नहीं करता है।
0: अच्छा, किसी को हार अच्छा नहीं, समझ गए। हाँ। तो पूजा पाठ हो जाने के बाद, मतलब उसके बाद
1: शुरू हो जाता है।
0: अच्छा, मतलब तब तक पानी भी का भी आगमन हो जाता है। धान वगैरह भी लगाती हैं?
1: धान भी, धान मक्का।
0: धान इधर कौन वैरायटी लगाती हैं आप लोग?
1: देसी भी लगाते हैं, और कौन वैरायटी बताएंगे, हम लोग को एपीओ से देता है।
0: अच्छा,
1: महंगा बीज देता है।
0: अच्छा, बीज वितरण जहाँ होता तो है वहाँ से
1: 1 किलो का 1 क्विंटल निकलता है।
0: अच्छा अच्छा, और इसका नर्सरी
1: हम लोग खुद करते हैं,
0: नर्सरी अपने तैयार करते हैं, और नर्सरी से ला करके सीधा लगा देती हैं। तो मड़ुआ का भी तो नर्सरी तैयार करते हैं?
1: हाँ जी हाँ।
0: और वही मड़ुआ वाला वहाँ से उठाए और ला करके फिर बीज अपना पौधा जो है उसको खेतों में लगाती
1: हैं।
0: आप इसके अतिरिक्त और भी कुछ पालन करती हैं? जैसे मुर्गी के बारे में बोली,
1: मुर्गी है, सुअर है,
0: शुकर है। कितने शुकर हैं?
1: 8 शुकर।
0: तो अभी शुकर का गर्मी में कैसे देख रेख करती हैं?
1: वो लोग उसको नहलाते हैं
0: बार बार?
1: नहीं, दिन में एक बार।
0: दिन में एक बार
1: नहलाते हैं उसको। हाँ। सुबह 12 बजे शाम को उसको चारा देते हैं, धान का भूसा खरीद के पहले ही रखे हैं। उसके बाद मक्का अपना घर में है तो उसका दलिया बना के
0: देती हैं।
1: देते हैं।
0: और शुकर बेचती भी होंगी?
1: बेचते हैं, एक बच्चा का दाम सारे
0: गांव देहात में बेचा जाता है। तो एटीएम का काम करता
1: कोई
0: है ना,
1: कोई पालने के लिए, कोई पूजा करने के लिए।
0: अच्छा, अच्छा, ये तो शुकर पालन की बातें हम किए, आप शुकर पालन भी करती हैं, मुर्गी पालन भी करती हैं, कुछ बकरियां भी, बकरियां कितने बोली थी?
1: अभी तो मैं रखी है लेकिन लेना है अब,
0: अच्छा, और बकरी लेना
1: अब
0: है?
1: लेना है।
0: अच्छा, और गाय वगैरह भी रखी हुई हैं आप?
1: 3 ठो बैल है,
0: तीन
1: एक
0: बैल?
1: गाय है,
0: तो बैल से ही जुताई करती
1: बैल
0: हैं
1: से जुताई
0: कि
1: करते हैं।
0: ट्रैक्टर
1: नहीं
0: वगैरह भाड़ा?
1: ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से उस

0: शुरू करना है। पिछला साल लगाए थे सावा,
1: अच्छा,
0: पानी के चलते वो नहीं जमा।
1: तो पानी तो बढ़िया,
0: बहुत पानी ना, दिन रात पानी मारा तो सब सड़ गया।
1: ओहो,
0: बीज डाले सब सड़ गया,
1: इसलिए नहीं हो पाया।
0: इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन अभी कोशिश है।
1: नहीं नहीं करिए, हो सक, पिछले बार की असफलता से घबराना नहीं है,
0: नहीं।
1: और खेत को कभी परती छोड़ना नहीं है, है ना। फलदार वृक्ष में क्या क्या रखी है अपने पास?
0: आम है, पपीता है,
1: है ना। तो आम वगैरह फलता है, उसको बेचती हैं?
0: बेचते हैं, अभी तो तूफान से गिर जा रहा है इतना।
1: हाँ, अभी तो तूफान चलने से बहुत लोगों को नुकसान हुआ है,
0: डाले सब टूट गया, आम सब झड़ गया।
1: और आप स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हैं?
0: जी।
1: अब यहाँ स्वयं सहायता समूह से लाभ प्राप्त होता है?
0: उसमें प्राप्त होता है।
1: जैसे
0: हम लोग को 10,000 टमाटर का बीज देता है, एक टमाटर का पौधा हम लोग को कम से कम 15 किलो देता है।
1: अच्छा, तो उससे लाभ हो जाता है?
0: उससे भी लाभ हो जाता है। हम लोग को मिर्चा देता है, फिर टमाटर देता है।
1: चलिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पारंपरिक खेती की जाती है, और हमारे जो भी ग्रामीण भाई बहन हैं इस पंचायत में, वो कृत्रिम खाद का उपयोग नहीं करते हैं। ज़्यादातर गोबर कंपोस्ट वगैरह जो हो गया, चाहे फिर केचुआ खाद, केचुआ का उपयोग करते हैं कि नहीं?
0: अभी तो नाडा केवल बनाया है अभी।
1: अच्छा, बनाया गया है ना,
0: गया।
1: उसका उपयोग आप लोग करती हैं और गुणवत्तापूर्ण फसल उत्पादन करती हैं और बेहतर मुनाफा भी प्राप्त हो जाता है। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी टोपनो जी, और खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियां हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता एक महिला किसान से। भेंट वार्ताकार थी जोसफिन टोपनो, ग्राम पचलेवा, सलतुआ, चैनपुर, पलामू, और इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे साथी भाई संतोष कुमार। चलते चलते मौसम का हाल आपको बता दें, आज स्थानीय शहर डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह में आर्द्रता रही 41%, जबकि शाम की आर्द्रता 21% दर्ज की गई। तो मौसम संबंधी इसी सूचना के साथ ही हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इजाज़त दें, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम किसानवाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं अगला प्रसारण हमारे रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कर्नाटका के एक दंपति सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं, श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही है। उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है जो सबको पसंद आ रही है। भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है। हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने की युवाओं से देश सेवा की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था के लिए जारी किए कड़े निर्देश। कहा कि किसी भी गांव, टोले या मोहल्ले में नहीं हो पानी की कमी। राज्य भर के मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन। अगले 2 सप्ताह तक मतदाता देख सकेंगे नाम। लातेहार पुलिस ने JJMP के 5,00,000 रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर समेत 2 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। हथियार और

0: कारतूस भी बरामद। और मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कल तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशव्यापी 19वें रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। देश भर में 47 स्थानों पर इस मेले का आयोजन किया गया था। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए कई अलग अलग क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: इसी कड़ी में रांची के सीसीएल सभागार में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां रेलवे, सेना और डाक विभाग सहित 6 विभागों के 132 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सांकेतिक रूप से 25 युवाओं को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से किया हर वादा क्रमबद्ध तरीके से पूरा कर रहे हैं।
2: हमारा स्टार्टअप अच्छा काम कर रहा है, हमारा एमएसएमई अच्छा काम कर रहा है, देश के युवा दुनिया के किसी भी युवा से कम नहीं। और इसी तरह रोजगार, सरकारी नौकरी, और अब तक लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर है। यह है प्रधानमंत्री का मंत्र, सबका साथ सबका विकास। देश विकसित भारत 2047 की ओर, उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
0: उधर धनबाद के रेलवे ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 88 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के हर युवा को रोजगार से जोड़ना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि अब तक 12 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए।
3: झारखंड की वर्तमान स्थिति, आए दिन घटनाएं घट रही है, आए दिन महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म के बाद उनकी हत्याएं हो रही है। तो इस तरह की घटना के बाद भी राज्य सरकार जाग नहीं रही है। 7 साल से ज्यादा समय हो गया, महिला आयोग का गठन नहीं हो रहा है, राज्य सरकार गंभीर नहीं है महिला सुरक्षा को लेकर। तो राज्य की महिलाओं को उसका हक, उसका अधिकार मिले, उन्हें कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म जहाँ अपनी बात को रख सके।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलों के अधिकारियों और थानों को अपने दफ्तरों के बाहर और सार्वजनिक जगहों पर आम लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी गाँव या टोले में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन को पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करने का निर्देश दिया है। राज्य में आज से सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रदर्शित कर दी गई है, जिसे देखने के लिए सुबह से ही बूथों पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। एसआईआर के तहत जिन मतदाताओं का नाम इस सूची में नहीं मिल रहा है, वे संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ से संपर्क कर अपनी मैपिंग की प्रक्रिया पूरी करवा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि यह सूची आज से अगले 2 सप्ताह तक सभी केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई

0: ये व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जीराम जी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। लातेहार पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 5 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर शिव नारायण भुइया सहित 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। एसपी कुमार गौरव ने बताया कि इस कार्रवाई में उग्रवादियों के पास से हथियार बरामद हुए हैं।
1: टीम के द्वारा बड़ी ही कुशलता से शिवा सिंह की गिरफ्तारी की गई। शिवा सिंह खेलवाड़ है, इसके विरुद्ध कुल 24 कांड दर्ज हैं। ये सब जोनल कमांडर के रूप में कार्यरत था और इसके विरुद्ध सरकार द्वारा 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। और इसके साथ ही एक सकलदीप उरांव जो एरिया कमांडर के रूप में जेजेएमपी में कार्यरत था, उसकी भी गिरफ्तारी लातेहार थाना क्षेत्र से हुई। साथ ही सभी नक्सलियों को यह भी अनुरोध किया जा रहा है कि मुख्य धारा से जुड़े, आत्मसमर्पण करें।
0: कोडरमा के एनसीसी कैडेट आकाश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश की 17,500 फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर तिरंगा फहराया है। उन्होंने देश के 20 लाख कैडेट्स में से चुने गए केवल 8 कैडेटों में शामिल होकर झारखंड का मान बढ़ाया। एनसीसी अधिकारियों ने आकाश की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि यह उसके धैर्य, अनुशासन और इच्छा शक्ति के बल पर मिली सफलता है।
2: पूरे झारखंड की तरफ से यह पहला ऐसा लड़का है जिन्होंने 17,800 फीट पर जाकर तिरंगा को फहराया है। ये उसके लिए भी गौरव की बात है, हमारे लिए भी गौरव की बात है, हमारे बटालियन और हमारे उसके लिए भी गौरव की बात है। ये बहुत दुर्गम इलाका होता है जहां सांस लेने में कठिनाई आती है, कोई राहगीर नहीं मिलता है, ऑक्सीजन की कमी रहती है, पानी की कमी रहती है, ठंड उतना ही रहता है, फिर भी ये बच्चा वहां पर जाके सर्वाइव किया।
0: और अब मौसम का हाल। राज्य के 8 जिलों में कल गर्जन के साथ तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गुड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 25 से 2 जून तक नौतपा के दौरान भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहेगा, जिससे पारा और ऊपर जा सकता है। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज कई महत्वपूर्ण मुकाबले हो रहे हैं। पुरुषों की डेकैथलॉन स्पर्धा में भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तेजस्विन शंकर ने शानदार शुरुआत की है। उन्होंने 100 मीटर रेस और लंबी कूद में अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाया और कुल 2,575 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर चल रहे हैं। धनबाद में आगामी 5 से 7 जून तक 13वीं झारखंड राज्य सीनियर महिला एवं पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। झारखंड राज्य कबड्डी संघ के महासचिव संजय कुमार झा ने बताया कि बिरसा मुंडा पार्क के पास स्थित डॉक्टर जेके सिन्हा मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल में इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस महाकुंभ में राज्य भर से करीब 40 से 45 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें से अब तक 19 टीमों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने की युवाओं से देश सेवा की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था के लिए जारी किए कड़े निर्देश। कहा कि किसी भी गांव, टोले या मोहल्ले में नहीं हो पानी की कमी। राज्य भर के मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन। अगले 2 सप्ताह तक मतदाता देख सकेंगे नाम। लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी के 5 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर समेत 2 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। हथियार और कारतूस भी बरामद। और मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कल तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता।
1: गृह मंत्रालय भारत सरकार 16वीं जनगणना का कार्य कर रही है। इसके तहत डिजिटल तरीके से जनगणना के आंकड़ों को सहेजा जाएगा। इस गणना में पहली बार स्वगणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिसे लोग अपने से पूरा कर सकते हैं। 1 मई से 15 मई तक यह प्रक्रिया चली। तदुपरांत 16 मई से लेकर 14 जून 2026 तक साहिबगंज जिले में प्रगणक मकान गणना हेतु घर घर जाएंगे। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ही सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करती है।
2: 1 मई से 15 मई 2026 तक स्वगणना की सुविधा आप सभी को उपलब्ध होगी। यह सरल, सुरक्षित एवं संक्षिप्त प्रक्रिया है। मकान सूचीकरण कार्य हेतु 16 मई से 14 जून 2026 के बीच जब प्रगणक आपके घर आए तो यह आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं।
1: साहिबगंज जिले में गत दिनों आयोजित हुए वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में जिले के किसानों को आगामी फसलों के लिए अल्पवृष्टि अतिवृष्टि की स्थिति से बचने के कार्य पर चर्चा हुई। खरीफ में यहां के किसान धान के एमटीयू 70-29 स्वर्णा की खेती करते हैं। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर मॉनसून की अनिश्चितता को देखते हुए कंटिंजेंट प्लान के तहत कार्य किया जाएगा, ताकि फसलों को बचाकर किसानों को लाभ दिया जा सके। इसके अतिरिक्त कृषि में अन्य विकल्पों के माध्यम से भी किसानों को सशक्त करने पर कार्य किया जाएगा।
3: किसानों के बीच में हम लोग स्वर्णा धान के साथ और दूसरे धान के प्रभेदों को कैसे इंट्रोड्यूस करें ताकि किसान उसको अपना सके और जल्दी तैयार होने वाले बीजों को खेती करें, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपज प्राप्त कर सके और रबी का जो तैयारी है वो जल्दी रबी का तैयारी कर सके। खरीफ सीजन के लिए डिस्ट्रिक्ट का ड्रॉप कंटिजेंट प्लान तैयार किया है, जिसको हम लोग राज्य सरकार को दे रहे हैं।
1: साहिबगंज जिले में धान, गेहूं के अलावे मिलेट्स और सरसों की खेती भी अच्छी उपज दे रही है। विरसा भाभा मस्टर्ड 1 किस्म की उपज से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावे मशरूम, पपीता, लहसुन, प्याज तथा परवल की खेती कर रहे किसानों के समग्र विकास को लेकर भी प्रयास किया जाएगा। जिले में खेती बाड़ी किसानी से जुड़े लोगों को विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में उच्च उत्पादन क्षमता, गुणवत्तापूर्ण खेती, कम लागत और ज्यादा मुनाफा अर्जित करने का साधन बनाने के लिए भी कार्य किया जाएगा।
4: 26-27 में हम लोग जो एक्शन प्लान कर रहे हैं किसान के लिए, हमारे समग्र उनका विकास हो सके उसके ऊपर हमारा ये कार्यक्रम रहता है। तो हमने पिछले बार क्लस्टर फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन सामूहिक अग्रिमपंक्ति कार्यक्रम, उसमें पाया है कि विरसा भाभा मस्टर्ड और सरसों की जो वैरायटी है वो बहुत अच्छा कर रही है। और इसमें हमने ये भी किया है कि हम साथ में मशरूम हो, पपीते की खेती, प्याज और लहसुन की खेती पे बहुत ज्यादा हम लोग जोर दे रहे हैं।
1: आज विश्व कछुआ दिवस है। क्रमिक विकास की कड़ी जोड़ने वाले इस सरीसृप का धार्मिक और इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम पर्यावरण परिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। साहिबगंज वन विभाग और रेलवे के प्रयासों से वर्ष 2025-26 में सैकड़ों कछुओं का रेस्क्यू कर सुरक्षित किया गया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज।
0: अभी आप सुन रहे थे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय है वास्तु का हमारे जीवन में महत्व। भेंटवार्ताकार हैं श्री विजयानंद सरस्वती। इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: मित्र संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। यह प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा और दिशाओं के संतुलन पर आधारित होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर या कार्यस्थल का निर्माण करने से सुख शांति, बेहतर स्वास्थ्य, धन समृद्धि और पारिवारिक सौहार्द बढ़ता है। आज वास्तु शास्त्र से जुड़ी खास खास जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज के अतिथि हैं पलामू जिला के सुप्रसिद्ध ज्योतिष महामहोपाध्याय, जिन्हें ज्योतिष विधा में अनेकों प्रकार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विशेष रूप से इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आप हैं ज्योतिर्विद श्री विजयानंदन सरस्वती जी। आकाशवाणी परिवार की ओर से हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। सर्वप्रथम तो हमारे श्रोताओं को ये बताया जाए कि वास्तु क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
2: ऐसा है कि वास्तु का अर्थ ही होता है बसना।
1: जी,
2: तो बसना हम कहाँ रहें, कैसा जगह की तलाश करें, ये आज के लिए बहुत ही प्रासंगिक है।
1: जी,
2: वास्तु से संबंधित ज्योतिष विज्ञान से ये जुड़ा हुआ विषय है। आज से 5000 साल पूर्व बृहत संहिता के रचयिता वारामिहिर,
1: जी जी,
2: वारामिहिर ने वास्तु से संबंधित विषय को रखा है, उसी का उल्लेख करते हुए मैं बताना चाहूँ कि निश्चित रूप से वास्तु हम सबों के लिए नहीं था। वास्तु का संबंध सिर्फ राजाओं से था।
1: अच्छा।
2: जो कि 5000 साल पूर्व राजतंत्रीय व्यवस्था थी, तो उस पर राजा सबसे मूल्यवान होता था और उसका जीवन पति हर तरह से सुरक्षित रहे, इसलिए वास्तु का ख्याल रख करके महल आदि बनाए जाते थे, जमीन का परीक्षण किया जाता था और उसमें रहने की बातें होती। पर ये आज के लिए हर जगह ये प्रासंगिक हो गया है, चाहे कोई प्रतिष्ठान हम बनाए चाहे कोई घर बनाए, उसे वास्तु की भूमिका बहुत आम हो गई। तो मेरे दृष्टि से पहले जो संहिता का सब महत्व है, सबसे पहले उस भूमि का परीक्षण किया जाता है
1: जी।
2: हमको भूमि शुभ रहेंगे, मेरे लिए अनुकूल होगा या नहीं, ये बड़ा महत्व रखता है। जरूर नहीं कि आप सब जगह सब हर जगह आप सूट कर गए, तो पहले भूमि परीक्षण की बात इसमें की जाती है।
1: अच्छा।
2: तो इसमें ये बताया गया है कि जो राजतंत्री व्यवस्था थी उसमें अलग अलग रंग की मिट्टियों में अलग अलग वर्णों को रहने का विधान बनाया गया।
1: अच्छा।
2: जैसे ब्राह्मणों के लिए सफेद मिट्टी,
1: अच्छा,
2: क्षत्रियों के लिए लाल मिट्टी, वैश्य के लिए भूरी मिट्टी और शूद्र के लिए काली मिट्टी,
1: जी जी,
2: ये व्यवस्था थी। अब तो राजतंत्री व्यवस्था समाप्त हो गई है, आज प्रासंगिक नहीं है, किंतु ये भूमि उन लोग के लिए उपयुक्त है जो बातें कही गई है। अब उन भूमि में यह देखना है कि यह भूमि मेरे लिए अनुकूल है कि नहीं
1: जी।
2: तो इसका एक विधान है कि दो हाथ दो फीट लंबा, दो फीट चौड़ा
1: जी,
2: और दो फीट गहरा।
1: अच्छा।
2: हम पैरेलल दो ठो गड्ढा करें, जो जमीन हम पसंद की हो या चैन।
1: और किस जगह पर करें?
2: कहीं भी, भूमि के किसी भाग में करें
1: जी।
2: और उसको गोधरी बेला में करना, सूर्य डूबने के पहले
1: जी जी,
2: एक दिन पहले
1: जी।
2: तो एक दो गड्ढा जब हम पैरेलल दो फीट बाय दो फीट बाय दो फीट का करते हैं, तो उसमें एक एक गड्ढे में हम पूरा पानी भर देंगे पूरे ऊपर तक।
1: अच्छा।
2: और दूसरा गड्ढा जो है उसकी सारी मिट्टी निकाल के अलग रख लेंगे।
1: अच्छा अच्छा।
2: जिसमें हमने गड्ढा डाले हैं उसको छोड़ देंगे और जिसमें मिट्टी निकाले हैं उसकी मिट्टी को अलग रख लेंगे
1: जी।
2: चारों कोन पर लाल, पीला, हरा और उजला,
1: अच्छा,
2: कपड़े ए बत्ती का दिया जलाएंगे चारों कोन पर।
1: अच्छा।
2: अपने इच्छा से जला रख देंगे और उसके बाद वाच करना है कि सबसे पहले किस कोने का बत्ती या दीपक बुझ गया।
1: अच्छा।
2: और उसकी बत्ती किस रंग की थी। इसमें सर्वश्रेष्ठ होता है कि जो बत्ती बहुत देर तक जले वो उसी बत्ती को देखना है।
1: अच्छा।
2: पहले बुझ गया उसका ध्यान नहीं देना है, जो लास्ट तक स्टेब्लिश रहता है
1: जी
2: उसको
1: जी
2: देखना है। सबसे अंत में कौन सी दीपक बुझे और उसकी बत्तियां किस
1: और किस दिशा की बुझे
2: और किस दिशा की
1: जी।
2: तो जो दिशा हुई वो दिशा की ओर आप मुख्य द्वार होना चाहिए। ऐसे तो पूरब और उत्तर सर्वश्रेष्ठ माने
1: जाते हैं,
2: मध्यम में पश्चिम माना जाता है, बिल्कुल विपरीत में दक्षिण माना जाता है। इसके कारण है पूरब का जो दरवाजा होगा वो हाइजेनिक होगा, सूर्य के किरणें डायरेक्ट, पश्चिम का जो दरवाजा वो गर्म रहेगा, उस पर आग उग लगने की ज्यादा संभावना। तो उत्तर विशेष अच्छा है, इसलिए सारा गुरुत्वाकर्षण उत्तर में है। इसका तो वैज्ञानिक जांच भी हुआ है कि आप एक चुंबक को आप करेंगे तो उसकी एक दिशा बराबर

0: उत्तर की ओर उन्मुख
1: होना ही।
0: तो यानी गुरुत्वाकर्षण हिमालय, हमारे भारतीय दर्शन हिमालय उत्तर दिशा में है और वो महत्वपूर्ण रहा भी इस देश के लिए। सारे भौगोलिक कारण, खेती, कृषि कार्य हमारे हिमालय की ही देन है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो ये गुरुत्वाकर्षण उत्तर दिशा में, दक्षिण निगेटिव है
1: जी,
0: यम का द्वार का था
1: जी, जी।
0: तो निगेटिव मतलब है कि आपको कहीं से पत्थर उड़ करके आए तो माथा में सीधे लगेगा, तो निगेटिव चीज है। तो आप दक्षिण दरवाजा रहेगा तो जो भी हवाओं से जो आएंगे सब निगेटिव चीजें अंदर घुस जाएंगे
1: जी, जी, जी।
0: तो आपको चोटें लगेंगी, पर अन्य दिशाओं में समस्याएं नहीं
1: है।
0: इसीलिए मूलतः पूरब उत्तर का मुख्य द्वार रखा जाता है और बत्ती के हिसाब से
1: जी, जी।
0: अगर सफेद एस्टेब्लिश होता है उजला तो सर्वश्रेष्ठ भूमि है। अगर वो लाल बत्ती बुझता है तो आपका वो थोड़ा झगड़ा झंझट वगैरह थोड़ा खड़ा कराएगा।
1: अच्छा।
0: और उसके बाद हरा शुभ होगा।
1: अच्छा अच्छा।
0: काला तो बिल्कुल ही मैंने परित्याग करने जो
1: जी। और जलाना भी है तो लाल,
0: पीला, हरा और उजला, ये चार रंग रहे
1: जी, जी।
0: और चार दिशा में रख देना है, सबसे लास्ट जो बुझेगा उसी को परिचित करना है
1: जी।
0: अब जो है नेक्स्ट डे, आपको देखना है कि जिसमें हमने मिट्टी में, जिस मिट्टी में हमने जल डाला वह जल बचा हुआ है कि सूख गया है या दरारें पड़ गई हैं।
1: अच्छा।
0: एक अगर जमीन में पानी कुछ बच जाता है तो निश्चित है वो भूमि बहुत शुभ है।
1: अच्छा।
0: अगर सामान्य भी रहता है तो चलिए कोई दिखल के दरारें पड़ जाती है तो वह अशुभ है।
1: अच्छा।
0: अब दूसरा जो पर्ल जो गड्ढा हम उसकी मिट्टी को जो फोड़ बाहर निकाले हैं
1: जी।
0: उस मिट्टी को हम फिर से उसमें भरेंगे।
1: अच्छा।
0: डालेंगे
1: जी, जी।
0: अब ये परीक्षण करना है कि मिट्टी घट गई, मिट्टी बढ़ गई या सिंपल बराबर आ गया।
1: अच्छा।
0: बढ़ गई तो अति उत्तम है, वो हमारे लिए शुभ होगा। सिंपल बराबर भी हो गया तो भी कुछ हर्ज नहीं, अगर मिट्टी घट गई तब वो जमीन हमारे लिए अनुकूल नहीं
1: जी।
0: अब भूमि का भी सबसे ज्यादा संबंध जल से है
1: जी,
0: क्योंकि कौटिल्य चाणक्य और भर्तृहरि हरि ने कहा है कि जिस जगहों पर नदी नहीं हो जिस नगर में
1: जी, जी।
0: वहां आदमी को नहीं बसना चाहिए
1: जी।
0: तो जितनी भी सभ्यताएं हमारे संसार में बसी हैं वो सब नदी जलाशय स्रोतों के निकट
1: और वहीं से
0: और जितनी सभ्यताओं का विकास हुआ है
1: सब वहीं से।
0: हम थोड़ा उदाहरण देने जा रहे हैं, क्षेत्र आज तक मैंने
1: खुशहाल
0: रहा, जैसे मिस्र की सभ्यता, तो मिस्र की सभ्यता जो फली फुली वो नील नदी के तट पर
1: जी बिल्कुल
0: हुआ। उसके बाद मेसोपोटामिया इराक, इसकी भी सभ्यता जो है दजला और फरात नदी के तट पर उसका विकास हुआ
1: जी।
0: चीनी सभ्यता, चीनी सभ्यता हांगो नदी के किनारे ही विकसित हुआ
1: जी, जी।
0: भारत की बौद्धिक सभ्यता सिंधु सरस्वती और गंगा के तट पर
1: बिल्कुल
0: विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी, आज भी महानगरी शहरी सभ्यता प्राय नदी या समुद्र तट पर विकसित है, जहाँ उद्योग धंधा का जाल है, जहाँ नदी न हो उस स्थान पर जैसा हमने कहा कि कौटिल्य और भर्तृहरि ने कहा कि वहाँ वो रहने योग्य भूमि नहीं होती है। उद्विकासवादी डार्विन तथा उत्परिवर्तन के मानने वाले डी ब्राइस ने स्वीकारा है कि प्रथम प्राणी प्रोटाजोआ पानी में ही विकसित हुए
1: जी बिल्कुल।
0: मानव जीवन के विकास में प्रथम कड़ी में मछली और वनस्पति ये जल से ही उत्पत्ति इसकी दिखाई
1: जी बिल्कुल सही है।
0: तो मानव का प्रथम जो विकास हुआ है कड़ी में, जो अवतारवाद मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, बारह अवतार, वह आपके सृष्टि के प्रारंभिक क्रम घटना है
1: जी, जी।
0: जैसे महाप्रलय होने के बाद सारी धरती जल में समाहित हो गई है
1: जी, जी बिल्कुल।
0: तो जल में समाहित होने बाद जल में प्रथम जो जीव का उत्पत्ति हुई वह प्रोटाजोआ
1: जी, जी।
0: जिसको हम मछली स्वरूप कह सकते हैं, सबसे पहले इस धरती और मछली आई
1: मछली।
0: इसी को भारतीय संदर्भ में हम लोगों ने कहा कि विष्णु का मत्स्य अवतार हो गया, ये प्रतीकात्मक सिंबॉलिक है
1: जी, जी।
0: नेक्स्ट टर्म में पानी में कुछ जमीन कुछ सरक करके मिट्टियां ऊपर आई होंगी, तो दूसरा अवतार कुर्मा अवतार कच्छप अवतार दिखाया जाता है, विष्णु का कछुआ अवतार
1: जी, जी।
0: तो कच्छप अवतार कछुआ एक ऐसा जीव जो पानी में भी रह सकता है
1: हाँ।
0: और मिट्टी में भी रह सकता
1: है।
0: थर्ड टाइम में मिट्टी और जल ये संप्रकृत से कुछ जड़ कंदमूल अपने आप पैदा हो जाते हैं
1: जी।
0: तो उन जड़ मूलों को खाने वाला जीव सूकर का जन्म हुआ, सुअर का जमीन उकोड़ करके कोई भी चीज को खा जाता। तो इस तरह से उसका विकास की गति नदी और जलाशयों निकट ही हमारी सभ्यता संस्कृति विकसित हुई। अब इनमें ये देखा जाता है कि मिट्टी का कलर और मिट्टी कैसी कैसी मिट्टी हो
1: जी, जी।
0: अभी ये देखा गया है मिट्टियों के जांच के क्रम में
1: जी,
0: जो हमारी सभ्यताएं जहां जहां बढ़ी, जैसे सबसे अच्छी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, जिसमें जल और संचयन करने की शक्ति है,
1: क्षमता है जी।
0: तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, भारत की विकसित सभ्यता इसी तट पर हुई।
1: अच्छा।
0: मौर्य काल से लेकर के मुगल काल और चोल से बहमनी तक साहित्य, कला, आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र भी यही तट रहा है।
1: अच्छा अच्छा।
0: लाल मिट्टी जो पठारी मिट्टी क्षत्रिय के लिए शुभ है एवं औद्योगिक विकास की भूमि से तथा तांत्रिक भूमि मानी जाती है।
1: अच्छा।
0: तंत्र साधना वगैरह के लिए आप देखे होंगे तारापीठ है यहाँ पर।
1: अच्छा।
0: और तो जहाँ जहाँ लाल मिट्टी वहाँ वहाँ तंत्र साधना। अच्छा। का ज्यादा केंद्र,
1: तो वो सभी लाल मिट्टी पर,
0: लाल मिट्टी पर ही विकास मिलेगा।
1: अच्छा।
0: अब आते हैं काली मिट्टी है।
1: अच्छा।
0: जो महाराष्ट्र के कुछ भाग और गुजरात के मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी, जड़ोड़ के बाद दूसरे नंबर की ये मिट्टी मानी जाती है, उत्तम मिट्टी, जिससे कपास की उन्नत खेती ज्यादा की जाती है और परिश्रम से उन्नति देने वाली भूमि कहलाती है।
1: अच्छा।
0: मेहनत करेंगे तो अधिक से अधिक आप धन प्राप्त करेंगे। दक्षिण भारत के लेटेराइट मिट्टी एक होता है, जिसको गहरा भूरा, कत्था और कहीं पीला, इसके निवास के लिए ये बहुत शुभ मिट्टी है। इसमें पांड्या, चोल तथा चेर कालीन सभ्यता का विकास हुआ
1: जी, जी।
0: बहुत विकसित रहा, चोल राजा तो बहुत नामी रहे हैं। थार या रेगिस्तान, ये आवासीय दृष्टि से उत्तम भूमि नहीं, सहिष्णु कठिन जीवन का कारक है। यहाँ पर जीवन जो है बहुत कठिन था और रेगिस्तान था, तो यह आवासीय नहीं था, व्यवसायिक दृष्टि से ठीक था।
1: अच्छा अच्छा।
0: अब श्रेष्ठ भूमि का वर्णन करना चाहेंगे कि अच्छी भूमि कौन है
1: जी,
0: तो अच्छी भूमि के आकार और प्रकार से संबंध है।
1: अच्छा।
0: जैसे आप कहीं जमीन में मकान बनाना चाहते हैं, प्रस्ताव बनाना था, तो आपको देखना यह है कि जमीन वर्गाकार है
1: जी,
0: आयताकार है
1: जी, जी,
0: वृत्ताकार है, अष्टकोण है, षष्ठकोण है, गोमुख है, सिंहमुख है
1: जी,
0: ये सभी शुभ है। इतने प्रकार जो आकृति वाली जमीन शुभ है, लेकिन सिंहमुख वाला जो भूमि है वो आवासीय शुभ नहीं है।
1: अच्छा।
0: प्रतिष्ठान व्यवसाय के लिए शुभ है।
1: अच्छा।
0: जिसको व्याघ्रमुखी कहते हैं। व्याघ्रमुखी जमीन मतलब क्या हुआ, ये आगे मुंह फैला हुआ।
1: हाँ।
0: और पीछे पतला
1: पतला,
0: जो जमीन आगे चौड़ा हो पीछे पतला हो,
1: तो पतला चौड़ा कितने फीट का हम ले सकते हैं,
0: कितने भी, अगर एक 5 इंच का भी अगर अंतर आ जाए
1: जी जी,
0: तो भी माना जाएगा कि व्याघ्रमुखी है।
1: अच्छा।
0: 5 इंच भी अगर बढ़ जाता है चौड़ाई में
1: तो भी
0: व्याघ्रमुखी माना जाएगा। तो पीछे की भूमि पतली और आई भूमि चौड़ी होती है, उसको व्याघ्रमुखी। ये प्रतिष्ठान व्यवसाय के लिए शुभ होता है, आवास के लिए शुभ नहीं होता है। आवास के लिए गोमुख और ये जो बताया गया है षष्ठकोण, अष्टकोण, आयताकार, वृत्ताकार, ये सब जमीन। आयताकार में भी ये दिया है कि जितनी चौड़ाई है उससे दोगुना से अधिक लंबाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर दोगुना अगर से अधिक हो गया तो भूमि को कहा जाता है नलाकार।
1: अच्छा।
0: नलाकार भूमि शुभ नहीं है आवासीय दृष्टि से। तो आवास के लिए मूल रूप से आपको वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार, दम राउंडर बहुत अच्छा माना गया है।
1: अच्छा।
0: आध्यात्मिक दृष्टि से भी राउंडर भूमि बहुत शुभ माना गया है, षष्ठकोण, छह कोणों वाला, 8 कोणों वाला, गोमुख और सिंहमुख, ये भूमि अच्छी है जो उसको आप देख करके व्यक्ति रह सकता है और ले सकता है
1: जी, जी।
0: खराब भूमियों में कौन है, सम चतुर्भुजाकार, चारों भुजाकार, चतुर्भुज की तरह हो।
1: अच्छा,
0: चार तरफ।
1: अच्छा।
0: नलाकार, बहुत लंबा।
1: अच्छा।
0: जैसा मैंने कहा लंबाई बहुत ज्यादा हो, चौड़ाई बहुत कम,
1: कम हो जी।
0: मैंने दोगुना से अधिक हो जाए,
1: हो जाए जी।
0: त्रिभुज
1: जी,
0: ट्रायंगल वाली भूमि। धनुषाकार, शकटाकार, शकट मैंने बैलगाड़ी
1: जी, जी।
0: उस टाइप का। सूर्पाकार, सूप के समान जमीन। और अंडाकार, डमरू भूमि, डमरू तरह जो जमीन,
1: आकार का भूमि।
0: कुंभ मैंने घड़ा के समान जो जमीन हो। विषम बाहु, जिसकी बाहु भुजाएं एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती है, विषम बाहु भूमि। और उसके बाद भुजलाधार, ये जो जमीन है ये अशुभ है, इनमें वसना या व्यवसाय करना दोनों दृष्टि से अशुभ माना जाता है। तो आज के प्रसंग का ये विषय है और ये सारी बातें बृहद संहिता से ली गई है, जिसके रचयिता बाराहमिहिर रहे हैं आज से 5000 साल पूर्व। आज इसकी ज्यादा प्रासंगिकता हो गई कि मनुष्य बहुत कठिनाई से घर इसी तरह बना पाता है, और उस घर में कोई दोष आ जाए तो फिर आदमी के लिए बड़ी मुश्किल होता है पारिवारिक। वैसे हमारे यहाँ दिशाओं के हिसाब से भी कुछ निर्माण की बातें कही गई, जैसे घर में आपको भोजनालय बनाना है, जैसे किचन, तो किचन सेट किधर होना चाहिए, तो उसका अग्निकोण हमारे बना हुआ है जो पूरब दक्षिण कोण को अग्निकोण कहते हैं। तो आप जब भी किचन घर में बनाएं तो पूरब दक्षिण की ओर। अब हमको पानी रखना है या पानी के लिए जल खुलवाना है
1: जी जी,
0: हमको कहीं पर बोरिंग करानी है
1: जी जी,
0: तो पश्चिम दिशा वरुण का है जो जल के देवता है, तो हम पश्चिम दिशा में खोज के भूमि में बोरिंग कराएंगे।
1: अच्छा,
0: बोरिंग में आपको पानी कहाँ मिलेगा, ये भी बहुत विचार नहीं,
1: बहुत बहुत बहुत विचार।
0: तो आपको ये देखना है कि अगर आगे अगल बगल कहीं भी सामने में दुग्ध वाला कोई पेड़ दिखाई पड़ता हो, जिसके तोड़ने से दूध निकले, तो उसके सीधे में अगर आप पश्चिम दिशा में आप बोरिंग कराते हैं तो निश्चित वहाँ पानी की सुलभता रहेगी। आप देखे होंगे कि गांव में अधिकांश बड़े बड़े कुएं वो बर के पेड़ के नीचे हुआ करते,
1: बिल्कुल
0: बट वृक्ष हुआ करता था,
1: या पीपल
0: होता, तो इन सबों से दूध निकलता है, बट से तो बहुत ज्यादा निकलता, तो अधिकांश बट वृक्ष के जो बड़े बड़े कुएं बनाए जाते थे उसके पीछे यही भी ज्ञान था कि वहां निश्चित पानी होगा और अथाह जल होगा। लेकिन अगर कोई कटीला पेड़ है, बैर है, बबूल है, तो वहां चट्टान पत्थर आ जाएगा, वहां पर पानी की सुलभता कम रहेंगे, ये है पत्थर। लेकिन जहां भी हरा दूब फैला हुआ है, जहां भी दुग्धधारी वृक्ष है, उसके आसपास भी आपको निश्चित जल मिले, तो पश्चिम दिशा में आप जल रखें। अब बच्चों को पढ़ने लिखने अध्ययन करने के लिए बौद्धिक विकास के लिए एक पूर्व दिशा है और दूसरा उत्तर दिशा है,
1: जो ऊर्जा का स्रोत है,
0: ऊर्जा स्रोत है, तो उस दिशा में बच्चों का अध्ययन कक्ष बनवाइए पूर्व या उत्तर दिशा में। या आपको धन समृद्धि रखना है, आपको गोदरे रखना है
1: जी,
0: उत्तर दिशा में रखिए,
1: भ्रांतियां हो या जो भी कहा जाए, लोग दक्षिण दिशा को भारी करने के लिए गोदरेज रखते
0: नहीं, दक्षिण दिशा की भूमि को सिर्फ ऊंचा करना है
1: जी,
0: इसलिए निगेटिव ऊर्जा उसके अंदर आए नहीं, इसलिए उस भाग को आप देखे होंगे जितना कोठा अटारी बनता था वो दक्षिण दिशा में बनाया जाता था, किसी घर का एक रूम को दुतला कर दिया जाता था वो दक्षिण दिशा होता था, इसलिए दक्षिण दिशा की हवाएं अंदर नहीं प्रवेश कर पाए
1: जी, जी,
0: निगेटिव ऊर्जा अंदर नहीं आ पाए
1: जी, जी।
0: भारी करने वाला दूसरा एक और नियम है, घर बनाने के समय में बाया जब प्रवेश करने वाला बाएं साइड में कम कंस्ट्रक्शन होना चाहिए और दाहिना साइड में अधिक कंस्ट्रक्शन होना चाहिए,
1: वो घर इंटर करते समय,
0: इंटर करते समय आप जब घर में प्रवेश कर रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड में
1: जी जी
0: कम कमरे हों, दाहिना साइड में अधिक
1: कमरे,
0: इस टाइप से आप निर्माण दरवाजा बनाना चाहिए, वो शुभ रहेगा। तो ये सब वास्तु से जुड़ी हुई चीजें हैं, वास्तु बहुत चीजों विचार नहीं है, पर उतना विषय को मैंने स्वीकार करना थोड़ा कठिन, लेकर हम जितना बताए हैं इसके आधार पर भी अगर निर्माण आप करते हैं तो आप जीवन स्वस्थ रहेगा, उन्नतिदायक रहेगा, और घर आदमी केवल अपने लिए नहीं बनाता
1: जी,
0: आने वाली पीढ़ियों
1: के लिए बनाता है,
0: तो सारी पीढ़ी सुखमय जीवन व्यतीत कर सके।
1: अध्यात्म की दृष्टि से अगर हम देखें तो पूजा पाठ का जगह कहाँ होना चाहिए,
0: पूजा पाठ पूरब उत्तर एकदम जिसको ईशान कुल कहा गया है, ईशान तो भगवान शिव का नाम है
1: जी,
0: तो ईशान कुल इसीलिए बनाया गया है, वो आध्यात्मिक क्षेत्र वाला है पूर्व उत्तर।
1: अच्छा, बहुत से ऐसे जमीन हैं जो चौकोर नहीं है या तरह तरह की आकृति के हैं, अब तो जमीन खरीदना भी मुश्किल है, और जो खरीद चुके हैं हमारे श्रोता भाई, निर्माण अगर वो गृह का करें तो किस प्रकार करें, चौकोर करें?
0: देखिए कुछ अशुभ भूमि अगर आप गलती से या मकान आपको प्राप्त हो गया है
1: जी,
0: तो उसकी शांति के लिए 2-3 उपाय करके आप रख सकते हैं
1: जी,
0: जैसे प्रवेश द्वार दाहिने साइड में निकलते से जो दाहिना भाग पड़ता है
1: जी जी,
0: वहाँ आप समी वृक्ष लगाएं
1: जी,
0: जोड़ा अशोक लगा दें, अशोक का पौधा लगा दें,
1: अच्छा
0: जोड़े एक सा एक नहीं जोड़ा
1: जी,
0: अर्जुन वृक्ष लगा सकते जिसको कहुआ कहा जाता
1: है,
0: ये प्लांट आप लगाए वनस्पति इसे भी बहुत सा दोष करता है, बेल वृक्ष रखें आगे में इसे भी बहुत सा दोष कटेगा। दूसरा है कि काठ करंज की लकड़ी अंगूठे नाप के बराबर
1: जी,
0: हनुमत प्रतिमा हनुमान जी की प्रतिमा उस पर खोद के और विधिवत अगर जमीन के सवा हाथ भूमि में स्थापित कर दिया जाए
1: जी जी,
0: घर से निकलने दाहिने साइड में
1: जी जी,
0: तो भी उस घर के बहुत से वास्तु संबंधी अशुभ चीजें समाप्त हो जाती है। अंगुष्ठ प्रमाण अगर हनुमत प्रतिमा बनवाई जाए और उस प्रतिमा को विधिवत स्थापित करा देंगे तो उसे भी वास्तु संबंधी दोष कटेगा।
1: अच्छा, शहरों में एक बहुत बड़ी समस्या रह जाती है शौचालय की।
0: शौचालय देखिए, शौचालय के संबंध में दो तीन दिशाएं हैं
1: जी।
0: जैसे लोग

0: खजाना कहते हैं, लेकिन हमको खजाना स्वीकारने की स्थिति में नहीं है। लोग गंदगी है तो उसको आप पश्चिम दक्षिण में बहने दे सकते हैं।
1: अच्छा,
0: पश्चिम दक्षिण की दिशा में उसको आप बनाइए या उसको बहने का व्यवस्था दीजिए।
1: अच्छा,
0: बहुत सा चीज है कि अथाह विषय, इसकी सीमा रेखा 10-15 मिनटों में नहीं इसको बांधा जा सकता है, अमोघ है। बहुत से इसमें सवाल उत्पन्न, बहुत से इसके प्रश्न उत्तर है,
1: लेकिन मुख्य मुख्य बिंदु जहाँ तक है कि अपने पूजा स्थल जो बनाए आप वो ईशान कोण को
0: पूरे उत्तर सर्वश्रेष्ठ है,
1: और रसोई घर का निर्माण करें
0: पूर्व दक्षिण
1: अग्नि कोण में चले,
0: अग्नि कोण पर करें। जल उल रखना है या जलाशय है, नल है,
1: पानी, तो उसके लिए आप वरुण की दिशा में,
0: पश्चिम दिशा में,
1: पश्चिम दिशा की
0: उत्तर दिशा में आप सभी तरह का चीज रख सकते हैं, धन दौलत घर खजाना जो भी आप रखना है उत्तर दिशा में रखिए।
1: जो भारी वाली जो बातें जो आती है अक्सर,
0: वो केवल घर के दीवाल को ऊंचा वजन करना है, उसको वजन बनाना है, या उसको
1: न कि सामान रखे उसको
0: नहीं बनाना
1: जी,
0: ये नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है। और ये दीवाल उससे वही निगेटिव ऊर्जा, दक्षिण के यम का द्वार कहा गया है, इसलिए उधर की दिशाओं को हम लोग निगेटिव
1: वाइट करके चलते हैं,
0: नकारात्मक ऊर्जा दी।
1: और सोने की दृष्टि से
0: दक्षिण तरफ पैर नहीं होना,
1: नहीं सो सकते हैं या नहीं,
0: दक्षिण सो सकते,
1: सो सकते,
0: सोने में कहीं नहीं। देखिए आप किसी कमरे में सोइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका सिर बराबर दक्षिण की ओर होना चाहिए
1: जी,
0: और पैर उत्तर की ओर होना चाहिए। इसलिए पैर उत्तर की ओर होना, कि पैर और पादप कहा गया है
1: जी, बिल्कुल,
0: यानी संपूर्ण जैसे पेड़ जो है उसका जड़ जो है वही उसका पैर है, तो सब कुछ ऑब्जर्व पेड़ जो है वो जड़ से प्राप्त करता
1: जी,
0: है
1: जी बिल्कुल,
0: जितनी भी ताकत है, तना पत्तियां, पत्तियों पर तो भोजन उसका पकता है, तो सारा जो ऊर्जा जो है उसके पैर के नीचे। आज हमारे भारतीय दर्शन में प्रणाम करने की जो बातें कही गई है वो क्या है, प्रणाम जिसको आप कर रहे हैं वो महान नहीं है, उसकी तो आप शक्ति रोज घटा रहे हैं प्रणाम करके।
1: अच्छा,
0: उसके चरणों में ही
1: अच्छा,
0: उसने जितना तप किया, जितना सकारात्मक ऊर्जा ऑब्जर्व किया, आप उसको चरण छू करके ऑब्जर्व कर ले, अपने में करंट वापस ले रहे हैं, तो इसके बनने में उसको घाटा हो रहा है
1: जी,
0: उसको प्रत्येक दिन उसके चरण हो रहा है, अब फिर से उसकी तपस्या ऊर्जा ऑब्जर्व करेगा तब ना, नहीं तो बाकी तो आप उससे ऑब्जर्व आप प्राप्त कर रहे हैं चरण छू कर। चरण छूने की जो परंपरा है माता पिता गुरुजनों का, इसके पीछे वही तर्क है कि आप आशीर्वाद न चाहते हो भी आप वो मन से आशीर्वाद दे देंगे
1: जी, जी।
0: जैसे आपके सामने शरणागत होकर झुकेंगे, वो न चाहते हो शत्रु भी आपको को आप चरण छू लीजिए, वो भी आप मन से उसको आशीर्वाद निकलेगा, बुरा नहीं सोच सकते,
1: बिल्कुल नहीं,
0: वो ऐसी परिस्थिति है जिसमें उसको सकारात्मक बातें उसके मुंह से निकलेंगे, इतना चरण छूने में। तो इस सब पीछे बहुत सा तर्क है, वैज्ञानिक कारण है
1: जी,
0: विज्ञान से सम्मत है।
1: खासकर हमारे पलामू वासियों के लिए ऐसी कोई महत्वपूर्ण बातें वास्तु से जुड़ी हुई जिसे आप साझा करना चाहते हैं?
0: देखिए यहाँ की मिट्टी अधिकांश लाल है, आप देख रहे होंगे
1: जी,
0: तो ये क्रांति की भूमि है
1: जी,
0: यहाँ बराबर लड़ाई युद्ध
1: शुरू से
0: होते रहे हैं, तो ये मिट्टी लाल मिट्टी कहलाती है। ये आध्यात्मिक भी है, तांत्रिक भी है, और औद्योगिक इंडस्ट्रियल भी है, तीनों के लिए शुभ भूमि है
1: जी।
0: ये तीन कार्य के लिए आवास में भी बनाते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, रह सकते हैं। अब तो राजतंत्र नहीं है, राजतंत्र में राजाओं के लिए छत्रियों के लिए लाल मिट्टी मानी गई थी
1: जी।
0: ऐसे भी यहाँ लाल मिट्टी उसी उन्हीं लोग का अधिकांश वास भी रहा है, तो लाल मिट्टी शुभ है, पठारी भूमि है। और दक्षिण का पठारी जो है, आप एक नई बात बताना चाह रहे हैं, ये दक्षिण का पठार जो छोटा नागपुर जो है
1: जी जी,
0: ये इस सृष्टि का सबसे पुरानी भूमि है। सृष्टि में सबसे प्रथम जो भूमि उत्पन्न हुई, धरती पर आई, उसमें दक्षिण का पठार का नाम आता है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। तो हम लोग तो भाग्यशाली है कि एक ओर अगर काशी को शिव त्रिशूल पर मानते हैं
1: जी जी,
0: तो दूसरी ओर दक्षिण का पठार जो है वो सबसे सृष्टि का पहला उद्गम उत्पन्न हुआ स्थल है। सबसे पहले भूमि यही ऊपर आई है जल से निकल करके, तो हम लोग इसलिए भाग्यशाली। यहाँ भी तो अंजनी धाम हनुमान जी की आस्था, अंजनी धाम जन्म स्थान दिखाई जाता है, राम रेखा घाट है, शुक्ला नागपुर भगवान राम इस भूमि पर आए। तो दक्षिण लोग बहुत, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, इसमें न बहुत ज्यादा भूकंप का खतरा है, न जल प्रलय का खतरा है,
1: कभी नहीं,
0: तो ये बहुत अच्छी बात है। ये इस भूमि का वनस्पतिक रूप से बहुत समृद्ध, खनिज रूप से बहुत समृद्ध भूमि है
1: जी
0: ये छोटा नागपुर।
1: और एक महत्वपूर्ण बात की प्रकृति ने हमें बहुत कुछ उपहार में दिया, और प्रकृति में कोई वैसी बातें जो हमारे श्रोता समझ सकें कि हाँ ये 100%।
0: देखिए ऐसा है कि इस प्रकृति में से ही हम सब कुछ सीखे हैं
1: जी,
0: जो कुछ आया है आज से अधिक माने योग्य
1: जी,
0: या आज से अधिक संवेदनशील हमारे पशु पक्षी थे
1: जी।
0: मैं एक पक्षी का जिक्र कर रहा हूँ, कौवा
1: जी, जी।
0: मैं समझता हूँ इस धरती का सबसे बड़ा डाकिया वही है
1: जी।
0: किस कोने में आपका अमेरिका से बच्चा चला कि इंग्लैंड से चला कि भारत किस भूमि से चला, उसको लोकेट करके कौवा उसके घर पहुंच जाता है और वो काँव काँव करके यह सूचना देता है, और सूचना से उस व्यक्ति को मालूम हो जाता है कि कोई मेरे यहाँ आ रहा है, किसी की सूचना मिलने वाली है, और वो बिल्कुल सही होता है
1: क्या?
0: जब भी वो काँव काँव करता है तो इतनी बड़े पूरे सृष्टि में उस घर को लोकेट कर पाना सामान्य मनुष्य के सोचने परे बात है। अगर इसके गहराई में आप जाए तो आप अजीब सा लगेगा, कौवा एक ऐसा जीव जो धरती का किसी कोने में जाकर के लोकेट कर उस घर को समझा देता है कि आप यहाँ कोई आने वाला है, और वो निश्चित आता है, चाहे तो चिट्ठी आएगी या वो उसके घर कोई अतिथि आएगा। तो ये वो शुभ भी दे सकता है, शुभ भी दे सकता है, लेकिन संदेश जरूर पहुंचेगा। तो ये इतनी बड़ी व्यवस्था बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है, उसमें डाक व्यवस्था कहाँ थी, लेकिन असली डाक व्यवस्था यही थी। लोग एक तो चिट्ठी तीन दिन, चिट्ठी चली है चार दिन पहले, और पांचवें दिन चिट्ठी पहुंचती है और आप निश्चिंत हो जाते हैं मेरा बाल बच्चा बिल्कुल ठीक है। आज हम इतने व्यग्र बेचैन हैं कि स्टेशन पर बच्चा पहुंचा नहीं, क्या बेटा गाड़ी आ गई है, सीट पर बैठ गए, इतना बेचैन है, हम इतना फास्ट जीवन में जी रहे हैं। लेकिन कल एक चिट्ठी आ जाती है पोस्ट कार्ड पर और आप इतमान से बोलते हैं बिटवा चिट्ठी आई, बिटवा सब ठीक ठाक है, ये पांच दिन गुजर गया, चिट्ठी भी हम परिवार पूरा निश्चिंत है कि मेरा बेटा ठीक ठाक है, और आज मिनट सेकंड में बेचैन है कि स्टेशन पहुंचा कि नहीं, गाड़ी पर बैठा कि नहीं, इतना परेशान। ये जीवन है दोनों का, बहुत अंतर आया है। आज बहुत हम व्यग्र हैं, ज्यादा बेचैन है
1: पहले की अपेक्षा, बहुत ज्यादा व्यस्त है। आप थे पलामू जिला के जाने माने ज्योतिर्विद श्री विजयानंदन सरस्वती जी। सर आप हमारे स्टूडियो में आए और वास्तु से संबंधित विस्तृत जानकारियां साझा की, हमारी प्रकृति से संबंधित जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे एक भेंट वार्ता, भेंट वार्ताकार थे श्री विजयानंद सरस्वती और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। विषय था वास्तु का हमारे जीवन में महत्व। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम विज्ञान जगत, संकलन और वाचन मीनाक्षी करण का है।
3: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम विज्ञान जगत में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं विज्ञान से जुड़ी हुई बातें, विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या नवीन शोध चल रहे हैं या क्या उपलब्धियां रही हैं, भारत विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रगति कर रहा है, और पूरे विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में जो नए प्रयोग हो रहे हैं उससे हमारी मानवता पर क्या प्रभाव पड़ता है या पड़ने वाला है, इन सब के विषय में हम अपने इस अंक में आपसे बात करते हैं। और आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र और उसका अवलोकन। भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों की शुरुआत श्रोताओं 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना के साथ हुई थी। शुरुआती वर्षों में देश के दक्षिणी शोर पर तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना के साथ वायुमंडलीय अध्ययन पर काम किया गया। 1969 में स्थापित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरी तरह से नए स्तर पर पहुँचाया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और सामाजिक विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभों का दोहन करना था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की विशेषता राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की दृष्टि है। अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य उपग्रह संचार, उपग्रह आधारित संसाधन सर्वेक्षण प्रबंधन, उपग्रह नेविगेशन, उपग्रह मौसम विज्ञान, अनुप्रयोगों और अन्य उभरते क्षेत्रों के प्रमुख क्षेत्रों में आत्मनिर्भर तरीके से परिचालन, अंतरिक्ष सेवाएं स्थापित करना और इन क्षेत्रों में निरंतर अनुसंधान और विकास करना है। अंतरिक्ष विभाग अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है ताकि आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके। अंतरिक्ष विभाग यानी कि DOS भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से अंतरिक्ष कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। इसरो राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जो अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों से संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन के साथ साथ अनुसंधान और विकास के लिए भी जिम्मेदार है। अंतरिक्ष विभाग DOS के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा है जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को अपनाने में सक्षम बनाना है और यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से निकलने वाले उत्पादों और सेवाओं के प्रचार और वाणिज्यिक दोहन के लिए भी जिम्मेदार है। और अंतरिक्ष सुधारों के बाद इसकी भूमिका और इसके दायरे को बढ़ाया गया है जिसमें पृथ्वी अवलोकन और संचार के लिए उपग्रहों का स्वामित्व और उपग्रह सेवाएं प्रदान करना, उपग्रह और प्रक्षेपण वाहन बनाना, प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करना शामिल है। भारत सरकार द्वारा घोषित अंतरिक्ष सुधारों के बाद अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र देश में निजी संस्थाओं की गतिविधियों की अनुमति देने और उनकी देखरेख करने के लिए DOS के तहत स्वतंत्र नोडल एजेंसी है। श्रोताओं, इसरो के परिचालन प्रक्षेपण यान PSLV, GSLV और GSLV-M के 3 पृथ्वी अवलोकन, संचार, नेविगेशन और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए अंतरिक्ष तक सुनिश्चित पहुंच प्रदान करते हैं। छोटे उपग्रहों की ओर वैश्विक बदलाव को पूरा करने के लिए समर्पित एक छोटा लॉन्चर SMLV विकासाधीन है। चेन्नई के पास श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में इसरो के 2 लॉन्च पैड देश को अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षमता भी प्रदान करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान अन्वेषण कार्यक्रम अपने भविष्य के अंतरिक्ष विज्ञान मिशन के विकास में लगा हुआ है, जैसे कि चंद्रमा के लिए मिशन चंद्रयान 3, सौर अन्वेषण मिशन आदित्य L, अंतरिक्ष वेधशाला एक्सपोसैट, ये सब वर्तमान में प्रचालनरत मिशन एस्ट्रोसैट भारत की पहली समर्पित खगोलीय वेधशाला और चंद्रयान 2 ऑर्बिटर बहुमूल्य वैज्ञानिक डेटा प्रदान करना जारी रखे हुए हैं। गगनयान का कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय ऑर्बिटल मॉड्यूल और भारतीय मानव रेटेड लॉन्च वाहन का उपयोग करके मनुष्यों को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने और उन्हें सुरक्षित रूप से वापस धरती पर लाने के लिए एक मिशन शुरू करके मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को पूरा करना है। मानव युक्त उड़ान से पहले 2 मानव रहित उड़ानों की योजना भी बनाई गई है। मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तकनीकें जैसे क्रू मॉड्यूल, क्रू एस्केप सिस्टम और पर्यावरण नियंत्रण जीवन समर्थन प्रणाली का विकास किया जा रहा है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है।

0: अंतरिक्ष क्षेत्र में सामूहिक रूप से घरेलू निजी कंपनियों ने वित्त पोषण जुटाया है। इसरो ने संयुक्त मिशन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौते और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत मंगलयान मिशन के साथ मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश था और अपने पहले प्रयास में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश था। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मिशन है और इसरो प्रक्षेपण यान और इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलरेटर जैसी नई तकनीकों के विकास पर भी काम कर रहा है। इसरो रिमोट सेंसिंग, उपग्रह आधारित नेविगेशन और उपग्रह आधारित मौसम विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उपग्रह आधारित सेवाएं प्रदान करता है और भविष्य में इन सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रहा है। इसरो ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई छात्रों, स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियों को भी बिना किसी न्यूनतम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले उपग्रह से उत्पन्न डेटा को उधार देने का भी फैसला किया है। यानी कुल मिलाकर भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आने वाले वर्षों में लागत प्रभावशीलता, आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास के लिए तैयार है। स्टार्टअप भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और अभिनव समाधान प्रदान करके अंतरिक्ष क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। वे नए विचार और तकनीकें ला रहे हैं जो अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास को गति देने में मदद कर रहे हैं। इसरो के साथ ये काम कर रहे हैं जिससे उन्हें नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीकी और उद्यमशीलता की विशेषज्ञता मिल रही है। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का भविष्य आशाजनक है जिसमें कई प्रमुख पहल और परियोजनाएं चल रही हैं। सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी से निरंतर समर्थन के साथ भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ने के लिए भारत तैयार है। तो श्रोताओं, आज हमने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में इस कार्यक्रम विज्ञान जगत में चर्चा की और अब आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। विज्ञान जगत से नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे विज्ञान जगत कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। अब आइए सुनते हैं भेंट वार्ता।
1: आपका मित्र संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। यह प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा और दिशाओं के संतुलन पर आधारित होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर या कार्यस्थल का निर्माण करने से सुख शांति, बेहतर स्वास्थ्य, धन समृद्धि और पारिवारिक सौहार्द बढ़ता है। आज वास्तु शास्त्र से जुड़ी खास खास जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज के अतिथि हैं पलामू जिला के सुप्रसिद्ध ज्योतिष महामहोपाध्याय, जिन्हें ज्योतिष विधा में अनेकों प्रकार के पुरस्कार

0: से सम्मानित किया गया। विशेष रूप से इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आप हैं ज्योतिर्विद श्री विजयानंदन सरस्वती जी। आकाशवाणी परिवार की ओर से हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। सर्वप्रथम तो हमारे श्रोताओं को ये बताया जाए कि वास्तु क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
1: ऐसा है, वास्तु का अर्थ ही होता है बसना।
0: जी,
1: तो बसना हम कहाँ रहें, कैसा जगह की तलाश करें, ये आज के लिए बहुत ही प्रासंगिक है।
0: जी,
1: वास्तु से संबंधित ज्योतिष विज्ञान से ये जुड़ा हुआ विषय है। आज से 5000 साल पूर्व बृहत संहिता के रचयिता वारामिहिर,
0: जी जी,
1: वारामिहिर ने वास्तु से संबंधित विषय को रखा है, उसी का उल्लेख करते हुए मैं बताना चाहूँ कि निश्चित रूप से वास्तु हम सबों के लिए नहीं था। वास्तु का संबंध सिर्फ राजाओं से था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि 5000 साल पूर्व राजतंत्रीय व्यवस्था थी, तो उस पर राजा सबसे मूल्यवान होता था और उसका जीवन पति हर तरह से सुरक्षित रहे, इसलिए वास्तु का ख्याल रख करके महल आदि बनाए जाते थे, जमीन का परीक्षण किया जाता था और उसमें रहने की बातें होती। पर ये आज के लिए हर जगह ये प्रासंगिक हो गया है, चाहे कोई प्रतिष्ठान हम बनाए चाहे कोई घर बनाए, उसे वास्तु की भूमिका बहुत आम हो गई। तो मेरे दृष्टि से पहले जो संहिता का महत्व है, सबसे पहले उस भूमि का परीक्षण किया जाता है
0: जी।
1: हमको भूमि शुभ रहेंगे, मेरे लिए अनुकूल होगा या नहीं,
0: जी,
1: ये बड़ा महत्व रखता
0: जी।
1: है, जरूर नहीं कि आप सब जगह सब हर जगह आप सूट कर गए, तो पहले भूमि परीक्षण की बात इसमें की जाती है।
0: अच्छा।
1: तो इसमें ये बताया गया है कि जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी उसमें अलग अलग रंग की मिट्टियों में अलग अलग वर्णों को रहने का विधान बनाया गया।
0: अच्छा।
1: जैसे ब्राह्मणों के लिए सफेद मिट्टी,
0: अच्छा,
1: क्षत्रियों के लिए लाल मिट्टी, वैश्य के लिए भूरी मिट्टी और शूद्र के लिए काली मिट्टी,
0: जी जी,
1: ये व्यवस्था थी। अब तो राजतंत्रीय व्यवस्था समाप्त हो गई है, आज प्रासंगिक नहीं है, किंतु ये भूमि उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो बातें कही गई है। अब उन भूमि में यह देखना है कि यह भूमि मेरे लिए अनुकूल है कि नहीं
0: जी।
1: तो इसका एक विधान है कि दो हाथ दो फीट लंबा, दो फीट चौड़ा
0: जी,
1: और दो फीट गहरा।
0: अच्छा।
1: हम पैरेलल दो ठो गड्ढा करें, जो जमीन हम पसंद की हो या चैन,
0: और किस जगह पर करें,
1: कहीं भी भूमि के किसी भाग में करें
0: जी,
1: और उसको गोधली बेला में करना, सूर्य डूबने के पहले
0: जी जी,
1: एक दिन पहले
0: जी।
1: तो दो गड्ढा जब हम पैरेलल दो फीट बाय दो फीट बाय दो फीट का करते हैं, तो उसमें एक एक गड्ढे में हम पूरा पानी भर देंगे पूरे ऊपर तक।
0: अच्छा।
1: और दूसरा गड्ढा जो है उसकी सारी मिट्टी निकाल के अलग रख लेंगे।
0: अच्छा अच्छा।
1: जिसमें हमने गड्ढा डाले हैं उसको छोड़ देंगे और जिसमें मिट्टी निकाले हैं उसकी मिट्टी को अलग रख देंगे
0: जी।
1: चारों कोण पर लाल पीला हरा और उजला,
0: अच्छा,
1: कपड़े ए बत्ती का दिया जलाएंगे चारों कोण।
0: अच्छा।
1: अपने इच्छा से जला रख दीजिए और उसके बाद वाच करना है कि सबसे पहले किस कोने का बत्ती या दीपक बुझ गया।
0: अच्छा।
1: और उसकी बत्ती किस रंग की थी। इसमें सर्वश्रेष्ठ होता है कि जो बत्ती बहुत देर तक जले वो उसी बत्ती को देखना है।
0: अच्छा।
1: पहले बुझ गया उसका ध्यान नहीं देना है, जो लास्ट तक स्टेब्लिश रहता है
0: जी,
1: उसको
0: जी,
1: देखना है सबसे अंत में कौन सी दीपक बुझे और उसकी बत्तियां किस रंग
0: और किस दिशा की बुझे
1: और किस दिशा की
0: जी।
1: तो जो दिशा हुई वो दिशा की ओर आप मुख्य द्वार होना चाहिए। ऐसे तो पूरब और उत्तर सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, मध्यम में पश्चिमी माना जाता है और बिल्कुल विपरीत में दक्षिण माना जाता है। इसके कारण है पूरब का जो दरवाजा होगा वो हाइजेनिक होगा, सूर्य के किरणें डायरेक्ट, पश्चिम का जो दरवाजा हो गर्म रहेगा, उस पर आग उग लगने की ज्यादा संभावना, तो उत्तर विशेष अच्छा है, इसलिए सारा गुरुत्वाकर्षण उत्तर में
0: है।
1: इसका तो वैज्ञानिक जांच भी हुआ है कि आप एक चुंबक को आप करेंगे तो उसकी एक दिशा बराबर उत्तर की ओर उन्मुख होगा,
0: होना ही।
1: तो यानी गुरुत्वाकर्षण हिमालय, हमारे भारतीय दर्शन हिमालय उत्तर दिशा में है और वो महत्वपूर्ण रहा भी इस देश के लिए, सारे भौगोलिक कारण खेती कृषि कार्य हमारे हिमालय की ही देन है
0: जी। बिल्कुल।
1: तो ये गुरुत्वाकर्षण उत्तर दिशा में, दक्षिण निगेटिव है
0: जी,
1: यम का द्वार का था
0: जी जी।
1: तो निगेटिव मतलब है कि आपको कहीं से पत्थर उड़ करके आए तो माथा में सीधे लगेगा, तो निगेटिव चीज है। तो आप दक्षिण दरवाजा रहेगा तो जो भी हवाओं से

0: दवाएं सब निगेटिव चीजें अंदर पहुंच जाएंगी,
1: जी जी जी,
0: तो आपको चोटें लगेंगे, पर अन्य दिशाओं में समस्याएं नहीं,
1: नहीं है।
0: इसीलिए मूलतः पूरब उत्तर का मुख्य द्वार रखा जाता है, और बत्ती के हिसाब से
1: जी जी,
0: अगर सफेद एस्टेब्लिश होता है उजला
1: जी जी,
0: तो सर्वश्रेष्ठ भूमि है। अगर वो लाल बत्ती बुझता है तो आपका वो थोड़ा झगड़ा झंझट वगैरह थोड़ा खड़ा कराएगा।
1: अच्छा,
0: और उसके बाद हरा शुभ होगा।
1: अच्छा अच्छा,
0: काला तो बिल्कुल ही मैंने परित्याग करने योग्य
1: जी। और जलाना भी है तो लाल
0: पीला हरा और उजला, ये चार रंग रहे
1: जी जी,
0: और चार दिशा में रख देना है। सबसे लास्ट जो बुझेगा उसी को परीक्षित करना है
1: जी।
0: अब जो है नेक्स्ट डे, आपको देखना है कि जिसमें हमने मिट्टी में, जिस मिट्टी में हमने जल डाला, वह जल बचा हुआ है कि सूख गया है या दरारें पड़ गई है।
1: अच्छा,
0: एक अगर जमीन में पानी कुछ बच जाता है तो निश्चित वो भूमि बहुत शुभ है।
1: अच्छा,
0: अगर सामान्य भी रहता है तो चलिए कोई दिखल के दरारें पड़ जाती है तो वह अशुभ है।
1: अच्छा,
0: अब दूसरा जो परल जो गड्ढा उसकी मिट्टी को जो फोड़ बाहर निकाले हैं
1: जी,
0: उस मिट्टी को हम फिर से उसमें भरेंगे डालेंगे
1: जी जी।
0: अब ये परीक्षण करना है कि मिट्टी घट गई, मिट्टी बढ़ गई या सिंपल बराबर आ गया।
1: अच्छा,
0: बढ़ गई तो अति उत्तम है, वो हमारे लिए शुभ होगा। सिंपल बराबर भी हो गया तो भी कुछ हर्ज
1: नहीं,
0: अगर मिट्टी घट गई तब वो जमीन हमारे लिए अनुकूल नहीं
1: जी।
0: अब भूमि का भी सबसे ज्यादा संबंध जल से है
1: जी,
0: क्योंकि कौटिल चाणक्य और भर्तरी हरि ने कहा है कि जिस जगहों पर नदी नहीं हो जिस नगर में
1: जी जी,
0: वहां आदमी को नहीं बसना चाहिए
1: जी।
0: तो जितनी भी सभ्यताएं हमारे संसार में बसी हैं वो सब नदी जलाशय स्रोतों के निकट,
1: और वहीं से
0: और जितनी सभ्यताओं का विकास हुआ है
1: सब वहीं से।
0: हम थोड़ा उदाहरण देने जा रहे हैं, क्षेत्र आज तक मैंने खुशहाल राज्य से मिस्र की सभ्यता, तो मिस्र की सभ्यता जो फली फुली वो नील नदी के तट पर
1: जी बिल्कुल
0: हुआ, उसके बाद मेसोपोटामिया इराक इसकी भी सभ्यता जो है दजरा और फरात नदी के तट पर उसका विकास हुआ। चीनी सभ्यता, चीनी सभ्यता हांगो नदी के किनारे विकसित हुआ
1: जी जी।
0: भारत की बौद्धिक सभ्यता सिंधु सरस्वती और गंगा के तट पर
1: बिल्कुल
0: विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी, आज भी महानगरी शहरी सभ्यता प्राय नदी या समुद्र तट पर विकसित है, जहाँ उद्योग धंधा का जाल है, जहाँ नदी न हो उस स्थान पर जैसा हमने कहा कि कौटिल्य और भर्तृहरि ने कहा कि वहाँ वो रहने योग्य भूमि नहीं होती है। उद्विकासवादी डार्विन तथा उत्परिवर्तन के मानने वाले डी ब्राइस ने स्वीकारा है कि प्रथम प्राणी प्रोटाजोआ पानी में ही विकसित हुए
1: जी बिल्कुल।
0: मानव जीवन के विकास में प्रथम कड़ी में मछली और वनस्पति ये जल से ही उत्पत्ति इसकी दिखाई
1: जी बिल्कुल सही है।
0: तो मानव का प्रथम जो विकास हुआ है कड़ी में, जो अवतारवाद मत्स्य अवतार कुर्मा अवतार बारह अवतार, वह आपके सृष्टि के प्रारंभिक क्रम घटना है
1: जी,
0: जैसे महाप्रलय होने के बाद सारी धरती जल में समाहित हो गई है
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो जल में समाहित होने बाद जल में प्रथम जो जीव का उत्पत्ति हुई वह प्रोटाजोआ
1: जी जी,
0: जिसको हम मछली स्वरूप कह सकते हैं, सबसे पहले धरती और मछली आई
1: मछली।
0: इसी को भारतीय संदर्भ में हम लोगों ने कहा कि विष्णु का मत्स्य अवतार हो गया, ये प्रतीकात्मक सिंबॉलिक है
1: जी जी।
0: नेक्स्ट टर्म में पानी में कुछ जमीन कुछ सरक करके मिट्टियां ऊपर आई होंगी, तो दूसरा अवतार कुर्मा अवतार कच्छप अवतार दिखाया जाता है, विष्णु का कछुआ अवतार
1: जी जी।
0: तो कच्छप अवतार कछुआ एक ऐसा जीव जो पानी में भी रह सकता है
1: हाँ।
0: और मिट्टी में भी रह सकता है। थर्ड टाइम में मिट्टी और जल ये संप्रकृत से कुछ जड़ कंदमूल अपने आप पैदा हो जाते हैं
1: जी।
0: तो उन जड़ मूलों को खाने वाला जीव सूकर का जन्म हुआ, सुअर का जमीन उकोड़ करके कोई चीज को खा जाता। तो इस तरह से उसका विकास की गति नदी और जलाशयों निकट ही हमारी सभ्यता संस्कृति विकसित हुई है। अब इनमें एक देखा जाता है कि मिट्टी का कलर और मिट्टी कैसी कैसी मिट्टी हो
1: जी जी।
0: अभी ये देखा गया है मिट्टियों के जांच के क्रम में
1: जी,
0: जो हमारी सभ्यताएं जहां जहां बढ़ी, जैसे सबसे अच्छी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, जिसमें जल और संचयन करने की शक्ति है
1: क्षमता।
0: तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी गोदावरी भारत की विकसित सभ्यता इसी तट पर हुई।
1: अच्छा,
0: मौर्य काल से लेकर के मुगल काल और चोल से बहमनी तक साहित्य कला आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र भी यही तट रहा है।
1: अच्छा अच्छा,
0: लाल मिट्टी जो पठारी मिट्टी क्षत्रिय के लिए शुभ है एवं औद्योगिक विकास की भूमि से तथा तांत्रिक भूमि मानी जाती है।
1: अच्छा,
0: तंत्र साधना वगैरह के लिए। आप देखे होंगे तारापीठ है यहाँ पर।
1: अच्छा।
0: और मुख्य तो जहाँ जहाँ लाल मिट्टी है वहाँ वहाँ तंत्र साधना। अच्छा। का ज्यादा केंद्र
1: तो वो सभी लाल मिट्टी पर।
0: लाल मिट्टी पर ये विकास मिलेगा।
1: अच्छा।
0: अब आके काली मिट्टी है।
1: अच्छा,
0: जो महाराष्ट्र के कुछ भाग और गुजरात के मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी जड़ोल के बाद दूसरे नंबर की ये मिट्टी मानी जाती है। उत्तम मिट्टी जिससे कपास की उन्नत खेती ज्यादा की जाती है और परिश्रम से उन्नति देने वाली भूमि कहलाती है।
1: अच्छा,
0: मेहनत करेंगे तो अधिक से अधिक आप धन प्राप्त करेंगे।
1: जी।
0: दक्षिण भारत के लेटेराइट मिट्टी एक होता है जिसको गहरा भूरा कत्था और कहीं पीला, इसके निवास के लिए ये बहुत शुभ मिट्टी है। इसपे पांड्या चोल तथा चेर कालीन सभ्यता का विकास हुआ।
1: जी, जी।
0: बहुत विकसित रहा, चोल राजा तो बहुत नामी रहे। थार या रेगिस्तान,
1: जी,
0: ये आवासीय दृष्टि से उत्तम भूमि नहीं, सहिष्णु कठिन जीवन का कारक है। यहाँ पर जीवन जो है बहुत कठिन था और रेगिस्तान था तो यह आवासीय नहीं था, व्यवसायिक दृष्टि से ठीक था।
1: अच्छा अच्छा।
0: अब श्रेष्ठ भूमि का वर्णन करना चाहेंगे कि अच्छी भूमि कौन है।
1: जी।
0: तो अच्छी भूमि के आकार और प्रकार से संबंध है।
1: अच्छा।
0: जैसे आप कहीं जमीन में मकान बनाना चाहते हैं, प्रस्ताव बनाना था, तो आपको देखना यह है कि वो जमीन वर्गाकार है, आयताकार है, वृत्ताकार है, अष्टकोण है, षष्ठकोण है, गोमुख है, सिंहमुख है, ये सभी शुभ हैं। इतने प्रकार जो आकृति वाली जमीन शुभ है, लेकिन सिंहमुख वाला जो भूमि है वो आवासीय शुभ नहीं है।
1: अच्छा।
0: प्रतिष्ठान व्यवसाय के लिए शुभ है।
1: अच्छा।
0: जिसको व्याघ्रमुखी कहते हैं।
1: तो
0: व्याघ्रमुखी जमीन मतलब क्या हुआ, ये आगे मुंह फैला हुआ।
1: हाँ।
0: और पीछे पतला
1: पतला,
0: तो जमीन आगे चौड़ा हो पीछे पतला हो।
1: तो पतला चौड़ा कितने फीट का हम ले सकते हैं,
0: कितने भी अगर एक 5 इंच का भी अगर अंतर आ जाए,
1: जी जी,
0: तो भी माना जाएगा कि व्याघ्रमुखी है।
1: अच्छा।
0: 5 इंच भी अगर बढ़ जाता है चौड़ाई में
1: तो भी
0: व्याघ्रमुखी माना जाएगा। तो पीछे की भूमि पतली और आई भूमि चौड़ी होती है तो उसको व्याघ्रमुखी कहते हैं। ये प्रतिष्ठान व्यवसाय के लिए शुभ होता है, आवास के लिए शुभ नहीं होता है। आवास के लिए गोमुख और ये जो बताया गया है षष्ठकोण अष्टकोण आयताकार वृत्ताकार ये सब जमीन। आयताकार में भी ये दिया है कि जितनी चौड़ाई है उससे दोगुना से अधिक लंबाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर दोगुना अगर से अधिक हो गया तो भूमि को कहा जाता है नलाकार।
1: अच्छा।
0: नलाकार भूमि शुभ नहीं है आवासीय दृष्टि से। तो आवास के लिए मूल रूप से आपको वर्गाकार आयताकार वृत्ताकार दम राउंडर बहुत अच्छा माना गया है।
1: अच्छा।
0: आध्यात्मिक दृष्टि से भी राउंडर भूमि बहुत शुभ माना गया है, षष्ठकोण कोणों वाला, 8 कोणों वाला, गोमुख और सिंहमुख, ये भूमि अच्छी है जो उसको आप देख करके व्यक्ति रह सकता है और ले सकता है।
1: जी जी।
0: खराब भूमियों में कौन है, सम चतुर्भुजाकार, चारों भुजाकार चतुर्भुज की तरह हो।
1: अच्छा,
0: चार तरफ।
1: अच्छा।
0: नलाकार बहुत लंबा।
1: अच्छा।
0: जैसा मैंने कहा लंबाई बहुत ज्यादा हो, चौड़ाई बहुत कम है,
1: कम हो जी,
0: मैंने दोगुना से अधिक हो जाए,
1: हो जाए जी।
0: त्रिभुज
1: जी,
0: ट्रायंगल वाली भूमि। धनुषाकार, सकटाकार, सकट मैंने बैलगाड़ी
1: जी जी,
0: उस टाइप का। सूर्पाकार, सूप के समान जमीन। और अंडाकार, डमरू भूमि, डमरू तरह जो जमीन,
1: आकार का भूमि।
0: कुंभ मने घड़ा के समान जो जमीन। विषम बाहु, जिसकी बाहु भुजाएं एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं, विषम बाहु भूमि। और उसके बाद भुजलाधार, ये जो जमीन है ये अशुभ है, इनमें वसना या व्यवसाय करना दोनों दृष्टि से अशुभ माना जाता है। तो आज के प्रसंग का ये विषय है और ये सारी बातें बृहस्पति संहिता से ली गई है जिसके रचयिता बारहवीं रहे हैं आज से 5000 साल पूर्व। आज इसकी ज्यादा प्रासंगिकता हो गई कि मनुष्य बहुत कठिनाई से घर इसी तरह बना पाता है और उस घर में कोई दोष आ जाए तो फिर आदमी के लिए बड़ी मुश्किल होता है पारिवारिक। वैसे हमारे यहाँ दिशाओं के हिसाब से भी कुछ निर्माण की बातें कही गई, जैसे घर में आप भोजनालय बनाना है जैसे किचन, तो किचन सेट होना किधर होना चाहिए, तो उसका अग्नि कोण हमारे बना हुआ है जो पूरब दक्षिण कोण को अग्नि कोण कहते हैं। तो आप जब भी किचन घर में बनाए तो पूरब दक्षिण की ओर। अब हमको पानी रखना है या पानी के लिए जल खोलवाना है
1: जी जी,
0: हमको कहीं पर बोरिंग करानी
1: जी जी,
0: तो पश्चिम दिशा वरुण का है जल के देवता है
1: जी।
0: तो हम पश्चिम दिशा में खोज के भूमि में बोरिंग कराएंगे।
1: अच्छा
0: अच्छा।

0: बोरिंग में पानी कहाँ मिलेगा, ये भी बहुत विचार नहीं
1: बहुत बहुत बहुत चार।
0: तो आपको ये देखना है कि अगर आगे अगल बगल कहीं भी सामने में दुग्ध वाला कोई पेड़ दिखाई पड़ता हो,
1: अच्छा।
0: जिसके तोड़ने से दूध निकले,
1: अच्छा।
0: तो उसके सीध सीधे में अगर आप पश्चिम दिशा में आप बोरिंग कराते हैं तो निश्चित वहाँ पानी की सुलभता रहेगी। आप देखे होंगे कि गांव में अधिकांश बड़े बड़े कुएं वो बर के पेड़ के नीचे हुआ करते,
1: बिल्कुल
0: बट वृक्ष हुआ करता था,
1: या
0: पीपल होता, तो इन सबों से दूध निकलता है, बट से तो बहुत ज्यादा निकलता, तो अधिकांश बट वृक्ष के जो बड़े बड़े कुएं बनाए जाते थे उसके पीछे यही भी ज्ञान था कि वहां निश्चित पानी होगा और अथाह जल होगा। लेकिन अगर कोई कटीला पेड़ है, बैर है, बबूल है, तो वहाँ चट्टान पत्थर आ जाएगा, वहाँ पर पानी की सुलभता कम रहेंगे, ये है पत्थर। लेकिन जहाँ भी हरा दूब फैला हुआ है, जहाँ भी दुग्धधारी वृक्ष हैं, उसके आसपास भी आपको निश्चित जल मिले, तो पश्चिम दिशा में आप जल रखें। अब बच्चों को पढ़ने लिखने अध्ययन करने के लिए बौद्धिक विकास के लिए एक पूर्व दिशा है और दूसरा उत्तर दिशा है,
1: जो ऊर्जा का स्रोत है,
0: ऊर्जा स्रोत है, तो उस दिशा में बच्चों का अध्ययन कक्ष बनवाइए पूर्व या उत्तर दिशा में। या आपको धन समृद्धि रखना है, आपको गोदरे रखना है
1: जी,
0: उत्तर दिशा में रखिए,
1: भ्रांतियां हो या जो भी कहा जाए, लोग दक्षिण दिशा को भारी करने के लिए गोदरेज रखते
0: नहीं, दक्षिण दिशा की भूमि को सिर्फ ऊंचा करना है
1: जी,
0: इसलिए निगेटिव ऊर्जा उसके अंदर आए नहीं,
1: आए नहीं,
0: इसलिए उस भाग को आप देखे होंगे जितना कोठा अटारी बनता था वो दक्षिण दिशा में बनाया जाता था, इसी घर का एक वो रूम को दुतला कर दिया जाता था, वो दक्षिण दिशा होता था, इसलिए दक्षिण दिशा की हवाएं अंदर नहीं प्रवेश कर पाए
1: जी, जी, जी।
0: निगेटिव ऊर्जा अंदर नहीं आ पाए
1: जी, जी।
0: भारी करने वाले दूसरा एक और नियम है, घर बनाने के समय में बाया जब प्रवेश करने वाले बाएं साइड में कम कंस्ट्रक्शन होना चाहिए और दाहिना साइड में अधिक कंस्ट्रक्शन होना चाहिए,
1: वो घर इंटर करते समय,
0: इंटर करते समय आप जब घर में प्रवेश कर रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड में
1: जी जी
0: कम कमरे हों, दाहिना साइड में अधिक
1: अधिक कमरे हों,
0: इस टाइप से आप निर्माण दरवाजा बनाना चाहिए, वो शुभ रहेगा। तो ये सब वास्तु से जुड़ी हुई चीजें हैं, वास्तु बहुत चीजों विचार नहीं है, पर उतना विषय को मैंने स्वीकार करना थोड़ा कठिन, लेकर हम जितना बताए हैं इसके आधार पर भी अगर निर्माण आप करते हैं तो आप जीवन स्वस्थ रहेगा, उन्नतिदायक रहेगा, और घर आदमी केवल अपने लिए नहीं बनाता
1: जी,
0: आने वाली पीढ़ियों के
1: लिए बनाता है,
0: तो सारी पीढ़ी सुखमय जीवन व्यतीत कर सके।
1: अध्यात्म की दृष्टि से अगर हम देखें तो पूजा पाठ का जगह कहाँ होना चाहिए,
0: पूजा पाठ पूर्व उत्तर,
1: पूर्व उत्तर
0: एकदम, जिसको ईशान कुल कहा गया
1: है,
0: ईशान तो भगवान शिव का नाम है
1: जी,
0: तो ईशान कुल इसीलिए बनाया गया है, वो आध्यात्मिक क्षेत्र वाला है पूर्व उत्तर।
1: अच्छा, बहुत से ऐसे जमीन है जो चौकोर नहीं है या तरह तरह की आकृति के हैं, अब तो जमीन खरीदना भी मुश्किल है, और जो खरीद चुके हैं हमारे श्रोता भाई, निर्माण अगर वो गृह का करें तो किस प्रकार करें, चौकोर करें?
0: देखिए कुछ अशुभ भूमि अगर आप गलती से या मकान आपको प्राप्त हो गया है
1: जी,
0: तो उसकी शांति के लिए दो तीन उपाय करके आप रह सकते हैं
1: जी,
0: जैसे प्रवेश द्वार दाहिने साइड में निकलते से जो दाहिना भाग पड़ता है
1: जी जी,
0: वहाँ आप समी वृक्ष लगाएं
1: जी,
0: जोड़ा अशोक लगा दें, अशोक का पौधा लगा दें,
1: अच्छा
0: जोड़े एक सा एक नहीं जोड़ा
1: जी,
0: अर्जुन वृक्ष रख लगा से जिसको कौवा कहा जाता है, ये प्लांट आप लगाए वनस्पति इसे भी बहुत सा दोष करता है,
1: अच्छा
0: बेल वृक्ष रखें आगे में,
1: अच्छा
0: इसे भी बहुत सा दोष कटेगा। दूसरा है कि काठ की करंज की लकड़ी अंगूठे नाप के बराबर
1: जी,
0: हनुमत प्रतिमा हनुमान जी की प्रतिमा उस पर खोद के और विधिवत अगर जमीन सवा हाथ भूमि में स्थापित कर दिया जाए
1: जी जी,
0: घर से निकलने दाहिने साइड में
1: जी जी,
0: तो भी उस घर के बहुत से वास्तु संबंधी अशुभ चीजें समाप्त हो जाती हैं। अंगुष्ठ प्रमाण अगर हनुमत प्रतिमा बनवाई जाए और उस प्रतिमा को विधिवत स्थापित करा दें घर की, तो उसे भी वास्तु संबंधी दोष कटेगा।
1: अच्छा, शहरों में एक बहुत बड़ी समस्या रह जाती है शौचालय की,
0: शौचालय देखिए शौचालय के संबंध में दो तीन दिशाएं हैं
1: जी,
0: जैसे लोग उसको खजाना कहते हैं लेकिन हम उसको खजाना स्वीकार नहीं की स्थिति में नहीं है, लोग गंदगी है तो उसको आप पश्चिम दक्षिण में बहने दे सकते हैं,
1: अच्छा
0: पश्चिम दक्षिण दिशा में उसको आप बनाइए या उसको बहने का व्यवस्था दीजिए,
1: अच्छा
0: बहुत सा चीज है कह कि अथाह विषय है, इसकी सीमा रेखा 10-15 मिनटों में नहीं इसको बांधा जा सकता है, हम हो गए बहुत से इसमें सवाल उत्पन्न, बहुत से इसका प्रश्नोत्तर है।
1: लेकिन मुख्य मुख्य बिंदु जहाँ तक है कि अपने पूजा

0: स्थल जो बनाए आप वो ईशान कोण को पूर्व
1: हाँ, पूरा उत्तर सर्वश्रेष्ठ है।
0: और रसोई घर का निर्माण करें
1: पूर्व दक्षिण
0: अग्नि कोण में चले
1: अग्नि कोण पर करें। जल उलखना या जलाशय है नल है
0: पानी तो उसके लिए आप वरुण की दिशा में
1: पश्चिम दिशा में
0: पश्चिम दिशा की हो
1: जाए। उत्तर दिशा में आप सभी तरह का चीज रख सकते हैं, धन दौलत घर खजाना जो भी आप रखना है उत्तर दिशा में रखेंगे।
0: जो भारी वाली जो बातें जो आती है अक्सर
1: वो केवल घर के दीवाल को ऊंचा वजन करना है उसको वजनी बनाना है या उसको
0: न कि सामान रखे उसको
1: वजनी बनाना
0: जी
1: ये नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है। और ये दीवाल उससे वही निगेटिव ऊर्जा दक्षिण के यम का द्वार कहा गया है इसलिए उधर की दिशाओं को हम लोग निगेटिव
0: वाइट करके चलते हैं
1: जी नकारात्मक ऊर्जा दी।
0: और सोने की दृष्टि से
1: दक्षिण की तरफ पैर नहीं होना,
0: सो सकते हैं या नहीं
1: देखिए सो सकते
0: सो सकते
1: सोने में कहीं नहीं। देखिए आप किसी कमरे में सोइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका सिर बराबर दक्षिण की ओर होना चाहिए
0: जी
1: और पैर उत्तर की ओर होना चाहिए। इसलिए पैर उत्तर की ओर होना कि पैर और पादप कहा गया
0: जी बिल्कुल,
1: यानी संपूर्ण जैसे पेड़ जो है उसका जड़ जो है वही उसका पैर है तो सब कुछ ऑब्जर्व पेड़ जो है वो जड़ से प्राप्त करता है
0: जी बिल्कुल,
1: जितनी भी ताकत है तना पत्तियां पत्तियों पर तो भोजन उसका पकता है तो सारा जो ऊर्जा जो है उसके पैर नीचे। आज हमारे भारतीय दर्शन में प्रणाम करने की जो बातें कही गई है वो क्या है, प्रणाम जिसको आप कर रहे हैं वो महान नहीं है, उसकी तो आप शक्ति रोज घटा रहे हैं प्रणाम करके
0: अच्छा।
1: उसके चरणों में उसने जितना तप किया जितना सकारात्मक ऊर्जा ऑब्जर्व किया आप उसको चरण छू करके ऑब्जर्व कर ले अपने में करंट वापस ले ले रहे हैं तो इसके बनने में उसको घाटा हो रहा है
0: जी।
1: उसको प्रत्येक दिन उसके चरण हो रहा है अब फिर से उतनी तपस्या ऊर्जा ऑब्जर्व करेगा तब ना नहीं तो बाकी तो आप उससे ऑब्जर्व आप प्राप्त कर रहे हैं चरण छू कर। चरण छूने की जो परंपरा है माता पिता गुरुजनों का इसके पीछे वही तर्क है कि आप आशीर्वाद न चाहते हो भी आप वो मन से आशीर्वाद दे देंगे
0: जी जी।
1: जैसे आपके सामने शरणागत होकर झुकेंगे वो न चाहते हो शत्रु भी आपको को आप चरण छू लीजिए वो भी आप मन से उसको आशीर्वाद दे निकलेगा बुरा नहीं सोच सकता
0: बिल्कुल नहीं।
1: वो ऐसी परिस्थिति है जिसमें उसको सकारात्मक बातें उसके मुंह से निकलेंगे इतना चरण छूने में तो इस सब पीछे बहुत सारा तर्क है वैज्ञानिक कारण है
0: जी
1: विज्ञान से सम्मत है।
0: खासकर हमारे पलामू वासियों के लिए ऐसी कोई महत्वपूर्ण बातें वास्तु से जुड़ी हुई जिसे आप साझा करना चाहते हैं।
1: देखिए यहाँ की मिट्टी अधिकांश लाल है आप तो देख रहे होंगे
0: जी
1: तो ये क्रांति की भूमि है
0: जी
1: यहाँ बराबर लड़ाई युद्ध
0: शुरू से
1: होते रहे हैं तो ये मिट्टी लाल मिट्टी कहलाती है। ये आध्यात्मिक भी है तांत्रिक भी है और औद्योगिक इंडस्ट्रियल भी है तीनों के लिए शुभ भूमि है
0: जी।
1: ये तीन कार्य के लिए और आवास में भी बनाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है रह सकते हैं। अब तो राजतंत्र नहीं है राजतंत्र में राजाओं के लिए छत्रियों के लिए लाल मिट्टी मानी गई थी
0: जी।
1: ऐसे भी यहाँ लाल मिट्टी उसी उन्हीं लोग का अधिकांश वास भी रहा है तो लाल मिट्टी शुभ है पठारी भूमि है। और दक्षिण का पठारी जो है आप एक नई बात बताना चाह रहे हैं ये दक्षिण का पठार जो छोटा नागपुर जो है
0: जी जी
1: ये इस सृष्टि का सबसे पुरानी भूमि है।
0: अच्छा
1: सृष्टि में सबसे प्रथम जो भूमि उत्पन्न हुई धरती पर आई उसमें दक्षिण का पठार का नाम आता है जिसमें हम लोग रह रहे हैं तो हम लोग तो भाग्यशाली है कि एक ओर अगर काशी को शिव त्रिशूल पर मानते हैं
0: जी जी।
1: तो दूसरी ओर दक्षिण का पठार जो है वो सबसे सृष्टि का पहला उद्गम उत्पन्न हुआ स्थल है सबसे पहले भूमि यही ऊपर आई है जल से निकल करके तो हम लोग इसलिए भाग्यशाली। यहाँ भी तो अंजनी धाम हनुमान जी का स्थान अंजनी धाम जन्म स्थान दिखाई जाता है राम रेखा घाट है शुक्ला नागपुर भगवान राम इस भूमि पर आए तो दक्षिण ये लोग बहुत हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं इसमें न बहुत ज्यादा भूकंप का खतरा है न जल प्रलय का खतरा है
0: कभी नहीं
1: तो ये बहुत अच्छी बात है। ये इस भूमि का वनस्पतिक रूप से बहुत समृद्ध खनिज रूप से बहुत समृद्ध भूमि है
0: जी
1: ये छोटा नागपुर।
0: और एक महत्वपूर्ण बात की प्रकृति ने हमें बहुत कुछ उपहार में दिया और प्रकृति में कोई वैसी बातें जो हमारे श्रोता समझ सकें कि हाँ ये 100%।
1: देखिए ऐसा है कि इस प्रकृति में से ही हम सब कुछ सीखे हैं
0: जी
1: जो कुछ आया है आज से अधिक माने योग्य
0: जी
1: या आज से अधिक संवेदनशील हमारे पशु पक्षी थे
0: जी।
1: मैं एक पक्षी का जिक्र कर रहा हूँ, कौवा
0: जी, जी।
1: मैं समझता हूँ इस धरती का सबसे बड़ा डाकिया वही है
0: जी।
1: किस कोने में आपका अमेरिका से बच्चा चला कि इंग्लैंड से चला कि भारतीय किस भूमि से चला, उसको लोकेट करके कौवा उसके घर पहुंच जाता है और वो काँव काँव करके यह सूचना देता है और सूचना से उस व्यक्ति को मालूम हो जाता है कोई मेरे यहाँ आ रहा है, किसी की सूचना मिलने वाली है और बिल्कुल सही होता है
0: क्या?
1: जब भी वो काँव काँव करता है तो इतनी बड़े पूरे सृष्टि में उस घर को लोकेट कर पाना सामान्य मनुष्य के सोचने परे बात है। अगर इसके गहराई में आप जाए तो आप अजीब सा लगेगा, कौवा एक ऐसा जीव जो धरती का किसी कोने में जा करके लोकेट कर उस घर को समझा देता है कि आप यहाँ कोई आने वाला है और वो निश्चित आता है, चाहे तो चिट्ठी आएगी या वह व्यक्ति उसके घर कोई अतिथि आएगा। तो ये वो शुभ भी दे सकता है, शुभ भी दे सकता है, लेकिन संदेश जरूर पहुंचेगा। तो ये इतनी बड़ी व्यवस्था बहुत प्राचीन समयों से चली आ रही है, उसमें डाक व्यवस्था कहाँ थी, लेकिन असली डाक व्यवस्था यही थी। लोग एक तो चिट्ठी तीन दिन चिट्ठी चली है चार दिन पहले और पांचवें दिन चिट्ठी पहुंचती और आप निश्चिंत हो जाते हैं मेरा बाल बच्चा बिल्कुल ठीक है। आज हम इतने व्यग्र बेचैन हैं कि स्टेशन पर बच्चा पहुंचा नहीं, क्या बेटा गाड़ी आ गई है, सीट पर बैठ गए, इतना बेचैन है, हम इतना फास्ट जीवन में जी रहे हैं। लेकिन कल एक चिट्ठी आ जाती है पोस्ट कार्ड पर और आप इतमान से बोलते हैं बिटवा चिट्ठी आई बिटवा सब ठीक ठाक है, पांच दिन गुजर गया हम परिवार पूरा निश्चिंत है कि मेरा बेटा ठीक ठाक है, आवाज मिनट सेकंड में बेचैन है कि स्टेशन पहुंचा कि नहीं, गाड़ी पर बैठा कि नहीं, इतना परेशान। ये जीवन है दोनों का, बहुत अंतर आया है। आज बहुत हम व्यग्र हैं, ज्यादा बेचैन है
0: पहले की अपेक्षा, बहुत ज्यादा व्यस्त है। आप थे पलामू जिला के जाने माने ज्योतिर्विद श्री विजयानंदन सरस्वती जी। सर आप हमारे स्टूडियो में आए और वास्तु से संबंधित विस्तृत जानकारियां साझा की, हमारी प्रकृति से संबंधित जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

राजकुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया

0: पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज

0: भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
2: विकसित भारत 2047, जब उस गोल उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज है, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है।

0: की ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल किंयुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकी नाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकी नाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानाउ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States approach towards Indo-Pacific region. Defense Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defense manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Center asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defense infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China. And Indian grapplers Suraj Vashishth and Sagar Singh clinch silver medals at Asian Under 23 Wrestling Championships in Vietnam. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Dobhal were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Rubio shared the U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. He requested Secretary Rubio to convey his warm greetings to U.S. President Donald Trump and said he looked forward to their continued exchanges. Secretary Rubio is on a four-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. U.S. Secretary of State Marco Rubio today said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific. Inaugurating the U.S. Embassy Support Annex building in New Delhi, Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for Pax Silica.
2: Expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system is vital to solidifying this important relationship.
1: Secretary Rubio called Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump as two very serious leaders who are focused on the long term.
2: Anchoring that is the relationship between the President and the Prime Minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the President had a chance to visit here, and it has carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term, but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen this partnership deepen.
1: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. The Prime Minister highlighted the world is eager to be a part of India's growth journey. He said the country is also partnering with the various countries of the world aimed at providing opportunities, employment and global exposure to the youth of the nation.
3: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले रोजगार मिले उनका सामर्थ्य खिल उठे साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले
1: In the 19th edition of Rozgar Mela today, more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations were distributed. Defense Minister Rajnath Singh today inaugurated the artillery shell manufacturing plant established at the Savli Vihir Industrial Estate in Shirdi, Maharashtra. The project, developed by Nibe Limited, will manufacture 155mm artillery shells and has the capacity to produce 5 lakh shells annually. The entire production technology and raw materials used in the project are indigenous. Speaking on the occasion, Defence Minister Rajnath Singh said India was once known as an importer of defence equipment, but in the coming years the country would emerge as a major exporter of defence products. Mr. Singh emphasized that India is preparing itself for future warfare and becoming self-reliant in defence manufacturing through the Make in India initiative.
4: सेल्फ-रिलायंट इंडिया और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स एफडीआई को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5,000 आइटम्स की तैयार की है इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे भारतीयों के हाथ
1: Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today informed that Oil India Limited has successfully unlocked a new gas-bearing pay zone in the Dandewala field in Rajasthan. In a social media post, Mr. Puri said the flow of natural gas for the first time from the shallower Sanu formation at nearly 25,000 standard cubic meters per day marks a significant achievement.

0: हथियार के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आइंदा बरसों में मुल्क दिफाई साजो सामान का एक अहम बरामदकार बनकर उभरेगा। जनाब सिंह ने इस बात को उजागर किया कि जंग का तरीक़ेकार तब्दील हो चुका है और जिन मुल्कों के पास इख्तरा साजो सामान तैयार करने की सलाहियत और मजबूत सनअती बुनियादी ढांचा है, वही मुस्तकबिल तश्कील देंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत मुस्तकबिल की जंगी सलाहियत के लिए खुद को तैयार कर रहा है और मेक इन इंडिया पहल के जरिए दिफाई साजो सामान की तैयारी के मामले में खुद कफील बन रहा है। महाराष्ट्र के वजीराला देवेंद्र फडणवीस और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की।
1: सेल्फ रिलायंट इंडिया और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है, इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकज ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब से कहा है कि वो अगले महीने की 5 तारीख तक अपना अहाता हवाले कर दे। मरकज ने कहा है कि दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने के लिए जमीन की जरूरत है। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत के तहत अराजी और तरक्याती दफ्तर की जानिब से जारी किए गए एक हुक्मनामे में कहा गया है कि फौरी इदारा जाती जरूरियात पूरी करने, हुक्मरानी के बुनियादी ढांचे और मफाद आम्मा के प्रोजेक्ट के लिए ये जमीन जरूरी है। इसमें कहा गया है कि दिफाई बुनियादी ढांचे को महफूज बनाने, नीज दीगर अहमियत के हामिल अवामी सिक्योरिटी मकासद के लिए दिल्ली के इंतहाई हसास और अहम इलाके में वाक़ इस ठिकाने की जरूरत है। मजकूरा हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि हुक्म की तामील न होने की सूरत में कानून के मुताबिक इसे कब्जे में लिया जाएगा। मगरबी बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम इस साल जुलाई से शुरू हो जाएगी। वजीराला शुभेंदु अधिकारी ने मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल मीटिंग के बाद कोलकाता में ये ऐलान किया। रियासती सेहत स्कीम स्वास्थ्य साथी के तहत मुस्तफीद होने वाले मौजूदा अफराद को आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के सिलसिले में अगले महीने नई दिल्ली में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हिफ्जान सेहत के बुनियादी ढांचे के साथ साथ सेहत माहरीन और तिब्बी पेशावर अफराद की तरबियत भी उतनी ही अहमियत की हामिल है। उन्होंने आज नई दिल्ली में मेडिकल साइंसेज में कौमी बोर्ड इम्तिहानात इदारे की तकसीम असनाद की 23वीं तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब नड्डा ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर हिफ्जान सेहत निजाम के सॉफ्टवेयर के तौर पर काम करते हैं, जबकि बुनियादी ढांचा और दीगर सहूलियात मुल्क के हार्डवेयर के मानिंद काम करती हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि हिफ्जान सेहत का शोबा और सेहतमंद भारत का नजरिया विकसित भारत मिशन के हुसूल में मरकजी रोल अदा करेंगे, लिहाजा तिब्बी पेशावर अफराद का रोल मुल्क के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। हुकूमत ने वसीतर अवामी सलाह मशवरे के लिए विकसित भारत जीरामजी एक्ट 2025 के तहत जाब्तों का मसौदा शाये किया है। दही तरक्की की वजारत ने कहा है कि कोई शख्स, मुतल्लिका फरीक, तंजीम या इदारा जाब्तों के मसौदे के सिलसिले में गौर खोज के लिए इस माह की 21 तारीख तक एतराजात या मशवरे दाखिल कर सकता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: विकसित भारत जीरामजी एक्ट 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट एमजी मनरेगा 2005 की जगह लेगा। इस नए कानून का मकसद इस माली बरस में रोजगार की कानूनी गारंटी के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना है। वजारत के मुताबिक जाब्तों का मुसवदा दफा 33 और कानून की दीगर मुतालिका दफात से मुताबिकत रखते हुए तैयार किया गया है। वजारत ने कहा है कि कौमी सतह की रहबर कमेटी के जाब्तों, मरकजी ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल के जाब्तों, इंतजामी अखराजात से मुतालिक जाब्तों और शिकायत के इजाले से मुतालिक जाब्तों को सलाह मशवरे के लिए अवाम के सामने रखा गया है। नए कानून में बरवक्त, शफाफ और जवाबदेह तरीक़ेकार के तहत उजरत की अदायगी पर जोर दिया गया है। इस कानून के तहत अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान रोजगार फराहम नहीं किया जाता तो बेरोजगारी भत्ते की भी सहूलत है। दिल्ली से अक्षित वैद्यन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: चीन के शांक्सी सूबे में कोयले की एक कान में हुए गैस के एक धमाके में

0: हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 90 हो गई है। गैस का यह धमाका कल हुआ था। सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि कान में काम करने वाले 200 कानकुनों को अब तक बचा लिया गया है, जबकि बचाव कार्रवाई जारी है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने एक जामे बचाव कार्रवाई और जख्मियों के इलाज के लिए हिदायत जारी की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन के शांक्षी सूबे में कान में हुए हादसे में जान गंवाने वालों के तई दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय अवाम की जानिब से चीन के सदर शी जिनपिंग और चीन के लोगों से अपनी ताजियत का इजहार किया। उन्होंने सभी बाकी लापता अफराद की जल्द और बाहिफाजत बाजियाबी की भी दुआ की और इस मुश्किल घड़ी में सोगवार कुंभों से यकजहती का इजहार किया। फ्रांस ने इसराइल के कौमी सलामती के वजीर एटामार बेन गवीर के फ्रांस में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी है। फ्रांस के वजीर खारजा जीन नोएल बेरोट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि इस इकदाम से गजा जाने वाले समुद्र फ्लोटिला में सवार सरगर्म कारकुनों के साथ रवा रखे गए बर्ताव के मामले पर बढ़ते हुए गम गुस्से की अक्कासी होती है। फ्रांस के वजीर खारजा ने यूरोपीय यूनियन पर भी जोर दिया कि वो इसराइल के कौमी सलामती के वजीर पर पाबंदियां आयद करे। शुमाल मशरकी यूक्रेन के शहर सूमी के मजाफाती में रूस के ड्रोन हमले में आज एक शख्स हलाक और 9 जख्मी हो गए। यूक्रेन के लुहानसिक खित्ते में रूस के कंट्रोल वाले इलाके में एक कॉलेज के रिहायशी इलाके पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जवाबी फौजी कार्रवाई का हुक्म दिया था। आज वियतनाम के डेनेंग में भारत के कुश्ती खिलाड़ी सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप के मर्दों के ग्रेको रोमन जुमरों में चांदी के तमगे जीते हैं। 60 किलोग्राम के जुमरे में सूरज वशिष्ठ कजाकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी से खिताबी मुकाबले में 4-0 से हार गए। वहीं 67 किलोग्राम के जुमरे में सागर सिंह को फाइनल में उज्बेकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी ने 9-0 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुजाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाजात का पुरअमन हल निकाले जाने के लिए भारत की लगातार हिमायत का यादा किया है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अमेरिका की हिकमत अमली में भारत को मजबूत बुनियाद करार दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत दिफाई सामान तैयार करने के शोबे में खुद कफील बन रहा है। वजीर मौसूफ ने महाराष्ट्र में शिरडी के मकाम पर तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। मरकज ने नई दिल्ली में जिमखाना क्लब से कहा है कि वो दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की खातिर अगले महीने की 5 तारीख तक अपनी जमीन हवाले कर दे। चीन में एक कोयला खान में धमाका होने से 90 अफराद की मौत हो गई और भारतीय पहलवानों सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी के तमगे जीते। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, आज के फनकार। ये कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालू, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गावा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। एक अभिनेत्री जो अपने अभिनय की शुरुआत स्कूल और कॉलेज के थिएटर से करती है, धीरे धीरे टीवी सीरियल की ओर बढ़ती है, बॉलीवुड में आकर अपनी एक्टिंग के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाती है और आज ओटीटी की क्वीन कहलाती है, वो है शेफाली शाह।

बॉलीवुड की ये खूबसूरत अदाकारा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 22 मई 1973 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी शेफाली बचपन से ही अभिनय करना चाहती थी। वे एक मॉडल, अभिनेत्री और चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। उनके पिता का नाम सुधाकर शेट्टी और माता का नाम शोभा शेट्टी है। वे अपने माता पिता की इकलौती लाडली संतान हैं और उनका पालन पोषण एक गैर फिल्मी पृष्ठभूमि में हुआ। साल 2000 में उन्होंने निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह से शादी की, जिनके साथ उनके दो बेटे आर्यमन और मौर्य हैं।

शेफाली शाह का अभिनय करियर गुजराती मंच से शुरू हुआ। बचपन से ही उन्हें कला की ओर बहुत झुकाव था, जिसमें गायन और नृत्य शामिल थे। उन्होंने भरतनाट्यम में प्रशिक्षण लिया। उनकी अभिनय यात्रा 10 वर्ष की आयु में गुजराती मंच पर किए नाटक द ओमेन से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने डेमियन थॉर्न पर आधारित चरित्र को बखूबी निभाया। इंटर कॉलेजिएट नाटकों में काम करने के साथ साथ उन्होंने गुजराती रंगमंच में काम करके अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दे दिया था।

शेफाली शाह ने थिएटर करने के बाद साल 1993 में टीवी की दुनिया में कदम रखा। बनेगी अपनी बात सीरियल से छोटे पर्दे पर उन्होंने डेब्यू किया, फिर आरोहण, हसरतें, पतझड़, कभी कभी, सी हॉक्स, राहें और रामायण जैसे सीरियलों में अभिनय कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शेफाली शाह कमाल की एक्ट्रेस, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज उनके नाम 25 से ज्यादा फिल्में हैं और इन सभी फिल्मों में उनका काम बोलता है। उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत पर बात की जाए तो 1995 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से उन्होंने डेब्यू किया। इस फिल्म में उनकी भूमिका बहुत छोटी थी।

1998 में रामगोपाल वर्मा की ही एक फिल्म सत्या में शेफाली ने भीकू महात्रे की पत्नी प्यारी महात्रे की भूमिका निभाई, जो मनोज वाजपेयी द्वारा निभाई गई एक माफिया सरगना की पत्नी थी। इस फिल्म में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड जीता। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला।

सत्या में अपने शानदार काम के बावजूद शेफाली शाह को उतनी फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिले जितनी उन्हें उम्मीद थी। विपुल शाह द्वारा बनाई गई गुजराती फिल्म दरिया छोरू में कास्ट किया गया। विपुल शाह की इस फिल्म के लिए शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 2000 में निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा की फिल्म आई मोहब्बतें। इस रोमांटिक फिल्म में शेफाली को एक

इसके ठीक एक साल बाद यानी 2001 में उन्हें मीरा नायर की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मानसून वेडिंग में लिया गया। इस फिल्म में शेफाली ने रिया वर्मा की भूमिका निभाई। ये फिल्म अपने समय से आगे की फिल्म मानी गई। रिया वर्मा की भूमिका में शेफाली वास्तविक पात्रों में से एक थी। उन्होंने बचपन में बहुत दर्द का अनुभव किया था, जिसके कारण रिया वर्मा रिश्ता नहीं बना सकी और अविवाहित रहने का फैसला करती हैं। एक ऐसा किरदार शेफाली का था जो सबसे जटिल था। इसे शेफाली ने बखूबी निभाया। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली और कई पुरस्कार भी

2005 में विपुल शाह के निर्देशन में शेफाली ने पारिवारिक मेलोड्रामा वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में काम किया। इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन की पत्नी और अक्षय कुमार की माँ के रोल में नजर आती हैं। सुमित्रा ठाकुर के रूप में उनकी भूमिका एक सख्त माँ की थी जो अपने पति को अपने गैर जिम्मेदार बेटे को अनुशासित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर का नामांकन मिला। अभिनय के वक्त वो अमिताभ बच्चन से आधी उम्र की और अक्षय कुमार से लगभग 4 साल छोटी थी, लेकिन अपने अभिनय के दमखम से उन्होंने भूमिका में जान डाल दी।

निर्देशक फिरोज अब्बास खान की फिल्म गांधी माई फादर का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। 2007 में आई इस फिल्म में दर्शन जरीवाला और अक्षय खन्ना के साथ कस्तूरबा की भूमिका में शेफाली शाह नजर आती हैं। ये फिल्म महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली ने कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई, जो अपने पति महात्मा गांधी और बेटे हरिलाल के बीच आजीवन संघर्ष से त्रस्त हैं। इस फिल्म में उनकी भूमिका ज्यादा आंतरिक है, क्योंकि वो चुपचाप सब कुछ देखती हैं कि हरिलाल क्या कर रहा है। उन्होंने अपने दो अहम दृश्यों में बेहतरीन काम किया, जिसमें वे गांधी पर हरिलाल को छात्रवृत्ति न देने के लिए भड़कती हैं, और जहां वे धर्म परिवर्तन के बाद हरिलाल से भिड़ जाती हैं। कस्तूरबा के रूप में उनका अभिनय शानदार नजर आता है। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और 2008 में जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।

2007 में ही फिल्म द लास्ट लियर में शेफाली ने अमिताभ बच्चन के साथ परेशान और चिड़चिड़ी स्वभाव वाली और लिव इन पार्टनर की भूमिका निभाई है। ये एक ऐसी भूमिका थी जिसे वे अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका मानती हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फिल्म को सराहना के साथ ही 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम दिया गया और शेफाली शाह ने सहायक अभिनेत्री का खिताब भी जीता। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋतुपर्णो घोष।

सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शेफाली ने रीमा माथुर की भूमिका निभाई। 2008 में आई इस फिल्म में शेफाली एक बंगाली कार्यकर्ता और एक उर्दू प्रोफेसर अनिल कपूर की पत्नी के अहम रोल में नजर आती है।

2011 में उन्होंने विपुल शाह के प्रोडक्शन में कुछ लव जैसा फिल्म में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई, जो जेल से भाग रहे एक अपराधी राहुल बोस के साथ एक रोमांटिक दिन बिताती है। कहते हैं अपने इस रोल को समझने के लिए शेफाली ने ठाणे जेल का दौरा भी किया और अपने चरित्र को समझने के लिए कैदियों से बात भी की।

साल की अनुपस्थिति के बाद शेफाली शाह ने मोनाली ठाकुर के साथ नागेश कुकनूर की सामाजिक समस्या पर बनी फिल्म लक्ष्मी में काम किया। इस फिल्म में शेफाली शाह ने एक वैश्यालय की मालकिन ज्योति की भूमिका अदा की है। 2014 में आई ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म थी। दिल धड़कने दो, जी हाँ, 2015 में निर्देशिका जोया अख्तर की ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई। इस फिल्म में शेफाली अनिल कपूर की पत्नी के रोल में नजर आईं। फिल्म के अन्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह हैं। इस फिल्म में उनके प्रभावी अभिनय के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन उन्हें मिला।

मल्होत्रा की अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा वॉरियर के रीमेक में उन्हें एक छोटी सी सहायक भूमिका मिली। इस फिल्म में उनके चरित्र मारिया फर्नांडिस को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने व्याभिचारी पति के विवाह के बाद हुए अवैध बच्चे को स्वीकार करती है। शेफाली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने किरदार में एक ऐसी सादगी लाती हैं जो मुख्य धारा के सिनेमा में शायद ही कभी देखी जाती है। फिल्म जूस नीरज घाइवान द्वारा 2017 में आई एक ऐसी ही फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली की निगाहें शब्दों से कहीं अधिक बयां करती है और उनका अभिनय लाजवाब नजर आता है।

पैंटिक फिल्म का जिक्र भी यहाँ करना बहुत जरूरी है। 2018 में आई इस फिल्म को कमल सेठी ने लिखा और निर्देशित किया। शेफाली शाह और नीरज का भी अभिनीत ये फिल्म दो मध्यम वर्गीय आयु वर्ग के लोगों की कहानी है। इस फिल्म में काम करने के

सैफ अली शाह ने इन सभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया हो, लेकिन ये स्टारडम तब और बढ़ा जब उन्होंने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा। जी हाँ, सैफ अली शाह ने साल 2019 में आई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से अपनी प्रतिभा की एक अलग ही मिसाल पेश की। 2023 में उन्हें दिल्ली क्राइम में उनके अभिनय के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस सीरीज में उनकी प्रतिभा जो दर्शकों के सामने आई उसे देखकर हर कोई अवाक रह गया। इस वेब शो में सैफ अली ने डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार निभाया, जिन्हें दिल्ली में एक क्रूर सामूहिक बलात्कार की जांच करने का काम सौंपा जाता है।

ब्लैक कॉमेडी डार्लिंग्स में शेफाली और आलिया भट्ट माँ और बेटी के रूप में अभिनय करती हैं। इस फिल्म को जसमीत केवीन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। ये उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है जिसकी पटकथा परवेज शेख ने लिखी। फिल्म में विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस फिल्म को कई अवार्ड्स मिले। शेफाली ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब जीता।

2022 में आई ह्यूमन में शेफाली ने डॉक्टर गौरीनाथ की भूमिका निभाई। विपुल शाह द्वारा निर्देशित ये शो दवा कंपनियों और बड़े निजी अस्पतालों के बीच सांठगांठ की पड़ताल करता है। वहीं सोशल थ्रिलर फिल्म जलसा में उन्होंने विद्या बालन के साथ अभिनय किया। वे इसमें रुखसाना नाम की महिला का किरदार निभाती नजर आती हैं, जिसकी बेटी एक हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इस फिल्म के लिए उन्हें मेलबर्न के वार्षिक भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला।

अविनाश अरुण द्वारा सहलिखित और निर्देशित थ्री ऑफ अस 2023 की फिल्म है। इसमें शेफाली ने शैलजा देसाई की भूमिका निभाई है, जिसे डिमेंशिया है और वो अपने बचपन को याद करने के लिए यात्रा पर निकलती हैं और अपने दर्दनाक अतीत का सामना करती हैं। स्वानंद किरकिरे इस फिल्म में उनके पति और जयदीप अहलावत बचपन के दोस्त की भूमिका में हैं। इससे पहले 2020 में शेफाली शाह ने दो स्व अभिनीत कोविड-19 आधारित लघु फिल्मों सम डे और हैप्पी बर्थडे मम्मी जी में लेखन और निर्देशन भी किया। 2025 में निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म हिसाब, इस फिल्म में शेफाली शाह, जयदीप अहलावत और अभिषेक सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

0: शेफाली शाह को अपने बेजोड़ अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार शामिल हैं। सेट पर सबसे ज्यादा खुश रहने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री शेफाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जो भूमिकाएं निभाती है वे उस फिल्म का मुख्य किरदार होती हैं और वो अपनी भूमिकाओं में खामोशी को ढूंढती हैं। शेफाली अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वास्तव में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगी और फिल्मों में यूं काम करूंगी। लंबे वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं पूरी तरह से अभिनय करूंगी, ये बस होता गया और जो भी किरदार मैंने निभाए वो बहुत मजबूत किरदार बनकर उभरे हैं। तो ये था अभिनेत्री शेफाली शाह पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। आलेख, शोध और स्वर मंदाकिनी जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से प्रसारित हमारा कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा और हम पेश कर रहे हैं गायक कलाकार मुकेश की आवाज़ में फिल्मी गीत।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा और हम पेश कर रहे हैं मुकेश, गायक कलाकार मुकेश की आवाज़ में फिल्मी गीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि

की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतुगोब से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।